मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 28वीं तिथि तदनुसार 18 जून सन 2026। सुबह के 5:59 होने को है। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। हिंदी में समाचार थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।

0: प्यार के साथ, मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुरुआत करते हैं समूह स्वर में गाए इस मातृवंदना के साथ।

असित देसाई के आवाज में आप सुन रहे थे ये दैव्य आराधना, और लीजिए अब सुनिए कुमार विशु के आवाज में ये माता रानी का भजन।

शिरडी के साईं बाबा की स्तुति शब्दों में संभव नहीं है। इसीलिए तो भावनाओं के पुष्प लिए, भक्ति का प्रदीप लिए, कामनाओं की आकांक्षा लिए हम सब सच्चे मन से साईं की प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं।

0: अतिक संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अब हम आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। श्रोताओं, बस अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे सुबह 6:35 पर कार्यक्रम खेती किसानी। विषय होगा पशुओं का प्राथमिक उपचार। सुबह 6:40 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान। गायक सर होगा अनुराधा मराठे और श्रीकांत पारगांवकर का। सुबह 6:50 पर सुनिए कार्यक्रम चिंतन। सुबह 7:20 पर बुंदेली सुगंध में सुनिए बुंदेली वार्ता, बुंदेली कवि गंगाधर व्यास। वार्ताकार होंगे पंडित बाबूलाल द्विवेदी। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। सुबह 8:30 पर होगा आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। सुबह 9:00 लोकरंग कार्यक्रम में कलाकार होंगे रामकिशोर मिश्रा। इनके साथ ढोलक पर संगत करेंगे गोविंद, बैंजो पर लखनलाल वंशकार, हारमोनियम पर लहरा देंगे सतीश कुमार पांडे। सुबह 9:30 पर एक ही गायक में सुनिए अलीशा चिनॉय के गाए गीत। सुबह 10:00 आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होगी जिले की चिट्ठी। सुबह 10:05 पर रसावतरण में सुनिए कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि होंगे डॉक्टर अनुज भदौरिया, शफीकुर रहमान कश्फी और फरीद बेग। सुबह 10:30 पर होगा फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आज प्रसारित होंगे कार्यक्रम। दिन में 11:00 फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। 12:00 आपकी फरमाइश। 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से। दिन में 1:00 महिला सभा कार्यक्रम में सुनिए वार्ता, बुजुर्गों की देखभाल में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार होंगी श्वेता झा। दिन में 1:30 पर सुनेंगे लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत। दिन में 2:00 होगा फिल्म संगीत और 2:30 पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम। शाम 6:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे। ये तो थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आकाशवाणी छतरपुर से सुनिए शाम 5:00 युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। इसमें सुनेंगे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स और रोजगार सूचना। शाम 6:30 पर आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होगी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बैतूल मध्य प्रदेश प्रवास पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। शाम 7:20 पर ग्रामीण भाई ग्राम सभा के कार्यक्रम में सुनेंगे जनउपयोगी चर्चाओं और लोकगीतों पर आधारित कम्पेयर्ड कार्यक्रम सुनो गीत गुनो बतकाओ। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। इसके अलावा भेंट वार्ता हरी खाद का मृदा स्वास्थ्य पर प्रभाव और लाभ विषय पर भूपेंद्र सिंह बैस से रविन्द्र कुमार प्रजापति की बातचीत। भोपाल से आप सुनेंगे रात्रि 8:00 विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष विरासत। रात्रि 8:35 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिए। आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होगा रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम स्पॉटलाइट। रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी छतरपुर से सुनिए akashvani@90 और आकाशवाणी छतरपुर के 50 वर्ष के उपलक्ष में आकाशवाणी छतरपुर से सेवानिवृत्त उद्घोषक श्री हर्ष पांडे से रविन्द्र कुमार प्रजापति की बातचीत। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब किसान भाई सुने कार्यक्रम खेती किसानी। विषय है पशुओं का प्राथमिक उपचार।
1: आज की खेती किसानी में हम उन भैयन का जानकारी दे रहे हैं जिनने खेती के संगे संगे पशुपालन का भी अपने जीवन को आधार बना रखो है। पशु एक अपनो अच्छो मित्र तो है, लेकिन अपने कष्ट और अपनी तकलीफें अपन का कहूं भी बोल के नहीं बता पाऊत है। पशुओं के मिजाज का देख के समझने पड़त है कि ऊखा कष्ट कौन सो है। कई बार अपने पशु चरत चरत कभी भी गिर जाते हैं या उन्हें कोनू रगड़ लग जाए। अगर कभी भी अपन देखें कि अपने जानवर का खून निकल रहा है, तो सबसे पहला अपन का जो करने है कि एक छोटी कैंची उठा के घाव के आसपास के जितने भी उके रोंगटे हैं उनका अपन बड़ी सफाई से काट दें, और उके बाद कोनू भी संक्रमण रोधी दवाई से अपन उके घाव का धो देवे, धीरे धीरे वो घाव सूखवे की स्थिति में आ जाए। अगर घाव पुरानो हुए, उमे पीप मवाद निकल रहा हुए या फिर उमे खून बहुत ज्यादा तेजी से रिस रहा हुए, तो उमे अपन खा फिटकरी को चून डालने हैं। और अगर घाव में इल्ली पड़ गई हो तो ऊ स्थान पे अपन तारपीन के तेल को प्रयोग भी कर सकते हैं। धीरे धीरे

0: इल्ली अपने आप निकलने लगे हैं, उन्हें धीरे धीरे चिमटियों से अपने बाहर निकाल के नष्ट कर दें। फिर कोनो भी जंतुनाशक घोल से अपन उखा साफ करें और कोनो भी प्रतिजैविक मरहम जो भी अपने पास हो अपन खा उ घाव के ऊपर लेप लगा देने हैं। अपन के पास अगर दवाई न हो शुद्ध देसी घी तो मिले ही मिले, और अगर शुद्ध देसी घी भी अपन खाना मिले तो खाद के मीठे तेल में अपन खा पिसी हल्दी को चूर्ण गरम कर लेने हैं। ठंडे होवे के बाद ऊ घाव पे अपन ऊ खा लेप कर दें। इतनो प्राथमिक उपचार करने के बाद अपन डॉक्टर भैया के पास जाएं और उनसे सलाह लें, क्योंकि कायदे की मरम पट्टी करें, अपने पशुओं का आराम मिले। अगर अपने जानवरन खा अपन छुए और जो पता चले कि ऊ के कान गर्म है, उके शरीर के बाल खड़ी स्थिति में है, उकी चमड़ी शरीर की रूखी रूखी सी हो गई है और उके सांस लेवे की जो गति है वह बहुत तेज हो गई है, नाक से बहुत तेज गर्म हवा निकल रही है, तनाव सुस्त सुस्त सो लग रहा है, तो अपन खा ऐसे में समझ गो चाहिए कि ऊखा निश्चित रूप से बुखार चढ़ो है। जब पालतू जानवर की ज्यादा साथ देखें तो सबसे पहला तो गर्म स्थान से हटा के जानवर खा ठंडे स्थान पे बांध देवे। उके सिर पे गीलो कपड़ा रखें, गीले कपड़ा से एक दो बेर उके शरीर का भी अपन पोंछ दें, जिसे उके शरीर की गर्माहट कछु कम होए। इतनो सब करवे के बाद तुरंत पशु स्वास्थ्य केंद्र जाके अपने पशु चिकित्सक भैया का अपने संगे लेवा ले आए और अपने जानवर का दिखाएं, जोन उपचार उके बाद बताए उखा अपन नियमानुसार करें, निश्चित है बुखार जैसी बीमारी से अपने पशु का बहुत जल्दी आराम मिले। पशुओं का बरसात और शीत ऋतु के मौसम में सर्दी जुकाम सहज हो जाते हैं। जब भी अपन देखें कि उनकी आंखन से और नाक से पनीलो स्राव हो रहा हो और वो बाद में गड़ेहात जा रहा हो तो समझ लें कि अपने जानवर का सर्दी हो गई है। ऐसी स्थिति में पशुओं का गर्माहट वाले स्थान पर बांध के रखने हैं, ठंड से पशुओं का बचावने हैं। जहां अपने जानवर बंधे हुए अगर उते पे खिड़की दरवाजे हों तो ऐसे स्थान का अपन का बंद कर देना ताकि ठंडी हवा भीतर ना जा पाए। प्राथमिक उपचार के तौर पर नीलगिरी को तेल जोन होत है ऊखा रुई के फुहा बना के बूंद बूंद करके अपने जानवर के नाक में टपकावने हैं। जैसे ही ऊकी बूंदे जानवर के नाक में जे हैं, बंद नाक ऊकी खुल है और ऊखा आराम मिल जे है। इके बाद एक समस्या अपने जानवर के संगे और आउ, कभू कभू पांव फिसल जात है, जानवर के पांव की हड्डी टूट जात है, अपन समझ तो नहीं पाई और जबरन जानवर खा उठावे की कोशिश करने लगा। तो अपन का कोनो भी स्थिति में जानवर खा जबरन उठावे की कोशिश नहीं करने है। सबसे पहला ऊखा अपन खा चार पांच पंचन के सहयोग से साफ और सुरक्षित स्थान पे बैठारने हैं। उके बाद जोन पांव की हड्डी टूटी होए उखा धीरे धीरे सीधो करें, जख्म होगा होए तो कोनो भी संक्रमण रोधी पानी से अपन उको घाव साफ कर दें, उमें कोनो भी जंतुनाशक अपन मरहम लगा देवे, बड़े नरम और मुलायम सूती कपड़ा से लपेट दें और उके बाद उके ऊपर बांस की या कोनो भी लकड़िया की पतली पतली कमटी अपन खा काटने हैं और वे सीधे पांव करके बांध देने हैं। जबरदस्ती पशु का चलावे की कोशिश नहीं करने, एक हाथ ठेला की या बैलगाड़ी की व्यवस्था करें, चार पांच पंच मिलके उस जानवर का ला दें पशु चिकित्सालय में, डॉक्टर भैया का दिखाएं, जोन उपचार भी करें उतने उसको उपचार करवाएं और वही गाड़ी पे लादे लादे फिर अपने घर ले आए और बड़े आराम से उसको जब तक पांव ठीक ना हो जाए अपन उखा बैठारे बैठारे चराएं और उसकी सेवा करें। तो इनमें से कोनो भी स्थिति अगर अपने पशुपालकन के सामने आए तो जोन उपचार प्राथमिक रूप से हमने बताए हैं, पहला उको प्रयोग अपने घरे करें, शुरुआती आराम मिल जाए, उके बाद निकट के पशु स्वास्थ्य केंद्र में जाके पंच अपने पशुओं की जानकारी डॉक्टर भैया का बताएं।
1: अभी किसान भाइयों के लिए खेती किसानी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था, विषय था पशुओं का प्राथमिक उपचार। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का।

प्रीति की सुंदर रीति का अनुपम उदाहरण है दूध और जल का मिलन। दूध में मिलकर जल भी दूध के भाव बिकने लगता है, किंतु कपट रूपी खटाई के पड़ते ही पानी दूध से एक बारगी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है,

प्रेम रूपी स्वाद जाता रहता है। सती के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव से आतंकित होकर शिव जी से छिपाव किया और मिथ्या वचन कहे कि उन्होंने श्री राम की कोई परीक्षा नहीं ली, किंतु सर्वज्ञ शंकर ने सब कुछ जान लिया और सती के कपटपूर्ण व्यवहार के लिए उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया। उधर सती को अपनी करनी याद करके अत्यंत ग्लानि हुई। उन्होंने शिव का रुख पहचान लिया कि स्वामी ने उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया है। अपने पाप की प्रतीति होने पर सती से कुछ कहते नहीं बना, किंतु उनका हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आमे के समान जलने लगा। इधर शिव जी ने अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार वट वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठकर अखंड समाधि लगा ली।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, गायक स्वर थे अनुराधा मराठे और श्रीकांत पारगांवकर के, संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।
1: जिनके विचार अच्छे होते हैं वे सदैव अच्छे कार्य ही करते हैं। कलुषित एवं कुविचार वाले लोग ही दुराचार एवं दुष्कर्म करते देखे गए हैं। वास्तव में सत्कर्म के मूल में सद्विचार ही होते हैं, यही हमें सदाचरण हेतु प्रेरित करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक कार्य का कारण उसका विचार होता ही है। स्वाभाविक है जिनके विचार अच्छे होते हैं वे अच्छे कार्य करते हैं। सद्विचारों को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्न की आवश्यकता है। अच्छे विचारों की प्राप्ति के लिए अच्छे वातावरण, अच्छी शिक्षा, सत्साहित्य का अध्ययन, मनन तथा सत्संग आवश्यक है। इसी से हमारे भीतर सत वृत्तियां जन्मेंगी।

0: पल्लवित पुष्पित तथा फलित होंगी। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंतन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। हमें अपने आचरण को उत्तम बनाने हेतु प्रथम था मन में अच्छे विचारों को जन्म देना होगा, अच्छे लोगों महापुरुषों का जीवन चरित्र जानना मनन करना होगा तथा उसे अपने आचरण में उतारना होगा। जब मन में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होगा तो बुराई रूपी अंधकार स्वमेव समाप्त हो जाएगा, जो हमें अच्छाई की ओर ले जाएगा। ऐसा व्यक्ति कभी भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे किसी का मन दुखी हो अथवा उसे पीड़ा प्राप्त हो। सद्विचार के दीपक के आलोक में न व्यक्ति स्वयं ठोकर खाएगा और न दूसरों को खाने देगा, न स्वयं दुखी होगा और न ही दूसरों के दुखों का कारण बनेगा, क्योंकि सद्ज्ञान सद्विचारों में प्रकाश ही प्रकाश है, जिसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। यही चेतना मनुष्य को सदैव सजग रखती है। इसीलिए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विचार का दीपक बुझ जाने पर आचार अंधा हो जाता है। विचार ही आचार का आधार है। मान लें कि मटके के मूल में क्या है, मिट्टी है। मिट्टी से ही मटका बना है। दही कैसे बना, दूध से। दूध ना होता तो दही कैसे बनता। मेघ ना होते तो क्या बरसात संभव होती। जहां चिंगारी होगी वहीं आग होगी और जहां आग है वहीं धुआं। तात्पर्य यह है कि बिना कारण के कार्य हो ही नहीं सकता। जैसा कारण होगा तदनुरूप कार्य होगा। एक ही स्थान पर दो प्रकार के व्यक्ति देखे जा सकते हैं जिनके अलग अलग व्यवहार हो सकते हैं। एक वो है जो स्वयं भूखा होने पर भी दूसरे को खाना खिला देता है और एक वो है जो दूसरे का खाना हराम कर देता है। एक के विचार में दूसरे को भोजन कराने के सत्कार्य का सुख और संतोष है, जबकि दूसरा किसी को खाते पीते देख दुखी होकर स्वयं खा जाने अथवा ना खा सके तो बिखरा देता है। ये विरोधाभास उसकी मन स्थिति का परिचायक है और मन स्थिति उसके संस्कारों का दर्पण है। हमारी प्रवृत्ति संत जैसी होगी तो हम हंस की तरह सद्गुण रूपी दूध ही ग्रहण करेंगे और दुर्गुण रूपी जल का स्वतः ही परित्याग कर देंगे। इसके लिए आवश्यकता है हमें स्व पर नियंत्रण रखने की, अपनी दुष्प्रवृत्तियों को दबाने की तथा सत प्रवृत्तियों को उजागर और प्रखर करने की। अपने आप पर नियंत्रण सबसे बड़ी तपस्या है, त्याग है। जिसने अपने आप पर नियंत्रण कर लिया, अपने मन को जीत लिया, वही सच्चा महात्मा है, संत है, महापुरुष है। जैसे बूंद बूंद से खड़ा भरता है, वैसे शनह शनह सद्गुण भी आते हैं और उसी क्रम में दुर्गुण जाते रहते हैं। इसके लिए आत्मनियंत्रण, आत्मशोधन एवं आत्मविश्लेषण की आवश्यकता है। आत्मचिंतन और सद एवं पद, अच्छे और बुरे की पहचान ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण सोपान है। मनुष्य की सहज प्रवृत्ति होती है कि बुरे कार्यों विचारों की ओर सहज और सरल आकर्षण होता है, जबकि अच्छाइयों को ग्रहण करना कठिन एवं दुष्कर है। जिस प्रकार पानी सदैव नीचे की ओर सहज ही बह जाता है, जबकि उसी जल को ऊपर चढ़ाने के लिए पंप अथवा अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ता है, साथ ही ऊर्जा भी व्यय होती है और उसे वहां रोके रखने हेतु भी इंतजाम करना पड़ता ही है। ठीक उसी प्रकार हमें अपनी मनोवृत्तियों को उच्च स्तर पर बनाए रखने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है, जो जैसा सोचता है और करता है वो वैसा ही बन जाता है। स्वाभाविक है कुछ भी बनने के लिए सर्वप्रथम वैसी सोच उसी के अनुसार कर्म, जब हम करेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे। पहले कुछ भी बनने के लिए अपनी सोच वैसी ही बनानी चाहिए। विचार रूपी दीपक के अभाव में सांप को रस्सी समझ लेने की मूर्खता भी हो सकती है और बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए वाली स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। अतः प्रत्येक कार्य को करने से पूर्व उस पर अच्छी तरह विचार करना ही समझदारी है। हम अपनी सोच को सकारात्मक, मूल्यपरक और सृजनात्मक बनाएं, जिससे हम जो भी करें वो अच्छा ही अच्छा हो, सुखकारी, लोकहितकारी एवं स्वांताय सुखाय भी हो एवं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो।
1: ये था आज का चिंतन। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। संस्कृत में समाचार थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य यात्रावधौ स्वकीय प्रवासस्य चरमे सोपाने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः रात्रौ पेरिस नगरं सम्प्राप्तवान्। पेरिस नगरे आगमन समये विश्रांति निलये एकत्रिताः भारतीय समुदायस्य सदस्याः उत्साहपूर्वकं तदीय

0: भव्यं स्वागतम् अकुर्वन्। अद्य प्रधानमन्त्री प्रमुख विपणीनां मुख्य कार्यकारिभिः सह चर्चां करिष्यति। तदनन्तरं सः यूरोप महाद्वीपस्य प्रमुख प्रौद्योगिकी मञ्चे विवाटेक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति, तत्र च स्वसम्बोधनं प्रदास्यति। सायंकाले असौ एकस्मिन् सामुदायिक कार्यक्रमे भारतीय प्रवासिभिः सह संवादं विधास्यति। G7 देशैः वैश्विक स्थिरतायाः सुरक्षा सहयोगस्य अथ सीमापार संघटित अपराध निवारणस्य उद्देश्येन विभिन्नाः प्रमुखाः घोषणाः विहिताः। मुख्य वक्तव्ये नेतृभिः अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये संजातं सन्धि निश्चयम् अभिनन्दितम्। अन्य घोषणापत्रे G7 देशैः मादक द्रव्यस्य अवैध कार्यं निरोद्धुं संकल्पो विहितः। अस्मिन् अभियाने ब्राजील दक्षिण कोरिया देशौ अपि सहमतिं प्रदर्शितवन्तौ। फ्रांस देशस्य एवियन नगरे चलायमाने G7 शिखर सम्मेलने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सर्वहितकारी सतत आर्थिक विकासः इत्याख्ये मुख्य विषये आयोजितायां महत्वपूर्ण कार्यगोष्ठ्यां भागं भजते। सत्रेऽस्मिन् G7 देशाः सहभागी राष्ट्राणि अन्ताराष्ट्रिय मुद्रा कोषस्य OECD इत्यस्य च प्रतिनिधयः उपस्थिताः सन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य मध्यप्रदेशस्य ओडिसायाः च पञ्चदिवसीयायां यात्रायाम् अस्ति। प्रथमदिवसे सा मध्यप्रदेशस्य बैतूल नगरे आध्यात्मिक जागृत्या जनजातीय समाजस्य सशक्तिकरण कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। द्वितीय दिवसे सा ओडिसायाः रायरंगपुरे चिकित्सा शिविरस्य ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनायाः च उद्घाटनं विधास्यति। तृतीय दिवसे राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह पहाड़पुरे कौशल केन्द्रस्य निरीक्षणं करिष्यति, सहैव रायरंगपुरे जनसभां च सम्बोधयिष्यति। चतुर्थ दिवसे सा जून मासस्य 21 दिनांके जबलपुरे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसोत्सवे भागं ग्रहीष्यति, सहैव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे अध्यक्षतां विधास्यति। यात्रायाः चरमे सोपाने सा ख्यूनो राष्ट्रिय उद्याने सहरिया जनजातीय सदस्यैः चीता अन्वेषकैः च सह संवादं विधास्यति। संयुक्त राष्ट्र संघस्य खाद्य संस्थाभ्यां खाद्य एवं कृषि संघटनेन अथ विश्व खाद्य कार्यक्रमेण च विज्ञापितं यत् आगामिषु मासेषु युद्ध जलवायु परिवर्तन धन न्यूनता कारणात् विश्वस्य 13 प्रमुख क्षेत्रेषु बुभुक्षा संकटं अधिकं गभीरं भविष्यति। संयुक्त प्रतिवेदनस्यानुसारं सम्प्रति जगति 66.2 कोटि जनाः तीव्र खाद्यासुरक्षया पीडिताः सन्ति। अस्यां सूच्यां सुडान, दक्षिण सुडान, यमन, फिलिस्तीन, नाइजीरिया, सोमालिया चेत्यादयः देशाः अत्यधिक संकटग्रस्ताः सन्ति। प्रतिवेदने चिन्ता प्रदर्शिता यत् 20-22 परं मानवीय सहायतायै प्राप्यमाणं धनं 60% न्यूनं जातम्। WFF संस्थायाः कार्यवाहक निदेशकः कार्ल स्काउ महोदयः अवोचत् यत् यदि शीघ्रं किमपि कार्यान्वयनं न क्रियते तर्हि कोटिशः जनाः दुर्भिक्षस्य गर्ते पतिष्यन्ति। हॉकी क्रीडायां नीदरलैंड देशस्य राइडरहेम नगरे प्रचल्यमाणायाः FIH प्रो लीग स्पर्धा मालिकायाः द्वन्द्वे भारतीय पुरुष हॉकी दलेन जर्मनी दलं 3-1 इत्यांकान्तरालेन पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान

0: श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने, डीप फेक और बच्चों के शोषण जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिसिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मैच में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। ये मनप्रीत सिंह का 413वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। उन्होंने भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रम के लिए देशभर में 1,70,000 से अधिक आयोजकों ने पंजीकरण कराया है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि योग संगम स्वास्थ्य के माध्यम से एकता का उत्सव है। इसके तहत देशभर में हजारों स्थानों पर लोग एक साथ योग करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: प्रदेश में 5 दिवसीय दौरा कर रही हैं। आज सुबह मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य उनका इंदौर विमानतल पर स्वागत करेंगे। इसके पश्चात वे बैतूल जाएंगी। वहां वे ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल सोसाइटी बाय स्पिरिचुअल अवेकनिंग कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस कार्यक्रम के बाद वे ओंकारेश्वर पहुंचकर मंदिर में दर्शन एवं आरती में सम्मिलित होंगी। 19 जून को राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर ओंकारेश्वर में कार्यक्रम में शामिल होंगी। 20 जून को राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जबलपुर पहुंचेंगी और 21 जून वहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके पश्चात रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह में सहभागिता करेंगी। 22 जून को राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू कुनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और इसके बाद वे ग्वालियर पहुंचकर नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक 2026 सम्मेलन में भाग लेंगे। वे भारत की तकनीकी प्रगति और नवाचार को दुनिया के सामने रखेंगे। पेरिस में प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से भारत फ्रांस संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। इससे पहले G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई विश्व नेताओं से मुलाकात की और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस साल 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय निर्यात को बड़ा लाभ मिलेगा। भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। इससे वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जीवन वीरता, शौर्य, पराक्रम, त्याग का प्रतीक है। उनका नाम स्मरण करते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। महाराणा प्रताप ने तमाम कठिनाइयों के बीच भी राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि रखा। समाज का हर वर्ग, देश की अस्मिता और आत्मसम्मान के लिए महाराणा प्रताप को एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में देखता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती के अवसर पर भोपाल के महाराणा प्रताप नगर में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समाज के प्रतिभाशाली डॉक्टर, युवा खिलाड़ियों और समाज सेवियों को मंच से सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा,
2: यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास की ओर जब बढ़ने की बात आएगी तो हमारे लिए भौतिक अधोसंरचनाएं जीवन उपयोगी आवश्यक वस्तुओं के लिए, लेकिन गौरवशाली अतीत के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसे कामों के सिलसिले में हमने कमिटमेंट किया था कि महाराणा प्रताप जयंती पे छुट्टी होगी तो पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर अपने उस अवकाश को भी निभा रहा है, लेकिन अवकाश के साथ साथ उनके जीवन के सभी पक्षों को आने वाली पीढ़ी को जानने के लिए भी हम पाठ्यक्रम में भी महाराणा प्रताप को जोड़ने वाले हैं, ताकि स्कूल एजुकेशन के माध्यम से उनके जीवन के सभी पक्षों से भविष्य की पीढ़ी को भी सीखने को मिले।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सीएस 2028 के भव्य आयोजन के लिए हजारों करोड़ के विकास कार्य तेजी से पूर्ण किए जा रहे हैं। उज्जैन, इंदौर और आसपास के सभी जिलों में विकास को गति मिल रही है। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन में धार, नागदा और रतलाम को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल उज्जैन जिले के नागदा में बालाजी धाम में श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा व ध्वज पूजा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। डॉ. यादव का श्री बालाजी धाम में भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत विशेष रूप से उपस्थित थे। संयुक्त राष्ट्र की संस्था UN वुमेन द्वारा संचालित सेफ सिटीज एंड सेफ पब्लिक

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति आज से प्रदेश के 5 दिवसीय प्रवास पर। प्रधानमंत्री आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। महाराणा प्रताप का जीवन वीरता शौर्य पराक्रम का प्रतीक, कहा मुख्यमंत्री ने। और भारत ने पुरुष क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को और महिला T20 क्रिकेट मैच में नीदरलैंड को हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से

स्पेसेस फॉर वुमेन परियोजना में जबलपुर शहर को शामिल किया गया है। जबलपुर का चयन देश के एकमात्र शहर के रूप में किया गया है। विश्व के चुनिंदा 65 शहरों में संचालित इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत जबलपुर में महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक सर्वसाधारण सार्वजनिक वातावरण विकसित करने की दिशा में कार्य योजना तैयार की जाएगी। इस उपलब्धि पर कल मानस भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े अनुभव और सुझाव साझा किए। इन सुझावों के आधार पर शहर के लिए एक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं, छात्राओं और कामकाजी युवतियों के लिए सार्वजनिक स्थलों को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है। भारत में लखनऊ में खेले गए दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। वहीं महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में कल रात भारत ने नीदरलैंड को 95 रनों से हरा दिया। लीड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड को 209 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। जवाब में नीदरलैंड की टीम 114 रन पर सिमट गई। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मुकाबले में कल भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। आज अगले मुकाबले में भारत का सामना जर्मनी से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 19 जून को विकासखंड कोलारस के ग्राम पचावली और 20 जून को जिला मुख्यालय शिवपुरी स्थित मानस भवन में प्राकृतिक खेती कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी आज आगरमालवा स्थित नमो उपवन में वृक्षारोपण करेंगे और साथ ही जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। नर्मदापुरम जिले में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर मतदाता सूची को अपडेट करने का काम जारी है। इसके तहत नए मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं, जबकि मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले नाम हटाने और अन्य त्रुटियों को सुधारने की कार्रवाई की जा रही है। इंदौर जिले के चंद्रावतीगंज में आगामी 20 जून को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उपस्थित रहेंगे। कटनी जिले में आयोजित जनकल्याण शिविरों के माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जा रहा है। शिविर में अब तक 13,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 12,156 का निराकरण किया जा चुका है। श्योपुर जिले में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत छात्रों के लिए संचालित मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में रसोइयों के लिए कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से प्रदेश के 5 दिवसीय प्रवास पर। प्रधानमंत्री आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। महाराणा प्रताप का जीवन वीरता शौर्य पराक्रम का प्रतीक, कहा मुख्यमंत्री ने। और भारत ने पुरुष क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को तो वहीं महिला T20 क्रिकेट मैच में नीदरलैंड को हराया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर होगा। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए बुंदेली सुगंध में सुनिए बुंदेली वार्ता। बुंदेली कवि गंगाधर व्यास, वार्ताकार हैं पंडित बाबूलाल द्विवेदी।
1: बुंदेली के रसिया और गुणज्ञ कवि पंडित गंगाधर व्यास। बुंदेली भाषा में बुंदेली त्रयी के नाव से जिन तीन कवियन खो जानो जात, वे हैं ईश्वरी, गंगाधर व्यास और ख्याली राम दरोगा जी। ईश्वरी के बाद लोकप्रियता में दूसरा स्थान

मान गंगाधर व्यास जी को मानो जात। उम्र में व्यास जी ईसरी से 18 साल लौरे हते, ख्याली राम जी से वे उम्र में 7 साल बड़े थे। व्यास जी को जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर में संवत 1899 ईस्वी सन 1842 में एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में भव हतो। पढ़ाई लिखाई तो उनकी प्राइमरी में केवल दर्जा 5 ही तक हो पाई। घरेलू परेशानियन ने इन्हें और आगे नहीं पढ़न दो। मऊरानीपुर के श्री बाल मुकुंद जी दर्जी, जो उस समय के अच्छे कवि और गुणज्ञ पारखी हते, उनकी रिश्तेदारी छतरपुर में व्यास जी के घर के बगल में हती थी। सो उनको आवो जावो, उठवो बैठवो व्यास जी के लिगा ज्यादा रत्तो। ईश्वरी की फागे और उनके फड़बंदी लोकगीत सुनके 16 साल की उम्र से वे ऐसे ऐसे उम्दा उम्दा धरव्वल, जीव परव्वल, मन भरव्वल, ख्यालन के संगे फागे बनाऊन और गाऊन लगे थे, जिन्हें सुनके सुनवे वारन के करेजे में गुथना कैसी लोड़ लगती। उनने जोन लिखो वे बाल मुकुंद नाम देव जी से पहले जचा लो, वे वे और समार देते। व्यास जी बाल मुकुंद जी को गुरु मानन लगे। एक दिना उनने उनसे गुरु दक्षा लेवे की बात करी। नामदेव जी कन लगे, हम तो दर्जी आए सो दक्षा तो नहीं दे पाए, पे हमारे कैसे तुम पंडित जी हेमराज जू से दक्षा ले लो। व्यास जू हेमराज जू से संस्कारित होके उनसे पिंगल पड़के एक से एक नामी कवित शेर केव तरह की फागे बनाऊं और गाऊं लगे। एक कड़ी की फाग ख्याल, दो कड़ी, तीन कड़ी, चौकड़ी, पचकड़ी, छकड़ी, डिड़खुरियाऊ, टौका, झूमर, झूला, झुलना, डेढ़पदी, ढप और खड़ी पाग, छंडियाऊ फाग लिखन लगे थे। उनकी छुट्टा फागे मुक्तक सुनके तो भूलन पर जाती कि जे फागे ईश्वरी की आए के गंगाधर जू की। नायिका भेद के कुशल पारखी वे हतई थे, संगई संगे वे चतुर चितेरे सौ हते। व्यास जू के संगे बालमुकुंद जू रत्ते, फड़बंदी और दलबंदी फागे गावे के काजे। उनके प्रतिद्वंदी परमानंद जी पांडे छतरपुर के हते। दूसरे उनके मुकाबले में पंडित दुर्गा प्रसाद जी पुरेत, जो मऊरानीपुर के हते, बे बैठते। उनके बीच को मुकाबला सुनवे जनता पूरी रात टकटकी लगा के कानों देखे सुनत रत्ती। रात की तो कतको है, कभू कभू तो दिन चढ़े तक फागे बड़ाए पे नहीं आउती। छतरपुर में जवे विश्वनाथ सिंह जू देव राजा हते, उन्हीं के आश्रय में रहके इनने जितनी फागे रची उनमें से 300-400 फागे अबे गावे वारन के लगा कितों कितों बच पाई और सब हिरा गई। ईसरी मऊ और मेडकी के हते थे, सो उन्हें राजा बिजावर को संरक्षण हतो। गंगाधर कभू कभू ईसरी के घरे आउ जात रखते। एक दिना वे ईसरी के घरे गए, उनकी पत्नी राजा बेटी ने व्यास जी की खूब आव भगत करी। उदना कोनू त्योहार हतो, राजा बेटी उतना नक सिक से सिंगरी हती, नाक में दुर मुरकी पैरे, दसई उंगरियन में मुदरी, कन्न फूल लुरकी, पावन में पैजना पैरें, आंखन में सुरमा लगाएं, मांग में सेंदुर भरें। ईसरी के बगल में बैठ के व्यास जी से कन लगी, लाला फागन में आजकल तुमाओ बहुत नाव सुन रहे, तुम्हारे भैया ईसरी तुम्हारी बहुत ही तारीफ करत, अरे एकाद फाग मोई घो सुना दो। चतुर चितेरे ने फाग तुरंत ही बना दई और तुरंत ही गाउन लगे। बिसरे न मोये हलन दुर की, बेसुर की गूंज तनक मुरकी, बिसरे न मोये हलन दुर की, दस उंगरी दस मुदरी सो है बजन पैजना के सुर की, दस उंगरी दस मुंदरी सो है बजन पैजना के सुर की, बिसरे न मोये हलन दुर की, बेसर की गूंज तनक मुरकी, कानन भर भर कन्न फूल हैं, कानन भर भर कन्न फूल हैं, गोरे गाल सा कर लुरकी, नैनन भर भर सुरमा सोहे सेंदुर मांग भरी मुरकी, बिसरे न मोए हलन दुर की,

0: सुर की गूंज तनक मुर की। नैनन भर भर सुरमा सो है सेंदुर मांग भरी मुर्की। गंगाधर के संग चलो तो लेवे मौज छतरपुर की। गंगा धर के संग चलो तो लेवे मौज छतरपुर की। बिसरे न मोए हलंदुर की बेसुर की गूंज तनक मुर की। जाफाक सुन के ईसरी ने ब्यास जू की करियाई ठोक के आशीर्वाद को हाथ उनके ऊपर धर दो। उनने भौजी राजा बेटी और बुंदेली के आदि लोग कवि ईसरी के पांव परे। ब्यास जू के घर से तनक सांव रंग की हती थी ना तो उनको भुलन हतो। पर रंग देख के वे एक दिना को ने उनसे कलन कल्लो कह दई। ब्यास जू ने तुरंत ही फाग बना के गा दई। अरे हुई है जान तुम्हारे कारी अरे मोरी प्राणन प्यारी। हुई है जान तुम्हारे कारी कारण की कहूं देखी नैया बसत बसीकत न्यारी। कारी की कहूं देखी नैया बसत बसीकत न्यारी। कौन बात कारी में नैया कागोरी में भारी। कारण हुई है जान तुम्हारे कारी मोरी प्राणन प्यारी। अपने भागन मिलत सवई खो अपने भागन मिलत सवई खो कारी गोरी नारी। गंगाधर मन बसी हमारे गंगाधर मन बसी हमारे सांवरिया रंगवारी। हुई है जान तुम्हारे कारी मोरी प्राणन प्यारी। भगवान पे पूरा भरोसा करवे वारे परम संतोष की मूरत ब्यास जू की फाग में देखते ही बनत के वे कितने संतोषी हते। तनक देखो अपन जिनखो खाने और कमाने जिनखो खाने और कमाने कैसे जुरत खजाने। जिनखो खाने और कमाने माया जोर धरी घर भीतर कौ काय के लाने। माया जोर धरी घर भीतर कौ काय के लाने। चलती बिरियां संग न जाने चलती बिरियां संग न जाने देख देख पछताने। जिनखो खाने और कमाने कैसे जुरत खजाने। जीने देह दई मानुष की तिये फिकर में राने। जिनने देह दई मानुष की तिये फिकर में राने। और गंगाधर ईश्वर लय ठाणे जीखो जितनो चाने। गंगाधर ईश्वर लय ठाणे जीखो जितनो चाने। जिनखो खाने और कमाने कैसे जुरत खजाने। ईसरी चौकड़ी फागन के परमाचारी हैं तो ब्यास जू खड़ी पागन के जन्मदाता माने जात। गुलाबी रंग की लाल धोती तनीदार मिर्जाई मूड पे सोंख साई को स्वापा माथे पे लाल रंग श्री को टीका जेई उनकी सादा और जेई उनकी बन्नई पोशाक रत्ती। बुंदेली के लोक कवि ब्यास जू संबद 1962 में तो सरग राजा हो गए पे आज भी हम सब उनकी कविताएं और फागे गागा के गर्वे रत और गाउत सुनत रत। इनकी और भी भागे हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे पंडित बाबूलाल द्विवेदी की वार्ता बुंदेली कवि गंगाधर ब्यास। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का ये पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले अनूप जलोटा और साथियों की आवाज में। शब्द रचना है माया गोविंद की जिसे संगीतबद्ध किया है अनूप जलोटा ने। फिल्म है पत्तों की बाजी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

मनहर उदास कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म स्वाति का ये गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लीजिए सुनिए अगला गीत, फिल्म है कालचक्र, आवाज है अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास साथियों की, गीतकार इंदेवर, संगीत निर्देशन है विजय बटलवी का।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में आप ये गीत सुन रहे थे। इंदीवर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था बप्पी लहरी ने। फिल्म थी इंसाफ की आवाज। कार्यक्रम का आखिरी गीत है किशोर कुमार और साथियों की आवाज में हिरासत फिल्म से। शब्द रचना विश्वेश्वर शर्मा की और संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का।

0: हिरासत फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात, थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवेटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान

0: को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
1: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
2: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
0: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
3: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
4: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
5: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सीकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात

0: नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके

0: कानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
1: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
2: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
0: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
3: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
0: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
5: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
6: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट AF थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
7: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की

0: तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन, फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1, रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल, संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती, बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashwani presents Morning News. Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to attend VivaTech Summit in Paris with French President Emmanuel Macron. PM Modi to also address members of Indian community in French capital. President Draupadi Murmu to embark on a 5-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for 2 Rajya Sabha seats from Jharkhand and 1 from Mizoram to take place today. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement to come into force on the 15th of July this year. US President Donald Trump signs 14-point peace deal with Iran to end West Asia conflict. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the 3-match series to take unassailable 2-0 lead. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi arrived in Paris last night for the final leg of his visit to France. Upon his arrival in the French capital, Mr. Modi received a warm welcome from the members of the Indian community gathered at his hotel.
3: I feel India and France, it goes beyond geopolitics, education, culture, AI, innovation, it is everything.
4: So we are very thankful that Modi ji aaye humse mile.
2: In Paris, Prime Minister Modi will attend the VivaTech 2026 alongside French President Emmanuel Macron. The VivaTech Summit is Europe's largest technology and startup event where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation, ecosystem and technological advancements. Prime Minister Modi is also scheduled to address members of the Indian community during a special diaspora event. We have more from our correspondent.
5: Today the Prime

यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि नारायण मल्हार जोशी का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 5 जून। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश से प्रवीण कुमार झा और दमोह से किशन घीवाला। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि।

0: भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
1: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ
0: शौर्य स्मारक भोपाल समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं ध्यान रहे बुधवार अवकाश

भारतीय स्वाधीनता इतिहास में ऐसे अनगिनत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को एक तपस्या की तरह जिया, जिन्होंने सेवा को साधना माना तथा राष्ट्र प्रेम को जीवन का सर्वोच्च धर्म। उन्होंने स्वतंत्रता को केवल स्वप्न नहीं माना, बल्कि गांवों जंगलों में घूम घूम कर उसे जन जन का विश्वास, संघर्ष और संकल्प बना दिया। अपने जीवन का प्रत्येक क्षण राष्ट्र को समर्पित करने वाले ऐसे ही महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे लक्ष्मण प्रसाद दुबे। वो एक दूरदर्शी शिक्षाविद और समाज सुधारक भी थे। चूंकि उनका पूरा जीवन एक शिक्षक के रूप में बीता और अपने इस कर्तव्य को उन्होंने एक साधना माना, इसलिए वो आम जन में गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। लक्ष्मण प्रसाद दुबे का जन्म 9 जून 1909 को दुर्ग जिले में हुआ था। ये वो समय था जब देश में राष्ट्रवाद की लहरें हिलोरें ले रही थीं। सन 1905 में बंग भंग आंदोलन की आंच से पूरा देश सुलग रहा था। ऐसे वातावरण में लक्ष्मण प्रसाद दुबे का बचपन बीत रहा था। उनकी आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्तर पर ही आरंभ हुई और शिक्षा के साथ साथ वो समाज की विषमताओं को भी देख रहे थे। शोषण और पराधीनता के प्रभाव से वो अत्यंत आहत हो जाया करते थे। विद्यार्थी जीवन से ही उनके भीतर अध्ययन के साथ साथ सामाजिक सरोकारों के प्रति गहरी रुचि थी। यही कारण है कि वो केवल पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि समाज और राष्ट्र की परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते रहे। फिर वो समय आया कि जब देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन नई दिशा प्राप्त कर रहा था। स्वदेशी और सत्याग्रह के विचार लोगों को आकर्षित कर रहे थे। लक्ष्मण प्रसाद दुबे भी इस राष्ट्रीय चेतना से अछूते नहीं रहे। उनके मन में देश की स्वतंत्रता और समाज के उत्थान का भाव निरंतर प्रबल होता गया।

अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। वो अध्यापन का कार्य तो करते ही थे, इसके साथ ही उन्होंने अनेक युवाओं को राष्ट्र सेवा हेतु प्रेरित किया। भिलाई में शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए उनका संपर्क जिले के वरिष्ठ सत्याग्रही नरसिंह प्रसाद अग्रवाल से हुआ। अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में उन्होंने मद्य निषेध आंदोलन चलाया, स्वदेशी का संकल्प लिया तथा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। विदेशी वस्तुओं के साथ साथ उन्होंने जॉर्ज पंचम का चित्र भी जलाया। 1930 का दशक भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का अत्यंत महत्वपूर्ण समय था, जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आरंभ किया। इसी समय लक्ष्मण प्रसाद दुबे सक्रिय राजनीति में शामिल हुए। वो अब राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। वो जनसंपर्क संगठन निर्माण के साथ ही लोगों के भीतर राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम करने लगे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत शांत, सरल और कर्मठ था। वो मानते थे कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं बल्कि समाज में जागृति और आत्मसम्मान का संचार भी है। यही कारण है कि वो शिक्षा पर अत्यधिक बल देते थे। वो विशेष रूप से नारी शिक्षा और नारी स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर थे। सन 1930 में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा आरंभ की, तब इस आंदोलन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी व्यापक रूप से हुआ। सन 1930 में जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा आरंभ की, तब इस आंदोलन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी व्यापक रूप से हुआ। क्योंकि यहाँ कोई समुद्र तट नहीं था, इसलिए सविनय अवज्ञा की भावना से जुड़ते हुए ब्रिटिश शासन के अन्य दमनकारी कानूनों को चुनौती दी गई। मध्य प्रांत में जंगल सत्याग्रह आंदोलन का प्रमुख रूप बन गया। वन क्षेत्रों में रहने वाले किसानों, जनजातीय समाज के लोगों और ग्रामीणों पर अंग्रेजों ने जंगलों में चराई, लकड़ी, घास और वन उपज लेने पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे थे। इसलिए सत्याग्रहियों ने इन कानूनों का उल्लंघन करने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ का पोड़ी जंगल सत्याग्रह 1930 के जंगल सत्याग्रहों में एक महत्वपूर्ण कड़ी था। छत्तीसगढ़ में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश वन कानूनों के विरोध में किया गया था। धमतरी के पास स्थित बालोद के ग्राम पोड़ी में हुए जंगल सत्याग्रह का आरंभ जुलाई 1930 में हुआ, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने किया। लक्ष्मण प्रसाद दुबे चूंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में काम कर रहे थे, इसलिए जाहिर तौर पर वो इसमें सघन रूप से सक्रिय हुए। सत्याग्रहियों ने आरक्षित वन क्षेत्र में प्रवेश किया, घास और लकड़ी एकत्र की, पशुओं को प्रतिबंधित क्षेत्रों में चराया, इस तरह वन कानूनों का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया।

इस सत्याग्रह की पूरी रूपरेखा तथा दस्तावेजी काम अग्रवाल जी ने लक्ष्मण प्रसाद दुबे को सौंप दिया था। सत्याग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को उन्होंने गुप्त रूप से संरक्षित रखा और उसका पूरा लेखा जोखा एक रजिस्टर में दर्ज कर उसे संकलित किया। सत्याग्रह की इन सभाओं में महिलाएं भी आती थीं, जो चरखा लेकर आंदोलन का प्रतिनिधित्व करती थीं।

लक्ष्मण प्रसाद दुबे ने राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो लोगों के बीच जाकर उन्हें देश की स्थिति से अवगत कराते, स्वाधीनता आंदोलन के उद्देश्य को समझाते और राष्ट्रहित में लोगों को संगठित होने का संदेश देते। उनका मानना था कि स्वतंत्रता का संघर्ष केवल नेताओं का नहीं बल्कि जन सामान्य का संघर्ष है। सन 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया, तब पूरा देश नई ऊर्जा से भर उठा और एक निर्णायक लड़ाई आरंभ हुई। इस समय भी लक्ष्मण प्रसाद दुबे छत्तीसगढ़ में सक्रिय थे। वो स्वाधीनता आंदोलन और जंगल सत्याग्रह में पूरी तरह से जुटे हुए थे। उनकी गतिविधियों पर अंग्रेजी शासन की नजर रहने लगी, लेकिन नरसिंह प्रसाद अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद भी वो रुके नहीं। वो आंदोलन को हवा देते रहे। परिणाम स्वरूप लक्ष्मण प्रसाद दुबे को गिरफ्तार करने का आदेश जारी हुआ। उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दिया और भूमिगत हो गए और वन्य क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन की लौ जलाते रहे। सन 1942 से 1947 तक वो दुर्ग, रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय रहे। 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बाद भी वो चुप नहीं बैठे। वो लगातार समाज सेवा के मार्ग पर चलते रहे। उनके लिए स्वाधीनता का अर्थ केवल अंग्रेजी शासन से मुक्ति नहीं था, वो एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहां शिक्षा, जागरूकता और मानवीय मूल्यों का विकास हो। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ही उन्होंने शिक्षा के महत्व को बहुत गहराई से समझ लिया था। वो अक्सर कहा करते थे कि किसी भी राष्ट्र का वास्तविक विकास शिक्षित और जागरूक नागरिकों के माध्यम से ही संभव है। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद उन्होंने किसी भी पद का लालच नहीं किया। आजादी के बाद उनका पूरा ध्यान सामाजिक जागरण और शिक्षा पर ही केंद्रित रहा। लक्ष्मण प्रसाद दुबे ने ग्रामीण अंचलों में शिक्षा के प्रसार और विद्यालयों की स्थापना की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो मात्र एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी नहीं थे, बल्कि वो ग्रामीण शिक्षा जागरण के अग्रदूत भी थे। गुरुजी के रूप में उन्होंने गांव-गांव में शिक्षा की अलख जगाई, अनेक युवाओं को अध्यापन कार्य से जोड़ा और ग्रामीण अंचलों में विद्यालयीन शिक्षा के विस्तार की दिशा में मजबूत नींव रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत की आजादी, भारत का उत्थान, भारत की विजय ही उनके जीवन का अनंतिम लक्ष्य था। निस्वार्थ भाव से आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 23 जुलाई सन 1993 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसे महान राष्ट्र सेवी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और

संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था? सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकरंग। लोकरंग कार्यक्रम में आज कलाकार हैं राम किशोर मिश्रा। इनके साथ ढोलक पर संगत कर रहे हैं गोविंद, बैंजो पर हैं लखनलाल वंशकार, हारमोनियम पर लहरा देंगे सतीश कुमार पांडे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस देवी गीत के साथ।

0: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
3: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

साथियों, लोकरंग कार्यक्रम में आज कलाकार हैं रामकिशोर मिश्रा। इनके साथ ढोलक पर संगत कर रहे हैं गोविंद, बेंजो पर लखनलाल वंशकार, हारमोनियम पर लहरा दे रहे हैं सतीश कुमार पांडे। लीजिए अब सुनते हैं चौकड़िया।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

लोकरंग कार्यक्रम में आज कलाकार हैं रामकिशोर मिश्रा। इनके साथ ढोलक पर संगत कर रहे हैं गोविंद। बेंजो पर हैं लखनलाल वंशकार। हारमोनियम पर लहरा दे रहे हैं सतीश कुमार पांडे। लीजिए अब सुनते हैं ये लोक भजन।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।

अभी आपने सुनी बिलवारी लोकरंग कार्यक्रम में। आज कलाकार थे रामकिशोर मिश्रा। इनके साथ ढोलक पर संगत कर रहे थे गोविंद। बैंजो पर थे लखनलाल वंशकार। हारमोनियम पर लहरा दे रहे थे सतीश कुमार पांडे। इसी के साथ कार्यक्रम लोकरंग अब समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए एक ही गायक के अंतर्गत अलीशा चिनॉय के गाए हुए कुछ फिल्मी गीत।

शिकारी फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज थी अलीशा चिनॉय की, संगीत निर्देशन आनंद राज आनंद का, गीतकार थे देव कोहली। अगला गीत सुनिए, फिल्म है कारोबार, संगीत निर्देशन राजेश रोशन का, शब्द रचना जावेद अख्तर की।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

गुंडाराज फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज थी अलीशा चिनॉय, कुमार सानू और साथियों की। संगीत निर्देशन अनु मलिक का था और शब्द रचना जफर गोरखपुरी की। लीजिए अब सुनिए अलीशा चिनॉय की आवाज में माला माल फिल्म का गीत, शब्द रचना इंदीवर की, जिसे संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

श्रोताओं, एक ही गीत गायक में आज आप सुन रहे हैं अलीशा चिनॉय के गाए हुए कुछ गीत। अलीशा चिनॉय का असल नाम सुजाता चिनॉय है। इन्हें इंडी पॉप की रानी कहा जाता है। इन्होंने 90 के दशक में अपने आइकॉनिक गाने मेड इन इंडिया और बॉलीवुड गानों जैसे कजरारे से अपार सफलता हासिल की। 18 मार्च 1965 को अहमदाबाद गुजरात में जन्मी अलीशा ने 1985 में एल्बम जादू से अपने कैरियर की शुरुआत की। 1995 में उनका एल्बम मेड इन इंडिया रिलीज हुआ, जिसने उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई और वह रातों रात स्टार बन गई। उन्होंने कजरारे, टिनका टिनका और कांटे नहीं कटते जैसे सदाबहार गाने गाए हैं। कजरारे के लिए फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबॉय अवार्ड भी इनको मिला है। तो लीजिए सुनते हैं इनका एक और गीत।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन

0: गिवन मोमेंट है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। एक ही गायक के अंतर्गत आज आपने सुने अलीशा चिनॉय के गाए हुए कुछ फिल्मी गीत।

0: और कास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है जिले की चिट्ठी थोड़ी देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित होगी।

0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सतना जिले की चिट्ठी। स्वर शरद बाघेला।
1: सतना जिले में भी इन दिनों प्री मानसून गतिविधियों का दौर है। तेज हवा के साथ कहीं कहीं बारिश होने से तापमान में कमी आई है। जिले में अति वर्षा और बाढ़ आपदा स्थिति में आवश्यक सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 07672223211 यानी 07672223211 है। कंट्रोल रूम के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कंट्रोल रूम के लिए प्रभारी अधिकारी राहत शाखा और डिप्टी कलेक्टर लक्ष्य राम जांगड़े को बनाया गया है, जिनका नंबर 9993754244 यानी 999-3754244 है। सतना जिले में खरीफ फसलों की बोनी की तैयारी को ध्यान में रखते हुए जिले में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उप संचालक किसान कल्याण कृषि ने बताया कि वर्तमान में सतना और मैहर जिलों में यूरिया, डीएपी, एनपीके और एसएसपी सहित विभिन्न उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने गत माह स्थानीय टाउन हॉल में आयोजित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम में सांसद गणेश सिंह उपस्थित रहे। विगत दिनों प्रदेश की पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और मैहर जिले की प्रभारी मंत्री राधा सिंह ने मैहर जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट भवन के पास 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नवीन जिला पंचायत के भवन निर्माण का भूमि पूजन किया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिला पंचायत भवन को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण के साथ तैयार किया जाए। प्रदेश की नगरी विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के अरेगांव विधानसभा क्षेत्र में 11 से 15 जून तक सघन भ्रमण एवं जनसंवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। रेगांव मंडल के प्रवास के दौरान राज्य मंत्री ने जनसंपर्क, जनसुनवाई और विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए क्षेत्रवासियों को 213 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगातें दी। कार्यक्रम के तहत उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी दिलाया। उन्होंने ग्रामीणों से अधिक वृक्षारोपण करने और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। जिले के जवाहर नगर स्थित दादा सुखेंद्र सिंह स्टेडियम में स्विमिंग पूल सहित शेष बचे निर्माण कार्यों का शुभारंभ सांसद गणेश सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि ये स्विमिंग पूल युवाओं में तैराकी के प्रति रुचि बढ़ाने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सतना और मैहर जिले में 12 से 18 जून तक नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में क्षेत्रीय नागरिकों की समस्याओं के निराकरण और विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। सतना जिले में वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन एवं संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी जल संसाधनों में 16 जून से 15 अगस्त तक

क्लोज सीजन घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान सभी प्रकार की मछली पकड़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सतना जिले में मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को सभी स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। समय समय पर टीकाकरण कराए जा रहे हैं। सतना और मैहर जिले में किसानों के कल्याण के लिए कृषि और संबंधित विभाग के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए 10 दिवसीय कृषि रथ का शुभारंभ किया गया। ये कृषि रथ जिले के प्रत्येक विकास खंड के अंतर्गत निर्धारित सभी ग्राम पंचायतों में पहुंचकर किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहा है। सतना जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जल संरक्षण और जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए व्यापक स्तर पर गतिविधियां आयोजित की गई। इसी तारतम्य में शहर के प्रसिद्ध जगत देव तालाब में जिला पंचायत और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तालाब सफाई के लिए संकल्प लेकर सफाई कार्य शुरू किया। सतना जिले के मझगवां विकासखंड अंतर्गत नकेला में क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र मझगवां के संयुक्त तत्वावधान में किसानों को औषधि पौधों की उन्नत खेती प्रसंस्करण और उपयोग विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। और सतना जिले में 28 से 30 जून तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा, जिसमें घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम बच्चों को दवा पिलाएगी। सतना जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे सतना जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी
1: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए रसावतरण में कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि हैं डॉक्टर अनुज भदौरिया, शफी कुर रहमान कशफी और फरीद बेग।
2: नमस्कार। आकाशवाणी छतरपुर के 90 वर्ष पूरे होने पर आज कविता शायरी का मुकम्मल प्लेटफॉर्म रसावतरण में मैं डॉक्टर अनुज भदौरिया की ओर से आप सभी को सादर प्रणाम। हमारे बीच आज की रसावतरण गोष्ठी में बिजावर से शायरी का हुनर दिखाने आए हैं जनाब फरीद बेग साहब। उरई से हमारे हमराह और शायरी का मुकम्मल नाम जनाब शफीक रहमान कशफी साहब और मैं भी उरई से ही डॉक्टर अनुज भदौरिया। तो आज की रसावतरण गोष्ठी को हम शुरू करते हैं हमारे बीच बिजावर से आए जनाब फरीद बेग साहब से कि वो अपने कलाम से इस गोष्ठी को नवाजें।
3: आज की इस गोष्ठी में सबसे पहले एक मतलब एक शेर समाज फरमाए। हमें अपने बुजुर्गों की विरासत नहीं देंगे, हमें अपने बुजुर्गों की विरासत नहीं देंगे, हमें अपने

ये जन्नत नहीं देंगे, हे ये जन्नत नहीं देंगे। शेर समाप्त फरमाए, आओ।

0: आओ के कसम खाए तिरंगे के तले ये बदले में किसी को कभी नफरत नहीं देंगे, बदले में किसी को कभी नफरत नहीं देंगे। एक शेर दूसरी जमीन में समाप्त फरमाए, अपने वतन की मुझको हर एक शय से प्यार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी

गजल समाप्त फरमाए। गजल का मतलब देखें, अफसोस बेकसों को सहारा नहीं मिला, अफसोस बेकसों को सहारा नहीं मिला, अफसोस बेकसों को सहारा नहीं मिला।

गुलशन में कोई ऐसा नजारा नहीं मिला। शेर समाज फरमाए कि आएगी फिर बहार गुलस्ता में।

0: अब तक तो कोई ऐसा इशारा नहीं मिला, अब तक तो कोई ऐसा इशारा नहीं मिला। शेर समाज फरमान कि कितनी अजीब बात है इस दौर में तुम्हें,
1: क्या बात,
0: कितनी अजीब बात है इस दौर में तुम्हें, दुनिया

दुनिया में कोई इश्क हमारा नहीं मिला। शेर समाज फरमाए कि मौका वो याद आता है रह रह के बारहा। मौका

मिला। शेर समाप्त फरमाए कि आया ना बाज चरो बु जबानी से वो अभी, आया ना बाज चरो बु जबानी से वो अभी, शायद

0: यहाँ पर जो है उन्होंने अपना हुनर दिखाया। और इसी शायरी का जो एक दूसरा नाम जिन्हें हम जनाब शफीकुर्रहमान कस्बी साहब कहते हैं, जो रई से हमारे बीच पधारे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने कुछ शेर व शायरी से हम सब लोगों को नवाजें।
1: बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनुज भदौरिया जी, बहुत ही अच्छे शेर आप समाज फरमा रहे थे। छतरपुर का ये विविध भारती का कार्यक्रम मिला जुला, आइए इन चार मिसरों से रसातरण काव्य गोष्ठी में चार पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ। अतः है कि कहानी कोई भी चाहत की हो एक दास्तां तक है, कहानी कोई भी चाहत की हो एक दास्तां तक है, बताऊं मैं तुम्हें कश्फी कहां से ये कहां तक है। कहानी कोई भी चाहत की हो एक दास्तां तक है, बताऊं मैं तुम्हें कश्फी कहां से ये कहां तक है। मोहब्बत की तो वुसत यूं जमी से आसमां तक है, मोहब्बत की तो वुसत यूं जमी से आसमां तक है, मगर चाहत जिसे कहते हैं वो महदूद मां तक है।
0: क्या
1: मोहब्बत की तो वुसत यूं जमी से आसमां तक है, मगर चाहत जिसे कहते हैं वो महदूद मां तक है, मगर चाहत जिसे कहते हैं वो महदूद मां तक है। चार मिसरे और देखें। इसी सिलसिले अर्ज किया है कि मोहब्बत एक कहानी चाहती है, मोहब्बत एक कहानी चाहती है, मेरे दिल की निशानी चाहती है। मोहब्बत एक कहानी चाहती है, मेरे दिल की निशानी चाहती है, और इशारों को जबाने बख्श कर वो, इशारों को जबाने बख्श कर वो, बस इतनी सावधानी चाहती है।
0: है, है, है।
1: इशारों को जबाने बख्श कर वो, इशारों को जबाने बख्श कर वो, बस इतनी सावधानी चाहती है, बस इतनी सावधानी चाहती है। और इसी सिलसिले से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए
0: जी
1: देखें, चार मिसरे कहे हैं, अर्ज किया है कि कम हुआ हूँ तेरा मयार बचाने के लिए, कम हुआ हूँ तेरा मयार बचाने के लिए, सर झुकाया नहीं दस्तार बचाने के लिए।
0: है, है, है।
1: कम हुआ हूँ तेरा मयार बचाने के लिए, सर झुकाया नहीं दस्तार बचाने के लिए, और अपने मिटने का हमें गम नहीं, मिट जाएंगे। कम हुआ हूँ तेरा मयार बचाने के लिए, सर झुकाया नहीं दस्तार बचाने के लिए, अपने मिटने का हमें गम नहीं, मिट जाएंगे। अपना मिटता हुआ किरदार बचाने के लिए, अपने मिटने का हमें गम नहीं, मिट जाएंगे। अपने मिटने का हमें गम नहीं, मिट जाएंगे। अपना मिटता हुआ किरदार बचाने के लिए, अपना मिटता हुआ किरदार बचाने के लिए। आइए कुछ शेर और देखें। अर्ज किया है कि जिंदा रहने के एक एक मतलब एक शेर देखें। अर्ज किया है कि जिंदा रहने के जिन्हें सारे हुनर आते हैं, जिंदा रहने के जिन्हें सारे हुनर आते हैं, सुरखुरु हो के वही लौट के घर आते हैं। जिंदा रहने के जिन्हें सारे हुनर आते हैं, सुरखुरु हो के वही लौट के घर आते हैं। और मेरे बच्चों न तुम्हें भूख से मरने देंगे, मेरे बच्चों न तुम्हें भूख से मरने देंगे, तुम यही ठहरो कि हम बेच के सर आते हैं।
0: है, है, है,
1: क्या मेरे बच्चों न तुम्हें भूख से मरने देंगे, तुम यही ठहरो कि हम बेच के सर आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आइए कुछ शेर और देखें। अर्ज किया कि गमों का जिक्र मेरा उनसे यार मत करना, गमों का जिक्र मेरा यार उनसे मत करना, बिना वजह में उन्हें अश्कबार मत करना। गमों का जिक्र मेरा उनसे यार मत करना, बिना वजह में उन्हें अश्कबार मत करना, और वफा खुलूस मोहब्बत जो जानते ही नहीं, वफा खुलूस मोहब्बत जो जानते ही नहीं, तुम्हें कसम है कभी उनसे प्यार मत करना। वफा खुलूस मोहब्बत जो जानते ही नहीं, वफा खुलूस मोहब्बत जो जानते ही नहीं, तुम्हें कसम है कभी उनसे प्यार मत करना, तुम्हें कसम है कभी उनसे प्यार मत करना। चार मिसरे और देखें, उसके बाद एक छोटी सी गजल। अर्ज किया है कि जिंदगी खुद तबाह कर बैठा, जिंदगी खुद तबाह कर बैठा, ये मैं कैसा गुनाह कर बैठा। जिंदगी खुद तबाह कर बैठा, ये मैं कैसा गुनाह कर बैठा, अपना ही जर्फ देखना था मुझे, उनकी जानिब निगाह कर बैठा।
0: है है है है।
1: अपना ही जर्फ देखना था मुझे, उनकी जानिब निगाह कर बैठा। आइए गजल का एक मतला के यूं कहा है कि मुफलिसी मैंने तेरा रूप ये अक्सर देखा, मतलब देखें कि मुफलिसी
0: जी
1: मैंने

0: मेरा रूप ये अक्सर देखा, आंधियां आई तोड़ता हुआ छप्पर देखा।
1: आए है, तो है, क्या बात है
0: मुफलिसी,
1: क्या बात, क्या बात।
0: मैंने तेरा रूप ये अक्सर देखा, आंधियां आई तोड़ता हुआ छप्पर देखा, आंधियां आई तोड़ता हुआ छप्पर देखा, और शेर देखेंगे मैं तो कतरा हूँ जहाँ में मेरी तौकीर है क्या, मैं तो कतरा हूँ जहाँ में, मैं तो कतरा हूँ जहाँ में मेरी तौकीर है क्या, तेरी चाहत में तो बेताब समुन्दर देखा, मैं तो कतरा हूँ जहाँ में मेरी तौकीर है क्या, तेरी चाहत में तो बेताब समुन्दर देखा। और आखिर में एक शेर और देखें
1: जी,
0: इसके बाद इजाजत चाहूंगा कि दिल ने एक आह भरी और वहीं बैठ गया।
1: क्या बात,
0: दिल ने एक आह भरी और वहीं बैठ गया अपने हमदर्द के जब हाथ में पत्थर देखा। दिल ने एक आह भरी और वहीं बैठ गया अपने हमदर्द के जब हाथ में पत्थर देखा, अपने हमदर्द के जब हाथ में पत्थर देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि आज की ये मिली जुली रसावतरण की चतरपुर की गोष्ठी थी, उसका बहुत ही अच्छा संचालन निजामत कर रहे बहुत ही अच्छे गीतकार जनपद जालौन के मुख्यालय उरई से आए हुए भाई डॉक्टर अनुज भदौरिया जी को मैं दावत सुकन देता हूँ, काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और काव्य पाठ करें। डॉक्टर अनुज भदौरिया
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक कुछ मुक्तक के साथ शुरुआत करता हूँ। प्रीत

अधर गुलाबी केश श्याम घन उदित भानुसी बिंदिया सुखद सुहानी सपन संजोए।

एक खुशी दिल में इजहार होने लगी, एक खुशी दिल में इजहार होने लगी। एक और मुक्तक आप लोगों के बीच रखता हूं कि आपको देखकर देखता रह गया, आपको देखकर

0: बहुत वाह वाह वाह,
1: बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज के रसावतरण कार्यक्रम में हमारे बीच में जनाब फरीद बेग साहब बिजावर से और उरई से जनाब शफीक और रहमान कस्पी साहब और सभी आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार।
2: अभी आप रसावतरण में सुन रहे थे कवि गोष्ठी, प्रतिभागी कवि थे डॉक्टर अनुज भदौरिया, शफीक उर रहमान कशफी और फरीद बेग। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूर्णिमा चतुर्वेदी का नमस्कार। श्रोताओं भरोसा रखें कि हमारा जीवन बहुत शानदार है और यही भरोसा इसे हकीकत बना देता है। हमें भी भरोसा है कि आपकी फरमाइश हमारे कार्यक्रम को शानदार बनाती है, तो अपनी फरमाइश हमें भेजते रहिए ईमेल के द्वारा, पत्रों के द्वारा या फिर हमारे आकाशवाणी छतरपुर के फेसबुक पेज पर। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आपकी भेजी गई इस फरमाइश के साथ।

जन्नत फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीत निर्देशन था प्रीतम का, शब्द रचना सईद कादरी की, आवाज के की और फरमाइश आप सभी मित्रों की। चंडीगढ़ सिटी से हमारे मित्र हैं सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला और विशाल नहावकर। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायडे, आशीष मुरहेकर। ग्राम पोस्ट गौना कुसमार, थाना सौजना, तहसील मेहरौनी, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश से कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार, द्रौपदी रामदेवी, ब्रजेश कुमारी, अखिलेश, लखनलाल, चाहना, आकाश, रानी परी, सुरभि, पायल और इनके मम्मी पापा। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकैस्ट्रो। दंतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नौखेलाल वर्मा। ग्राम पजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया। ग्राम पंचायत उपरहका श्रीराम पुरडेरा, सरीला राठ, मुस्करा हमीरपुर से राजू यादव। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रितिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक। मोरटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरीत रमेश साहू। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म है अग्निपथ।

अग्निपथ फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर की आवाज में। गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार अजय अतुल। इस गीत की फरमाइश हमें मिली थी हमारे आकाशवाणी छतरपुर के फेसबुक पेज पर। फरमाइश भेजने वाले मित्र हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इसरत अकरम, वसीम, रुबीना, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। करेल बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, निकहत परवीन। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव। पद्मा टॉकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुर

भी अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति जायसवाल। गमहरिया जमशेदपुर से रोहन और आर्य जायसवाल। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया। सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से गजानन एले, नवदीप, विश्वदीप और नीलेश एले। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक और आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। ग्राम बमना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। लीजिए सुनिए अब कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म है गोरी तेरे प्यार में। संगीत निर्देशन विशाल और शेखर का, शब्द रचना अन्विता दत्त की, आवाज कमाल खान, नीति मोहन। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है, मिलीजुली फरमाइश है इस ईमेल आईडी पर और हमारे आकाशवाणी छतरपुर के फेसबुक पेज पर। अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी वर्मा। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका और अनिष्का, तन्मय गजभिये। हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा, हनुमान, उत्तम जमदाड़े। ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का। तुलसी चौरा बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, काफिर भाई, सविता माखीजा, स्वाति, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा छुटकी, शरद डोडवानी एवं पूरा माखीजा कुटुंब। चर डोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, जय किशन, श्रीमती कुमारी साहू, इंद्राणी माया साहू। बठिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंशु, मोहित और तानिया नारंग। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, राजिया बेगम, मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद। तो लीजिए सुनिए आप सबकी फरमाइश पर ये गीत।

गोरी तेरे प्यार में, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत की फरमाइश हमें मिली है हमारे आकाशवाणी छतरपुर के फेसबुक पेज पर। फरमाइश करता है धाणी नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे। पुरखोलूस आदाब, दादा बाबू रोड, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइना नवाज, हसन, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार। नागरकोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू। पांडर कवड़ा से अनिल बुराड़े, उषा।

अनुश्री, धनश्री, बलहार शाह से सूरज लोढ़े, प्राची लोढ़े और एकलव्य लोढ़े। पाहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत, लखनलाल, सावित्री बाई देवांगन। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हेमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और श्राव्या। शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे। मजनू का टिलका से कमल बालू जामथू, बालूजा सागर। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद कुमार गौरव मंदूरकर। सिमगा सीजी रमेश कुमार यादव, माया, रिंकू, सनी और कोमल यादव। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत, मयंक भाटिया। गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी से मनोज नामदेव, मयंक, खुशबू, ममता, रेखा और समस्त नामदेव परिवार। मुकाम पोस्ट फुल चिंचौली तालुका पंढरपुर जिला सोलापुर से जाकिर मुलाणी, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नशीर, बानूबी, बादशाह और पूरा मुलाणी परिवार। कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं ये अगला गीत, फिल्म है ये जो मोहब्बत है, संगीत अनु मलिक का, गीतकार फैज अनवर कुरैशी, आवाज रूप कुमार राठौर की। और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है, मिली जुली फरमाइश है ईमेल पर, पत्रों की और हमारे आकाशवाणी छतरपुर के फेसबुक पेज पर। भेजने वाले हैं आकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन चरिये, संजीव डाबेराव। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। एकता कॉलोनी रोहतक से सीता कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला, इंदो पार्वती, हिमांशु गोदारा। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी बॉय हिमांश।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित होगा।

0: मीडियम वेव 188.3 93 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। हमारे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम किसी खास विषय पर बात करेंगे। वैसे वो विषय हम सभी के लिए बहुत ही खास है। पानी की कमी को हम कैसे रोक सकते हैं? आने वाली स्थिति, बारिश नहीं होने की स्थिति में या बारिश कम होने की स्थिति में पानी का बचाव हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है ये हम सभी जानते हैं। तो आइए आज हम इस विषय पर बात करेंगे और सुनेंगे सुमधुर गीत। तो कीजिए कॉल 2660902 पर और एसटीडी कोड आप जानते ही हैं 0755। हमें इंतजार है आपके फोन कॉल्स का। हेलो, नमस्ते जी, कौन बोल रही हैं?
2: जानकी गुप्ता बोल रहे हैं, ग्राम भगवंत नगर से।
1: कौन बोल रहे हैं?
2: जानकी गुप्ता।
1: जानकी गुप्ता बोल रही हैं जी, कहाँ से?
2: ग्राम भगवंत नगर।
1: अच्छा, और जानकी जी, भगवंत नगर ये कहाँ पड़ता है?
2: ये है टीकमगढ़ जिला में है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: तहसील पलेरा।
1: आपने शायद पहली बार कॉल किया है ना?
2: कॉल अभी 3 तारीख को की थी, कॉल आज 7 तारीख।
1: नहीं मतलब बहुत, मेरी तो शायद आपसे पहली बार बात हो रही है जानकी जी।
2: आप कौन बोल रही हैं?
1: मैं कविता रावत बोल रही हूँ।
2: हाँ, पहली बार हो
1: गया है ना। चलिए और सुनाइए, क्या हाल है आपके?
2: सब बढ़िया है मैम, खाना बना गए।
1: हाँ
2: हाँ, साफ कर रहे थे, फोन लगा रहे थे, लग गया।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। और जानकी जी, आपके यहाँ जो पानी है उसकी कोई कमी तो नहीं है? भरपूर मात्रा में मिलता है आपको पानी?
2: एक तो ये नहर विहर आती है सिंचाई के लिए।
1: अच्छा अच्छा।
2: हाँ, और जो बैसा कूड़ा उगा भी है यहाँ पर।
1: मतलब अच्छी तो व्यवस्था है जल की,
2: घर में बोर है।
1: चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपसे एक बात पूछनी है कि आप है ना पानी की बर्बादी करने से बच्चों को या रोकती हैं या बहने देती हैं काफी हद तक पानी?
2: अरे मैम, हमारे यहाँ जो हमारा घर है ना,
1: हाँ,
2: हमारे से बिल्कुल भी पानी बर्बाद नहीं करते हम लोग।
1: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि है ना कई जगह पर पानी की बहुत समस्या हो रही है और अभी हम देख रहे हैं कि जून आधा निकल चुका है लेकिन मानसून अभी पूरी तरह से हमारे यहाँ नहीं आया है।
2: हाँ मैम,
1: है ना।
2: तो हम जो हमारे यहाँ पानी है ना, और हमारे नल में थोड़ा कम पानी है, इसलिए हम और किसी के घर से पानी की वो करें व्यवस्था। तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल पानी बर्बाद हम करते ही नहीं, कभी नहीं करते। पहले नल से लिया तो नहीं करते, घर पानी आता तो नहीं करते।
1: बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि है ना यदि हमें भरपूर पानी मिल भी रहा है लेकिन हमें सब लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पानी की बर्बादी रोकना चाहिए और ये हम सभी कर
2: गांव में।
1: हाँ हाँ,

0: पानी जी के जाना पानी की या मात्रा है तो बहुत बड़ा बड़ा करते हम तो कई बार रोकते हैं भैया इतना पानी ना फैलाओ तुमने।
1: बिल्कुल सही बात है, जहां भी आप देखें कि कोई पानी की बर्बादी कर रहा है तो बेझिझक होकर उसको रोकिए। जी चलिए जानकी जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू, धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते दीदी। कौन आप बोल रहे हैं?
0: मैं कविता दीदी बोल रही हूँ।
1: अच्छा,
0: आप कौन
1: राजेश
0: बोल रहे
1: को
0: हैं?
1: मैं सपना से रमेश कोटवानी, सपना
0: कौन बोल रहे हैं?
1: से रमेश कोटवानी।
0: रमेश कोटवानी।
1: हाँ
0: कहाँ से? जी रमेश कोटवानी जी बोलिए।
1: हाँ तो आज कौन से हेलो वो वाला है चल रहा?
0: आज हमारा प्रोग्राम है बात आपकी गीत हमारे।
1: जी, तो समाधि फिल्म का गाना सुनना है।
0: बिल्कुल हम आपको गीत तो सुनवाएंगे लेकिन आज के प्रोग्राम में हमारी पसंद के गीत होते हैं, बातें आपकी होती हैं। और आज की जो बात हमने रखी है उसका विषय है कि जल को कैसे संरक्षित करें, कैसे बचाव करें, हम पानी की बर्बादी को कैसे रोकें।
1: जल को तो देखिए दीदी, चाहे वो नाली हो चाहे नर्मदा हो, सबको रोक के चलना चाहिए। पानी तो हर चीज का काम आता है, चाहे गंदा भी हो, भी गमलों में काम आ जाएगा,
0: बिल्कुल सही बात है लेकिन
1: हर चीज
0: यही
1: में काम
0: बातें
1: आता है।
0: हम हर जन जन तक पहुंचानी है कि कैसे पानी की बर्बादी को रोकें और
1: नहीं
0: वेस्टेज
1: नहीं
0: पानी है उसका क्या उपयोग करें।
1: नहीं दीदी, ये तो जरूरी है। नहीं, ये तो आदमी को शुरू से करना चाहिए, नहीं तो ये तो आगे चल के भविष्य में बहुत दिक्कत होगी।
0: बिल्कुल सही बात है। और ये जो आने वाली दिक्कतों को कि हमारे बच्चों को वो दिक्कतें ना हो, यही सोचकर यदि हम सभी थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो
1: नहीं,
0: पानी को
1: जरूरी
0: बचा सकते हैं,
1: जरूरी है दीदी, ये तो बहुत
0: है ना?
1: जरूरी है।
0: क्योंकि हम
1: हाँ
0: देख रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से कितनी मानसून कितना रूठा हुआ है हम सभी से।
1: अभी देखिए, इतनी गर्मी इसलिए भी पड़ती है कि
0: गर्मी,
1: जमीन
0: हाँ हर साल गर्मी बढ़ती ही जा रही है, टेम्परेचर।
1: सीमेंटिंग रोड बन रही,
0: बिल्कुल सही बात है।
1: वो पानी अब बहे तो जाए कहाँ से,
0: बिल्कुल
1: सीमेंट
0: बिल्कुल
1: जब इधर उधर चला जाता है।
0: बिल्कुल। तो जब भी बारिश
1: तो
0: भी हो
1: वही
0: तो उसके लिए
1: मशीन,
0: भी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कुछ
1: हाँ
0: गड्ढे हमारे जहाँ खेत वेत थे वहां करके रखें कि वो
1: हाँ
0: जमीन के अंदर पानी बैठ सके, है
1: औद्योगिक
0: ना?
1: क्षेत्र देखिए, इतने खुले हैं मशीनों पूरी 24 घंटा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए रमेश जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। कल 11 बजे अपना प्रोग्राम सुनिएगा और अभी के लिए आपसे इतनी ही बातचीत।

0: हेलो
1: हेलो, आकाशवाणी।
0: जी, आकाशवाणी मध्य प्रदेश
1: आप अच्छे हैं? आप?
0: जी, हम बहुत अच्छे हैं। आप अपना शुभ नाम बताइए।
1: मेरा नाम सागर सिंह कुशवाहा है।
0: सागर सिंह कुशवाहा, कहाँ
1: हाँ जी,
0: से?
1: बसई नवाब धौलपुर।
0: जबलपुर,
1: बसई नवाब धौलपुर।
0: धौलपुर
1: हाँ जी,
0: जी। और कब कॉल किया था आपने? आज तो हमारी शायद आपसे पहली बार बात हो रही है।
1: हाँ जी।
0: इसके पहले कब कॉल किया आपने आकाशवाणी में?
1: फोन लगता है नहीं है तुम्हारा?
0: लेकिन आज लग गया ना।
1: आज लग गया, बहुत खुशी हुई है। मैं
0: चलिए सागर जी, क्या करते हैं आप?
1: राजमिस्त्री हूँ।
0: अच्छा। और अब हम जिस विषय पे आज बात कर रहे हैं, वो बात करने में आपको तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप तो सागर हैं और हम बात कर रहे हैं जल की।
1: आओ बोलो, बताइए।
0: तो बताइए, जल को कैसे बचाया जाए, पानी की बर्बादी कैसे रोकी जाए?
1: एक तो ऐसा है, पानी खर्च कम करो। उसकी जहां तक लगे एक बाल्टी फैला ले, जहां आधी बाल्टी कोशिश करो पानी फैलाने की।
0: बिल्कुल सही बात है। मान लो अपने यहाँ खूब नल आता है, खूब पानी आता है, उसके बावजूद हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि बाकी लोगों के पास उतना नहीं पहुंच रहा है।
1: फालतू नल को मन चलाओ, पानी की जरूरत है उतना ही खर्च करो।
0: बिल्कुल सही बात है। यदि हम अपनी गाड़ियों को धोते हैं तो डायरेक्ट पाइप से ना धो के बाल्टी से मग्गे का इस्तेमाल करें तो पानी की कम बर्बादी होगी। और जो
1: होगी साहब,
0: हमारे दाल चावल धोने का पानी है, यदि वो गमलों में डाला जाए तो उससे भी हमारी पानी की काफी बचत होगी। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, यदि हम सभी उसका ध्यान रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी को पानी की दिक्कत नहीं होगी।
1: जैसे पहले कुएं पे पानी निकालते,
0: जी
1: एक बाल्टी के काम निकाल लेते, अब हमारा तो उसको पैप

0: चालू कर देंगे, चल रहा है काफी।
1: वही बहुत जगह ऐसा देखा है कि पानी की बर्बादी काफी होती है, तो हम तो यही चाहते हैं अपनी सभी श्रोताओं के माध्यम से सब लोगों तक यही जागरूकता फैले कि पानी की बर्बादी को रोका जाए,
0: रोका जाए,
1: है ना। चलिए सागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। कुछ और कहना चाहते हैं?
0: गाना सुनना है।
1: गाना तो आप बिल्कुल सुनेंगे, हम अपनी पसंद का गाना सुनवाएंगे और कल 11 बजे से आप अपना कार्यक्रम सुन सकते हैं, हमारी बीच हुई बातचीत भी आप सुन सकेंगे, ठीक है।
0: ठीक है जी,
1: चलिए धन्यवाद।

0: बोल रहे हैं?
1: दीदी नमस्ते। हम
0: नमस्ते जी।
1: भागचंद साहू जी, राजेंद्र नगर, गंज बासोदा, जिला विदिशा।
0: भारचंद साहू,
1: बिल्कुल दीदी, आपके नियमित श्रोता।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और
1: और
0: क्या
1: सारे
0: हाल है आपके?
1: कार्यक्रम है बहुत बढ़िया है दीदी, आप
0: हम भी
1: कैसी
0: बहुत अच्छे हैं। और
1: हैं?
0: बारिश
1: बिल्कुल।
0: वारिश तो अभी गायब सी है।
1: हाँ गायब तो है फिलहाल में, कल तो पानी गिरा है गंज वासुदेव में। हाँ
0: हाँ, यहाँ भोपाल में भी गिरा था, लेकिन बहुत कम। जो कहते हैं ना कि मानसून आ गया है, वो अभी ऐसे हालात दिख नहीं रहे।
1: नहीं, वो अभी 5% दिख रहा था माहौल,
0: वही।
1: ऐसा नहीं दिख रहा था।
0: तो आज हमारा विषय यही है कि जल की
1: हाँ
0: बर्बादी हम कैसे रोकें, क्योंकि डे बाय डे जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं, वक्त बीतता जा रहा है, पानी
1: बिल्कुल
0: की
1: बिल्कुल
0: कमी होती जा रही
1: बिल्कुल दीदी, बहुत बहुत
0: है
1: अच्छा
0: ना?
1: अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल
0: तो बताइए ना, आप कैसे पानी की बर्बादी को रोकते हैं?
1: दीदी, पानी तो ऐसा है, देखो बेफजूल का पानी बिल्कुल नहीं बहाना चाहिए। है क्या है, जैसे पानी आपका है पर्याप्त, आपके पास है
0: जी
1: तो या गड्ढा मड्ढा वगैरह बना लो या कुछ बना लो, उसको रोक के रखे पानी के लिए,
0: बिल्कुल
1: कि
0: सही कह रहे
1: अपने
0: हैं।
1: लिए आगे के चल के अपने लिए काम में आए वो पानी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बिल्कुल रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना पानी बगैर कुछ नहीं हो सकता।
0: और आज हमें पानी है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए ये दिक्कतें और बढ़ जाएंगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, पेड़ पौधे कट चुके
0: वही।
1: हैं, तो उनकी वजह से पानी की मात्रा कम हो रही है, पानी गिर नहीं रहा सही तरीके से।
0: बिल्कुल।
1: बिल्कुल पानी बिल्कुल भी नहीं गिर रहा सही तरीके से, हम
0: तो
1: व्यर्थ कर
0: इसीलिए
1: चुके हैं।
0: हम सभी का कर्तव्य बन जाता है कि कहीं भी यदि पानी की बर्बादी होते देखें तो उसे
1: बिल्कुल
0: रोकें और स्वयं भी बहुत कम से कम मात्रा में पानी को खर्च करें।
1: बिल्कुल। और दीदी एक बात और कहना चाहते हैं हम रेडियो
0: बताइए।
1: के माध्यम से,
0: हाँ
1: कि
0: जी।
1: आजकल जो स्कूल के खुलने वाले हैं बच्चों के, ज्यादातर
0: हाँ
1: हमें देखने में एक आया है कि आजकल बच्चे टच मोबाइल में ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं।
0: वो तो सही बात है।
1: क्या है ये, गलत है? ये माता पिता का फर्ज है कि उन्हें देखें क्या देख रहे हैं, पढ़ाई
0: बिल्कुल
1: कर रहे
0: सही
1: हैं कि
0: बात
1: नहीं
0: है।
1: कर रहे हैं जी, बच्चे कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, उनकी लाजें देखते आए,
0: बिल्कुल
1: भाई
0: बिल्कुल
1: लापरवाही बिल्कुल ना बरतें बच्चों के साथ।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और आज हम जो अपने विषय से अब ना हटें, तो पानी की बर्बादी को रोकने का पूरा प्रयास आप सब भी करें।
1: और दीदी हम ये कह रहे हैं कि हमारे पत्र शामिल नहीं हो रहे हैं आजकल
0: अभी
1: आकाशवाणी
0: आजकल
1: भोपाल में।
0: अभी होगा, आपका पत्र भी शामिल होगा। बहुत सारे लोग रहते हैं तो सबका नंबर आते आते थोड़ा टाइम लगता है।
1: हाँ
0: चलिए,
1: बहुत
0: कॉल करने के
1: ज्यादा,
0: लिए धन्यवाद। हमारे अगले श्रोता लाइन में लगे हुए हैं। ठीक
1: बिल्कुल
0: है
1: दीदी
0: भारचंद्र जी, थैंक
1: बिल्कुल।
0: थैंक यू,
1: मैं
0: थैंक यू
1: दीदी
0: वेरी मच।
1: नमस्ते नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो हेलो,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं धार जिले के से रवि का बोल रहा हूँ,
0: रवि
1: रवि वर्मा।
0: रवि वर्मा, धार जिले से। और रवि जी, क्या करते हैं आप?
1: मैडम मैं किसान भी हूँ और हमारे पास में इंडस्ट्रियल एरिया है पिथमपुर,
0: हाँ,
1: वहाँ पर एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता हूँ जहाँ पर एक्सकावेटर और जेसीबी बनती है।
0: अच्छा हाँ, मैं जानती हूँ पीथमपुर को तो।
1: जी।
0: चलिए, क्या उम्र क्या है आपकी?
1: मैडम मेरी उम्र 40 वर्ष है और मैं बहुत पुराना श्रोता हूँ, रेडियो का बहुत दीवाना हूँ
0: अरे वाह,
1: और मेरा
0: अपनी
1: पहली बार
0: दीवानगी
1: फोन लगा
0: बिल्कुल
1: है आपके
0: बरकरार
1: रेडियो पे।
0: रखिए। जी,
1: और मैं कहना चाहता हूँ कि जो रेडियो सुनता है ना,
0: हाँ
1: उसकी कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है। जो सुनता है ना, तो
0: हाँ हाँ
1: उसकी कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा होती है,
0: बिल्कुल
1: ये मेरा
0: सही कह
1: मानना
0: रहे हैं,
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रेडियो से हमें

0: तमाम तरह की ज्ञान प्राप्त होता है।
1: जी मैडम
0: आज हम जो बात कर रहे हैं जैसे जल की बर्बादी को रोके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमेशा मतलब हर बार है ना पानी मानसून हमसे थोड़ा थोड़ा रूठता जा रहा है, क्योंकि
1: जी
0: पेड़
1: मैडम
0: कटते जा रहे हैं,
1: हाँ मैं
0: है
1: भोपाल
0: ना।
1: में आता हूँ ना, तो जब झील थोड़ी सी खाली देखता हूँ ना तो मुझे भी लगता
0: सच
1: है कि
0: बात है। तो
1: जी
0: हमें
1: मैडम
0: हमारी आने वाली पीढ़ी को उनके भविष्य के
1: हाँ
0: लिए पानी को संरक्षित रखने के लिए सभी को
1: हम
0: थोड़े थोड़े
1: हाँ
0: प्रयास
1: हमारी
0: करने
1: आने
0: होंगे।
1: वाली पीढ़ी को बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं देना चाहते, उनको पर्यावरण अच्छा दे दें, उनको अच्छे पेड़ पौधे दे दें,
0: बिल्कुल,
1: पानी दे दें, तो यही अपने लिए बहुत
0: यही
1: अच्छा है।
0: विरासत है उनके लिए,
1: यही विरासत है
0: है
1: उनकी
0: ना।
1: कि
0: तो बस इसी
1: यार
0: का
1: हम आगे
0: प्रयास
1: की राह
0: करना
1: में
0: है।
1: अपनी प्रकृति को अपने हाथ से खोते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे कैसे प्रयास आप करते हैं रवि जी, थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस बात पर।
1: मैडम मैं तो अपने मेरे दो बच्चे हैं
0: हाँ,
1: उनको हमेशा यही शिक्षा देता हूँ कि अपने को कम से कम गाड़ी चलाना है, कम से कम अपने को जो बिजली की भी बचत करना है घर में, और जहाँ तक हो सके हम आसपास तो साइकिल का यूज करते हैं, हमारे घर में दो साइकिल भी है और एक इलेक्ट्रिक बाइक भी है, तो हम कोशिश हमारे स्तर से कर रहे हैं मैडम।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अपने स्तर पे हर व्यक्ति यदि कोशिश करता रहेगा तो हम सभी अपने मकसद में सफल होंगे,
1: और
0: ठीक है ना
1: एक और
0: रवि
1: बात
0: जी।
1: कहता हूँ कि मैं बताऊँ, भारत को स्वच्छ देखना चाहता हूँ मैडम,
0: बिल्कुल सही कह
1: और
0: रहे हैं,
1: जहाँ पे भी मैं अगर ये कचरा और ये पॉलिथीन उड़ते हुए देखता हूँ ना, तो मुझे थोड़ा कुछ अंदर से फील होता है कि अगर मैं कुछ, मेरे पास समय नहीं है अभी कि मैं कुछ करूँ इसमें ज्यादा सोशल वर्क, तो पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अगर आगे होके अगर मैं फ्री हुआ, अगर मेरे पास पर्याप्त पैसे हो गए, बच्चे कमाने लग गए, तो मैं इसी काम में लगने वाला हूँ मैडम।
0: बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए रवि जी।
1: जी जी मैडम
0: जी,
1: मुझे भी बहुत खुशी हो रही है,
0: मुझे भी बहुत
1: और मैं
0: खुशी
1: मैडम
0: हुई।
1: मेरे बालक का कल बर्थडे, उसका नाम लेना चाहता हूँ
0: बिल्कुल
1: रोहतक
0: लीजिए
1: वर्मा, और मेरी मिसेज का नाम है नीतू वर्मा,
0: जी।
1: और बड़े वाले बालक जो कंप्यूटर साइंस में बेंगलोर में पढ़ रहा है उसका नाम है राज वर्मा,
0: चलिए, सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे
1: और
0: आकाशवाणी परिवार।
1: मेरी माता जी का नाम मैडम शकुंतला वर्मा, और बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी,
1: और मेरा
0: धन्यवाद।
1: गीत है मैडम दिल
0: गीत हमारी
1: दीवाने का
0: पसंद का
1: डोला,
0: होगा आज के कार्यक्रम में।
1: दिल दीवाने का डोला दिल से
0: चलिए,
1: लगती है
0: ठीक
1: प्रेम रूप
0: ठीक
1: से, धन्यवाद
0: ओके, धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: हेलो,
2: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
2: हाँ नमस्ते मैम,
0: नमस्ते, कहाँ
2: मैं हीरू जी बोल रही, बाग से, बाग
0: से?
2: बाग जिला धार,
0: धार जिले से कौन बोल रही हैं?
2: मैं हीरू बोल रही, हीरू पड़ियार।
0: अच्छा, हीरू।
2: हाँ,
0: कैसी हैं?
2: हम तो अच्छे, आप कैसे हो,
0: हम भी अच्छे हैं, आप बताइए
2: बढ़िया
0: आपके।
2: होती आप, बढ़िया होती।
0: बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हीरू जी, आज हम ये बात करेंगे कि है ना पानी की बर्बादी को कैसे रोक सकते हैं हम, आप कैसे रोकती हैं?
2: पानी की बर्बादी को, ये तो मेरे को इतना नहीं आता है मैम।
0: हाँ?
2: हम तो बर्तन मानते, तो कई साबुन रसोड़े से मान लेते, पानी की बचत करते हैं, ज्यादा पानी ढोलते नहीं है।
0: अच्छा,
2: हाँ, पानी ढोलना पाप है, अपन को पानी पीने को मिल रहा है, इतना ही बोलते मैम।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं।
2: हाँ,
0: चलिए,
2: अपन पानी ढोल ढोल करेंगे फिर अपन क्या, कैसे जिएंगे। हाँ,
0: बिल्कुल सही बात है।
2: पानी से तो जी रहे अपन, नहीं तो खाई से जी रहे अपन,
0: जल ही जीवन है।
2: जब भी तो जीवन है। वो मछली जैसे बाहर निकल जा, अंदर रहती समुद्र में तो जीती, बाहर निकल जाती तो मर जाती है वो।
0: बिल्कुल सही बात है, वही हमारा जीवन है, बिन पानी सब सून, यानी पानी के
2: हाँ,
0: बिना हम सबका जीवन संभव नहीं है। तो
2: रोटी चटनी मिले ठीक ही सही, पर अपन को पानी होना जरूरी है, पानी
0: बहुत
2: से
0: जरूरी
2: जीवन
0: है।
2: है
0: तो
2: अपन
0: बस
2: को।
0: ये बात हम सभी को समझना चाहिए कि यदि आज हमारे पास भरपूर पानी है तो कल के लिए हमें उसे बचा के रखना बेहद जरूरी है।
2: मैम, लोग समझते थोड़ी, ढोल ढोल करते, इनके तो क्या समझ,
0: वही,
2: क्या असर,
0: अब हो
2: ढोल ढोल
0: सकता
2: से
0: है कि
2: पानी।
0: अपन जो बात कर रहे हैं वो सबके कानों तक पहुंचे, और जो लोग बर्बादी करते होंगे वो शायद उन्हें थोड़ी बहुत समझ आ जाए। बस यही आकाशवाणी का उद्देश्य होता है कि लोगों में जागरूकता फैलाना।
2: सही
0: ठीक
2: बात है
0: है
2: मैम, अपन
0: जी,
2: जितना बचत करेंगे, जितना अच्छा रहेगा, जीवेंगे तो अपन क्या,
0: बिल्कुल।
2: यही सही
0: चलिए
2: बात
0: हीरू
2: है
0: जी,
2: कि
0: बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दूसरे कॉलर्स भी लाइन में हैं तो हम उनसे बात करेंगे। आपसे आज के लिए इतनी ही बात, ठीक है?
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: खाते गांव से गोविंद जलोदिया बोल रहा था।
0: खाते गांव से
1: हाँ,
0: गोविंद जी,
1: गोविंद जलोदिया।
0: गोविंद जलोदिया, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है, ठंडी पड़ गई थोड़ी, जब पानी वानी गिर गया तो।
0: बहुत ज्यादा तो नहीं गिर रहा, लेकिन हाँ, हल्का सा जैसे ही गिरता है तो थोड़े से मौसम में ठंडक आ जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस उमस हो जाती है।
1: हाँ, हो जाती है पर वो।
0: आज गोविंद जी हम जो बात कर रहे हैं ना, आज हेलो
1: हाँ,
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: खाते गांव से बोल रहा था, गोविंद
0: हाँ,
1: जलोदिया।
0: आपसे बातचीत अधूरी रह गई थी, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। तो गोविंद जी, आज जो हमारा विषय है, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम का, कि
1: हाँ, अच्छा, पानी
0: पानी की बर्बादी को कैसे रोका जाए।
1: का बर्बादी का कैसा रोका जाए?
0: बताइए ना इस विषय पर, आप
1: तो
0: कैसे
1: पानी
0: पानी
1: का क्या
0: का।
1: है कि पानी तो बहुत ही मतलब अनमोल है चीज है। पानी तो मतलब क्या है, जल स्तर कम होता ही जा रहा है। पानी कम डोलो, बहुत सारे नल की टोटियां पे लगी नगर पालिका छोड़ देती है ऐसी पटक पटक, और लोग पटक रहे, चलते रहता है काम उसका। क्या अपना घर भी यही हाल है, नल चल रहा है तो चल रहा है, बंद हो रहा है तो बंद हो रहा है, कोई देख रेख करते नहीं है।
0: तो ये सबको
1: और
0: ध्यान
1: पानी
0: देने
1: है
0: की
1: थोड़ा
0: जरूरत है।
1: कंट्रोल, फव्वारे से नहाया करो तो और कम पानी का उपयोग होता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन है ना,
1: हाँ,
0: पानी को, बर्बादी को तो रोकना है ना हम सभी को,
1: पानी
0: है ना?
1: को रोकना है, कम उपयोग करो जी। बहुत सारे लोग क्या है कि मतलब बहुत ज्यादा ही उपयोग करते हैं उसका। अक्सर हमारे यहाँ खाते गांव में तो क्या है कि रोड सुबह जब नहलाते हैं, जब यहाँ से वहां तक रोड को नहलाते थे, जब लोगों को मिल नहीं रहा और ये फेंक रहे हैं।
0: अरे, ये बहुत गलत बात है। और जहां कहीं भी
1: बहुत
0: हम ऐसी पानी की बर्बादी होते देखें ना, तो हम उन्हें बिल्कुल बेतकल्लुफी से रोकें, ये हम सभी का फर्ज है।
1: क्योंकि वो हमारे यहाँ क्या है कि पानी की वो नहीं है, नर्मदा जी बांस में ही है तो
0: हाँ,
1: उससे सप्लाई होता रहता है, तो पानी का कोई वो नहीं है।
0: हाँ, तो आप रोकिए, आप बोलिए उनको कि यदि आज हम पानी की बर्बादी करेंगे तो कल पानी की कमी होगी, है ना? ठीक है गोविंद जी, सबके छोटे छोटे प्रयास ना बहुत बड़े संकट से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। ठीक है, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद,
0: नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: हेलो, हेलो, हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी,
1: हेलो।
0: नमस्ते।
1: हाँ जी नमस्ते।
0: हाँ नमस्ते, कौन
1: जी
0: बोल रही है?
1: मैं कामिनी दसूंदी बोल रही हूँ, टिकरी से, बड़वानी जिले के टिकरी गांव से।
0: अच्छा, बड़वानी से। कामनी जी, कैसी हैं आप?
1: बड़वानी जिले के टिकरी गांव से आओ।
0: अच्छा, कैसी हैं आप?
1: बढ़िया बढ़िया
0: और क्या काम करती हैं?
1: सर। मैं मैडम, मैं हाउस वाइफ हूँ।
0: अच्छा, हाउस वाइफ हैं। तो कामनी जी, आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि पानी की बर्बादी को आप कैसे रोकती हैं, या पानी खूब जब कपड़े धोती हैं, बर्तन
1: नहीं,
0: मांजती हैं।
1: पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए। पानी अमूल्य है, अपने लिए जल ही जीवन है।
0: ये हम सब समझते हैं, लेकिन है ना, रोकते नहीं है।
1: रोकते नहीं है, बस वो जैसे नल बह रहा है तो उसको बंद नहीं करेंगे। बर्तन बर्तन धोएंगे तो नल में धोएंगे, ऐसे नहीं करना। बर्तन में लेके पानी में बर्तन धो तो उससे पानी की बचत
0: बिल्कुल,
1: होगी।
0: बहुत छोटी छोटी बातें हैं। यदि आप टब में पानी लेके फिर बर्तनों को
1: मैं
0: धोंगी
1: बर्तनों
0: तो
1: को
0: पानी की
1: धोने
0: बर्बादी रुकेगी। कार अगर आप पाइप से ना धोएं, बाल्टी से धोएं, तो उससे पानी की बर्बादी रुकेगी,
1: उससे पानी की बर्बादी
0: है ना।
1: रुकेगी।
0: बहुत सारी बातें हैं। हमारी
1: बहुत सारी
0: सब्जी,
1: बातें हैं।
0: दाल, चावल, ये सब धोने का पानी यदि हम पेड़ों में
1: और क्या
0: डालेंगे
1: करना
0: तो
1: है,
0: उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और पानी की बर्बादी बचेगी।
1: पानी की बर्बादी भी नहीं होगी।
0: बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम इन सबका ध्यान रखें तो हम

0: आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं।
1: दीदी, पहली बार मेरा कॉल लगा है। मैं बहुत दिन से प्रयास कर रही थी मगर नहीं लगा, लेकिन आज प्रयास सफल हो गया।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कामनी जी, ये प्रयास तब और सफल होगा यदि आप अपने आसपास के लोगों को भी पानी बर्बाद करने से रोक सकें,
1: जी
0: है ना। कहीं भी आप किसी को अगर ऐसा कुछ करते देखें तो उसे बिल्कुल जाकर रोकिए कि ये गलत है, उसे सही तरीका बताइए। या कहीं नल खुला हुआ देखें तो उसे तुरंत बंद कर दीजिए बिना किसी झिझक के, है ना।
1: पानी का
0: तब
1: भी, और मैं दीदी में तो लाइट का भी हमेशा घर में कहती रहती हूँ, वहां का लाइट जल रहा है, फालतू जल रहा है,
0: बिल्कुल
1: वो
0: हर
1: तो
0: चीज की अगर बचत हम करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम अच्छा भविष्य दे सकेंगे, अच्छी विरासत देकर जाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, आज के कार्यक्रम में आपसे हमने जो बातचीत की वो आप कल प्रोग्राम में सुन सकेंगी 11 बजे से, और हमें बहुत खुशी हुई आपसे बातचीत करके। धन्यवाद कामनी जी।
1: थैंक यू,
0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 5 दिवसीय प्रदेश प्रवास के पहले दिन आज बैतूल में ब्रह्मकुमारी संस्थान द्वारा आयोजित एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल सोसाइटी बाय स्पिरिचुअल अवेकनिंग कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। इसके बाद वे ओंकारेश्वर के लिए रवाना होंगी। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को और प्रगाढ़ करने के प्रयासों के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पेरिस में प्रमुख फ्रांसीसी व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। उन्होंने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जा रही है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पुलिस में उपनिरीक्षक के 10 और आरक्षक के 50 पदों पर सीधी नियुक्ति का अवसर मिलेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल उज्जैन के महिंदपुर में विकास कार्यों के लोकार्पण समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डोंगला से गुजरने वाला नया फोरलेन महिंदपुर शहर के विकास को गति देगा। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से इंदौर, उज्जैन

0: भोपाल और ग्वालियर संभाग के अनेक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। और भारत अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं, वो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। पहला गीत आप सुनेंगे हेमलता के स्वर में, फिल्म का नाम अखियों के झरोखों से। गीत लिखा रविंद्र जैन ने, संगीतकार रविंद्र जैन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है कोटवा बलिया से। श्रोता है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। अगले श्रोता नेवादा गाजीपुर से हैं, प्रतीक, रोशनी और प्रांजल राय। अगले श्रोता अमरावती महाराष्ट्र से हैं, कमरुल्ला, नसीम, आयशा, हदिया, अस्मा, सालिया, शोएब खान, मुश्तबा खान, राउफ, शाहिद। अगले श्रोता अकोला से हैं, रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म मुगले आजम से। इस गीत को सुरों से सजाया लता मंगेशकर और साथियों ने। गीतकार हैं शकील बदायूं, संगीतकार नौशाद। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है घंटाघर चौक खंडवा से। श्रोता हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। अगले श्रोता नांदेड़ से हैं गौतम नगर, प्रभाकर जौंधले और आरती जौंधले। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अमर अकबर एंथनी। इस फिल्म से अगला गीत आप सुनेंगे। इस गीत को सुरों से सजाया किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है कनेरा मोहल्ला पटियाला से। श्रोता है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। अगली श्रोता गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं। हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

आशा भोसले और किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म सीता और गीता से। गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीतकार आर डी बर्मन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, श्रोता है ताज अंसारी, गुलाम साबिर और मिराज जहां। अगले श्रोता धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं, रामचंद माखीजा, शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार, श्रीमती सविता, स्वाति और पूरा माखीजा परिवार। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत

आकाशवाणी एट 90 आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जंग लगी तलवार की 13वीं कड़ी।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य

अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना अपनी बेटी पार्वती के भाग जाने से दुखी भृगु साई नदी में कूदकर आत्महत्या करना चाहता है। यशवंत उसे बचाता है। भृगु हड़ताल को लेकर यूनियन नेताओं पर जमकर बरसता है। रामू बामू कंपनी के पुराने टायर बेचकर बोतल लेकर आते हैं। खाने के लिए मछली का इंतजाम करने के लिए दोनों मिलकर कंपनी के भंडार से जिलेटिन चुराकर साई नदी में विस्फोट करते हैं। विस्फोट में लिचू का लड़का जगन्नाथ मारा जाता है। लेबर इंस्पेक्टर का सहायक राधेश्याम ठाकुर साहब से मिलता है और कमीशन लेकर कंपनी के मजदूरों की हड़ताल से निजात दिलाने का सौदा तय करता है। नारायणी को अस्पताल में सफाई करने का काम मिल जाता है। पुलिस विस्फोट करने के आरोप में रामू बामू को गिरफ्तार कर लेती है और वर्कसाइट पर विस्फोटक का भंडारण करने के कारण कंपनी पर 10,000 रुपए का जुर्माना करती है। मुंशीगंज के कसाईयों द्वारा फेंके हुए सड़े कच्चे मांस को खाकर दलित बस्ती के कई बच्चे मर जाते हैं और बहुत से बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होते हैं। अब आगे

0: नारायणी, अरे सफाई हो गई क्या?
1: जी डॉक्टर साहब।
0: गुड। देखो नारायणी, अभी तुम्हें एक काम और करना है।
1: जी कहिए।
0: देखो वो सामने मरीजों के खून और मवाद से सनी पट्टियां पड़ी हैं, इन्हें साई नदी के किनारे गड्ढा खोदकर उसमें दबा देना, समझ गई?
1: जी।
0: ये रोज का काम होगा, समझ गई तुम?
1: जी जी समझ गई डॉक्टर साहब।
0: शाबाश।

0: अरे नारायणी, तुम ये गड्ढा क्यों खोद रही हो?
1: वो यशवंत बाबू, खून और मवाद भरी पट्टियां दबानी है इसमें।
0: कोई बात नहीं, ये तुम फावड़ा मुझे दे दो, गड्ढा मैं खोद देता।
1: नहीं नहीं, आप यूनियन के नेता हैं, साफ कपड़े पहने हुए हैं।
0: अरे तो क्या हुआ, अब लाओ मुझे दो, मैं खोदता हूँ। अरे लाओ दो। नारायणी, गड्ढा तो खोद गया, ला कपड़े मुझे दे दे।
1: ये लीजिए।
0: अच्छा, बर्खास्त हो जाने के बाद तुम क्या करोगी नारायणी? सच सच बता नारायणी, क्या उस दिन तू ठाकुर साहब के घर अपनी इच्छा से पाप का काम करने गई थी? बोल, जवाब दे।
1: हे भगवान, क्या जवाब दूं मैं इसे? क्या ये मेरी बात का विश्वास करेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसे मेरी बात का यकीन होगा। पर सुमति काकी के अलावा और कौन है इस दुनिया में जो दिल खोल कर दिखाने पर मेरी सच्चाई पर विश्वास करे? मैं जानती हूं, और ऐसा कोई भी नहीं है।
0: क्या तो, सोचने लगी नारायणी?
1: हाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं बाबू।
0: नारायणी, क्या मैं तेरी कोई सहायता कर सकता हूँ?
1: बर्खास्त होने पर हम लोग एक साथ चले जाएंगे। अगर अगर बाबू रास्ते में मेरा पति मर गया तो?
0: नारायणी, नहीं मरेगा तेरा पति, नहीं मरेगा। देखा नहीं लिचू लंगड़े का क्या हाल हुआ? बेटे के मरने के बाद से सारा दिन बेटे की चिता जलने वाली जगह पर ही पड़ा रहता है। भृगु की बेटी पेट की भूख मिटाने के लिए पैसेंजर ट्रेन में भाग गई। अरे कितने बच्चे जहरीला मांस खाकर मर गए। देख, अब धैर्य रखना रानी, मेरा दिल कहता है कि

0: जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।
1: यशवंत बाबू, मजदूरों की बातें छिप कर सुनी थी। सहायता की जरूरत मुझे नहीं, आपको है। हा? आपको और दूसरे यूनियन नेताओं को अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए।
0: ये तुम क्या कह रही हो नारायणी?
1: वो मजदूर तुम लोगों को जिंदा गाड़ देंगे, खून खराबा होगा, वो तुम लोगों के चीथड़े बना डालेंगे। मैं पूछती हूँ, सच सच बताना, क्या तुम लोगों ने सबके साथ विश्वासघात नहीं किया? क्या भूख से मरने वालों की हत्या तुम लोगों ने नहीं की?
0: इतनी कोशिशों के बावजूद इतने लोगों की भलाई हम नहीं कर पा रहे हैं नारायणी। फिर भी कम से कम एक आदमी के लिए कुछ करने की शक्ति हम में जरूर है। बिल में छिपे हुए सांप की तरह शरीर के किस हिस्से में वो शक्ति है, ये ना तो तुझे मालूम है और ना ही मुझे।
1: मैं फिर कहती हूँ यशवंत बाबू, हमें तो हालात के सामने मजबूर होकर मरना ही है, लेकिन लेकिन तुम लोगों को जिंदा रहना है, हड़ताल कराने के लिए जिंदा रहना है, मजदूरों को भूखा मारने के लिए जिंदा रहना है।
0: नारायणी सुन, नारायणी देख, मैं जानता हूं कि तुमने जीवन में बहुत कष्ट सहा है, मैं सब जानता हूं सब, लेकिन क्या तुम इस तरह टूट जाओगी? इतने दिनों से कष्ट सहते हुए हम लोगों ने अपनी हड्डियों को सीमेंट के खंभे जैसा मजबूत नहीं किया है। अरे गांधी बाबा ने कहा था कि अगर उन्हें फिर से जन्म लेना पड़े तो वो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि वो दलितों के घर में जन्म लें। तू रो क्या रही है नारायणी?
1: यशवंत बाबू, मैं क्या करूं? सरकारी अस्पताल के बरामदे में भी मेरे पति को रहने नहीं देते।
0: क्या?
1: हाँ, यहाँ की बैरक से सब जाने लगेंगे तो मैं इन्हें साथ लेकर चलूंगी। ऊपर से एक दूर पीता बच्चा भी है। हम मर जाएंगे। मैं ये बात अच्छी तरह से समझ गई हूँ, अच्छी तरह से समझ गई हूँ यशवंत बाबू, हम मर जाएंगे।
0: देखो नारायणी, अब खुद पर भरोसा रखो। भरोसा खो देने वाले और मरे हुए इंसान में कोई फर्क नहीं होता। खुद पर भरोसा रखो।

0: नारायणी नारायणी नारायणी इधर आ।
1: क्या है लिच्चू?
0: नारायणी मेरे लिए दो रोटी लाकर दे सकती है? देख देख मेरा पेट कैसे सूख है, नदी का पानी भी कड़वा लगने लगा है। नारायणी
1: लिच्चू चल मेरे साथ चल, तू यहाँ ऐसे बैठा रहेगा तो क्या तेरा मरा लड़का वापस आ जाएगा? चल, देख यहाँ बैठा बैठा तो तू वैसे ही मर जाएगा।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नारायण, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। मुझे तेरी रोटी नहीं चाहिए नारायण।
1: सिर्फ नहीं करते
0: तू चल यहाँ से।
1: सुन तो
0: मुझे कहीं नहीं जाना है। यहाँ से चल।
1: मेरी बात तो सुन।
0: मेरे
1: जगन्नाथ
0: जगन्नाथ मुझे भी अपने पास बुला ले।
1: हौसला रख
0: नहीं।

0: नारायणी
1: तुम तो वही हो ना जो यशवंत के साथ यूनियन में रहते हुए भी कंपनी के साहबों की गुलामी करते हो।
0: हाँ।

0: अब देखो, सब अपने अपने फायदे की सोचते हैं, तो मैं भी सोचता हूँ क्या गलत करता हूँ?
1: तुम्हें मुझसे क्या चाहिए?
0: ओहो नारायणी, मैंने तुझसे पहले भी कहा था, ठाकुर साहब बीमार हैं और यहाँ पर हड़ताल चल रही है,
1: तुम?
0: तो ठीक तरह से उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, और तू साहब के लिए नई तो है नहीं, है ना? देख नारायणी, मुझे साहब ने खुद तुझे ले जाने के लिए भेजा है।
1: पर मैं नहीं जाना चाहती।
0: अरे नारायणी, क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहती है?
1: क्या मतलब?
0: मतलब साफ है नारायणी, साहब ने धमकी दी है कि वो तुझे उस रात वाली घटना को लेकर झूठ मूठ बदनाम कर देंगे। हाँ। तो तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगी। हाँ। अब सोच ले क्या करना है तूने, चलना है या नहीं? अच्छा चल चल चल।

0: देख नारायणी, साहब थोड़ी देर में आएंगे, तब तक तू यहाँ आराम कर, है? मैं अभी आता हूँ, ठीक है? अभी आता हूँ मैं।
1: मैं किस जंजाल में फंस गई हूँ? लगता है आज कल में कयामत आने वाली है। खून की नदियां, साई में तूफान, इस तूफान में सब ध्वस्त हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा, कोई नहीं, ये ठाकुर साहब भी नहीं, ठाकुर साहब भी नहीं। कौन कौन हंस रहा है?
2: पहचाना नहीं नारायणी?
1: चौधरी साहब, आप?
2: यानी पहचान लिया? इतने साल बाद भी पहचान लिया? तुझसे इस तरह यहाँ मुलाकात होगी? नारायणी, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
1: मैंने भी नहीं सोचा था।
2: नारायणी, तू आज भी मुझसे प्यार करती है ना?
1: प्यार? और तुमसे? तुम्हारे लिए प्यार सिर्फ एक वासना है, शरीर की आग को ठंडा करने का जरिया भर है।
2: नारायणी, तुझे देखकर और तेरी दुर्दशा के बारे में सोचकर मुझे बहुत दुख हुआ। कुछ ये पैसे रख ले, तेरे काम आएंगे। नारायणी
1: साहब, इन पैसों के बदले में आपको क्या चाहिए?
2: कुछ नहीं, कुछ नहीं नारायणी, कुछ नहीं, बस तेरे रूप की गंगा में गोता लगाना चाहता हूँ नारायणी।
1: मैंने तो सुना था कि आपकी शादी हो गई थी।
2: हाँ हाँ, ठीक सुना था तूने नारायणी।
1: साहब, आपकी पत्नी गंगा को पूछती है?
2: गंगा को पूछती है मतलब?
1: हाँ, मेरा मतलब है गंगा की पूजा, पूजा पाठ तो करती है ना?
2: हम करती है, पूजा पाठ जरूर करती है। मैंने तेरे बारे में उसे बताया था, उसकी बहुत इच्छा है कि अगर तू कभी मिले तो तेरी देखभाल करूं, तेरी कोई दिक्कत हो तो मैं तेरी मदद करूं नारायणी। हाँ हाँ, उसने कहा था मुझे।
1: यही वो आदमी है जो वर्षों पहले मेरी देह को छल्ली करके भाग गया था, मेरा सारा सुख छीन लिया था इसने, मुझे आसमान से नरक में धकेल कर कायरों की तरह मुंह छिपाकर चुपके से निकल भागा था, और आज फिर इसकी गंदी नियत

0: कुछ पर लार टपका रही है। जी तो करता है कि मैं इसका गला दबा दूं, लेकिन अभी तो इस राक्षस के हाथों किसी तरह खुद को बचाना है। मगर कैसे? हाँ, वो सामने फल काटने वाला चाकू पड़ा है। हाँ, यही मेरी अस्मत की रक्षा कर सकता है।
1: अरे कहाँ गुमसुम हो गई तुम है? बोलना, क्या चाहिए तुझे? धन, दौलत, पैसा, सब कुछ दूंगा। बोलना नारायणी, क्या चाहिए? देख देख नारायणी, तेरा पति बीमार है, तेरा बच्चा छोटा है, मैं तेरी धन दौलत से सब
0: देखो हा? देखो आगे मत बढ़ना।
1: अरे नहीं, पास आओ।
0: ये चाकू मैं आपके सीने में भोंक दूंगी।
1: चाकू?
0: आपकी बेहतरी इसी में है कि तुरंत यहाँ से चले जाइए। सुना आपने? आगे मत बढ़ना, अच्छा नहीं होगा।

0: ये हड़ताली मजदूर के मजाक की बना रखा है। बोलो बोलो
1: साथियों, हड़ताली मजदूर जब तब हमसे टकराते रहते हैं, भले ही कंपनी की शर्तों ने हमारे हाथ बांध रखे हो, लेकिन हम अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते।
2: हाँ हाँ, हमें आत्मसम्मान से जीना है। हड़ताली मजदूरों का मुकाबला करने के लिए हमें कमर कस लेनी चाहिए।
1: दलित बैरक की पार्वती जब से भागी है, हड़ताली मजदूर आते जाते हमें गाली देते हैं, तिरस्कार भरी नजरों से देखते हैं। हम ये अपमान नहीं सह सकते।
2: हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। अब की बार हड़ताली मजदूरों का जुलूस इस ओर आएगा तो हम उनका मुकाबला करेंगे।
1: हमें पीस वर्करों की यूनियन बना लेनी चाहिए, हड़ताल करने के लिए नहीं, बल्कि हड़तालियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए।
2: हमारी यूनियन का नाम होगा आजाद मजदूर यूनियन। अब की बार हड़ताली आएंगे।

0: अरे 2 दिन से नारायणी घर नहीं आई। अरे कहां कहां नहीं ढूंढा उसे मैंने, पर वो कहीं नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। अरे उसे उसे इस दूध मुहे बच्चे की भी सुध नहीं रही। भगवान, पता नहीं कहां होगी वो, अरे किस हाल में होगी वो। भगवान,
1: शिवू भाई,
0: कौन है, कौन है दरवाजे पर?
1: शिवू, मैं हूं लिचू।
0: लिचू, लिचू, तू इतनी रात को यहां क्या करने आया है?
1: डर मत, मैं रोटी मांगने नहीं आया।
0: तो फिर तू क्यों आया यहां?
1: शिवू भाई, देखने आया हूं कि नारायणी अभी तक आई या नहीं।
0: अरे नहीं आई वो, अभी तक नहीं आई। अरे सब जगह ढूंढ लिया उसे, पुलिस वालों से भी पूछा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। अरे लीचू भाई, समझ में नहीं आता क्या करूं, कहां जाऊं। अरे तू अब दरवाजे पर ही खड़ा रहेगा या अंदर आएगा?
1: शिवू,
0: अंदर आ
1: शिवू। बच्चे को गोद में उठा ले और मेरे साथ चल, खुरपी वगैरह कुछ भी साथ ले ले।
0: ये क्या कह रहा है तू? अरे क्या तुझे

0: नारायणी कहाँ है?
1: हाँ पता है, और तू मेरे साथ चल, खुरपी जरूर ले ले।
0: मगर मेरे पास खुरपी तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास कुल्हाड़ी है।
1: चलेगी चलेगी शिबू, जल्दी कर, समय कम है, सवेरा होने से पहले पहुंच जाना है हमें।
2: शिवू वो देख, पलंग पर बैठी नारायणी साहब के पैर दबा रही है, वो देख।
0: अरे हाँ, अरे हाँ, चल चल जल्दी से अंदर चल, चल चल चल आजा।
3: है कौन कौन है?
4: क्या तुम दोनों यहाँ?
1: हम दोनों, पति को घर पर अकेला छोड़कर तू यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है। अभी तुझे मजा चखाता हूँ मैं।
4: मैं जानती थी कि तुम दोनों यहाँ जरूर आओगे, मेरा विवेक ही तुम्हें यहाँ तक खींच कर लाया है। लाओ लाओ कुल्हाड़ी मुझे दे दो।
1: नहीं, मैं कुल्हाड़ी नहीं दूंगा। अरे नहीं दूंगा,
4: दे दो या मुझे जबरदस्ती छीनना पड़ेगा। मुझे दे दो कुल्हाड़ी, दे दो मुझे, कुल्हाड़ी मेरे हाथ में।
3: नारायणी तू ये क्या कर रही है? नहीं नहीं नहीं नारायणी नहीं, देख देख देख, ऐसा मत कर नारायणी, ऐसा मत कर।
4: मैं हर्ष तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू मुझे बदनाम करेगा, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा।
3: नहीं नहीं नहीं,
4: अब देखती हूँ कि तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। अरे भागता कहाँ है, मैं तुझे

0: यशवंत, यही नाम है ना तेरा?
1: अब जी।
0: देख यशवंत, हड़ताल खत्म हो चुकी है, तुम्हारे सारे के सारे नेता गिरफ्तार हो चुके हैं।
1: हाँ?
0: 60 मजदूरों को वापस काम पर रख लिया गया है, दलित बैरक के सभी मजदूरों को बर्खास्त कर दिया गया है। राम, तुझे भी।
1: क्या?
0: ये ले लिफाफा, इसमें तेरा हिसाब है। हाँ, जाकर शंभू के दल से मिल जा। अभी शंभू का दल बहुत ज्यादा दूर नहीं पहुंचा होगा। जा।

0: शंभू काका, रुक जाओ शंभू काका, मैं भी आ रहा हूँ।
1: शंभू काका हाँ? वो देखो यशवंत दौड़ा चला रहा है, थोड़ी देर रुक जाते हैं।
0: ठीक है। अरे शंभू काका, सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म हो गया काका। हड़ताल विफल हो गई, यूनियन के सारे बड़े नेता गिरफ्तार हो गए।
2: बड़ा भोला है रे यशवंत तू।
0: हाँ?
2: अरे यूनियन के नेताओं को तो शास्त्री जी की सिफारिश पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ताकि विद्रोही मजदूरों से उनकी जान की रक्षा की जा सके। जब शास्त्री जी का इशारा होगा यूनियन नेता छूट जाएंगे।
0: ये आप क्या कह रहे हो शंभू काका?
1: हाँ, पर जानता है यशवंत, तुझे इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि तू हमारा सच्चा हमदर्द है, ईमानदार है। उन लोगों के लिए तेरा मजदूरों के हाथों मर जाना ही अच्छा है।
0: नहीं नहीं भृगु, ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है।
2: यही सच है यशवंत, मगर तेरे जैसा सच्चा इंसान इस कड़वी सच्चाई को कैसे समझ सकता है। एक बात और, शास्त्री भी कंपनी के हाथों बिक चुका है।
0: क्या? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब।
2: चल यशवंत, आ चले।
0: हाँ, चल। लेकिन काका, लिचू कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा।
2: उसने साई नदी में कूद कर अपनी जान दे दी।
0: और बसुमती काकी?
1: माँ पुलिस की गोली का शिकार हो गई।
0: और नारायणी और उसका पति?
2: शिबू मर गया।
0: क्या?
2: नारायणी उसकी लाश को छोड़कर आने के लिए तैयार नहीं हुई। तू हमारे साथ चल, अगर मजदूरों को पता लग गया कि तू यहाँ है तो वो तुझे जिंदा गाड़ देंगे।
0: नहीं काका, मैं नहीं जाऊंगा।
2: क्या?
0: आज तक आपका ये डिब्बा खाली है ना?
2: ये हमेशा खाली रहेगा यशवंत, कभी नहीं भरेगा ये डिब्बा।
0: ये मेरे हिसाब के रुपए हैं काका,

0: सारे रुपए मैं आपके इस डिब्बे में डाल रहा हूँ। आप जहां भी जाएंगे वहां फिर हड़ताल होगी, तब ये रुपए बहुत काम आएंगे। तब किसी को भूखा मत मरने देना काका, किसी को भूखा मत मरने देना।
1: एक बात सुन यशवंत।
0: हाँ बोलो काका।
1: उस दिन की घटना से तूने हमेशा नारायणी को चरित्रहीन समझा, लेकिन वो चरित्रहीन नहीं है।
0: ये तुम क्या कह रहे हो काका?
1: मैं ठीक कह रहा हूँ, तू भी हमारे साथ चलता तो कितना अच्छा होता।
2: हाँ चलना यशवंत।
0: नहीं काका नहीं, मुझे वापस जाना होगा, हर हाल में वापस जाना होगा।
1: क्या नारायणी के पास?
0: उसके पास भी जाऊंगा, उसे और उसके बच्चे को मेरी जरूरत है। और काका एक कारण और भी है मेरे वापस जाने का।
1: एक कारण और?
0: हाँ काका एक कारण और।
2: यशवंत अरे रुक जाओ रुक जाओ। यशवंत रुको।
3: ओ, अरे इतनी रात को कौन आ गया भैया?
4: अरे ठहरो भैया, आ रहा हूं। दरवाजा तोड़ोगे क्या? आ रहा हूं।
3: हाँ, यशवंत तुम?
0: हाँ मैं।
3: इस वक्त?
5: चलो चलो जाओ यहां से जाओ। अरे जाओ यहाँ से, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, समझे? जाओ यहाँ से।
0: शास्त्री जी मैं वो तलवार हूं जिस पर आज तक जंग लगी हुई थी, लाचारी की जंग, लेकिन हकीकत ने आज इस जंग को उतार दिया है। अब इस तलवार में एक नई चमक पैदा हो गई है, विद्रोह की चमक शास्त्री जी, और आज ये तलवार तेरे अंत का कारण बनेगी शास्त्री।
6: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जंग लगी तलवार की 13वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
7: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 5 दिवसीय प्रदेश प्रवास के पहले दिन आज बैतूल में ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल हुई। इसके बाद वे ओंकारेश्वर के लिए रवाना होंगी। भारत और फ्रांस आर्थिक औद्योगिक सहयोग को प्रगाढ़ करने के प्रयासों के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पेरिस में प्रमुख फ्रांसीसी व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। उन्होंने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जा रही है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पुलिस में उप निरीक्षक के 10 एवं आरक्षक के 50 पदों पर सीधी नियुक्ति का अवसर मिलेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं। भोपाल के रविन्द्र भवन में आज शाम को रानी दाई नाटक का मंचन किया जाएगा। विश्व संगीत दिवस के अवसर पर भोपाल के भारत भवन में 19 जून को शाम 7 बजे फ्रांस के संगीत बैंड की प्रस्तुति होगी। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से इंदौर उज्जैन भोपाल और ग्वालियर संभाग के अनेक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है और भारत अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एक दिवसीय क्रिकेट मैच का तीसरा और अंतिम मुकाबला आज शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है महिलाओं के लिए उनकी पसंद का कार्यक्रम महिला सभा।

सुन रही हैं महिला सभा कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आप सभी बहनों का हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। हम हैं नीलम तिवारी, तो स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। बहनों, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रकुटी तानी थी बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ बहनों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने रणभूमि में अकेली ही अंग्रेजों को धूल चटाई। उनकी गाथा सुनकर आज भी हमारा मन मस्तिष्क वीर रस से भर उठता है। 19 नवंबर सन 1828 को वाराणसी में पिता मोरूपंत और माता भागीरथी के घर में एक ओजस्वी कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया मणिकर्णिका। मणिकर्णिका को लोग प्यार से मनु कहकर बुलाने लगे। बचपन में ही मां का निधन हो गया, इसीलिए अपने पिता के साथ पेशवा बाजीराव के दरबार में जाने लगी। उनकी चंचलता और सुंदरता को देखकर पेशवा बाजीराव उन्हें स्नेह से छबेली कहकर बुलाया करते थे। नाना भाई और गुरु तात्या टोपे के सानिध्य में मनु बचपन में ही शास्त्रों की शिक्षा के साथ शस्त्र शिक्षा में निपुण हो गई थी। सन 1842 में जब वो केवल 14 वर्ष की थी, तब उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हो गया और वे झांसी की योग्य महारानी बनी। विवाह के बाद मणिकर्णिका का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। सन 1851 में महारानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा गया दामोदर राव नेवालकर। परंतु कुछ माह पश्चात उनके पुत्र की मृत्यु हो गई और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया और उसका भी नाम रखा दामोदर राव। इसके बाद रानी के जीवन में सर्वोच्च दुख की वो घड़ी भी आई जब 21 नवंबर सन 1853 को राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। परंतु घनघोर दुख की इस घड़ी में भी रानी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें किला छोड़कर महल में रहना पड़ा, परंतु अंग्रेजों को झांसी ना देने का अटल निश्चय किया। चारों ओर हिंसा भड़क उठी और झांसी सन 1857 के संग्राम का प्रमुख केंद्र बन गई। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई ने एक महिला सेना का गठन शुरू किया और इस सेना का नेतृत्व किया झलकारी बाई ने, जो देखने में लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी। इस दौरान पड़ोसी राज्यों दतिया ओरछा ने भी झांसी पर आक्रमण किया, परंतु रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अटूट साहस से इनको सफल नहीं होने दिया। इसके बाद जब ब्रिटिश सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया, तो रानी अपने दत्तक पुत्र दामोदर को पीठ पर बांधकर बहादुरी से लड़ी और अंग्रेजों को रणभूमि से खदेड़ दिया। जब 18 जून सन 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की शराय में अंग्रेजों ने उन्हें फिर से घेर लिया, तो अपनी ही तलवार से महारानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई, सदा सदा के लिए अमर हो गई। आज 18 जून को उनके बलिदान दिवस पर बस इतना ही कहेंगे कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमृत तो देकर इस जगत के शौर्य की जीवित कहानी हो गईं, है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय ओ धरा पर गिर पड़ी पर आसमानी हो गईं, ओ धरा पर गिर पड़ी पर आसमानी हो गईं। भारत में आजादी की एक ऐसी चिंगारी आई थी, रणभूमि की बलबेदी पर प्राणों की भेंट चढ़ाई थी, मां भारत के रणवीरों ने आजादी की ऐसी अलख जगाई थी, लाख घरों के दीप बुझे थे, माताओं के आंचल उजड़े थे, तब हमने ये आजादी पाई थी, तब हमने ये आजादी पाई थी। अब अपनी इस आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं।

0: बहनों, अभी आपने सुना मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में लीडर फिल्म का गीत। शकील बदायूनी की शब्द रचना को संगीत से सजाया था नौशाद ने। अब मिलते हैं एक अंतराल के बाद।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
0: अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है आपके पसंद के कार्यक्रम महिला सभा में। बहनों, ये बात हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे खान पान पर आधारित होता है और हमारे खान पान की प्राकृतिक विविधता एक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यंजन और खान पान की परंपरा होती है। व्यंजन और खान पान की इसी परंपरा को हम सतत भोजन कहते हैं और इसीलिए हर वर्ष 18 जून को हम सतत

भोजन दिवस मनाते हैं ताकि खान पान और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके, क्योंकि बहनों सतत भोजन दिवस मनाने का उद्देश्य ही है स्थानीय व्यंजन, मौसमी सामग्री और पर्यावरण के अनुकूल खान पान को बढ़ावा देना। तो ऐसे खाद्य पदार्थों का उपभोग करें जो पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान न पहुंचाएं। हमें स्वाद और स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। सतत भोजन का अर्थ है कि भोजन बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि सामग्री कहाँ से आती है, हम जिस सामग्री का उपभोग कर रहे हैं वो पूरी तरह शुद्ध है या नहीं। इसीलिए भोजन सामग्री चयन करते समय हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। तो आज 18 जून को सतत भोजन दिवस के अवसर पर हम आपसे यही कहेंगे कि आप जो भी बनाएं या जो भी खाएं उसकी शुद्धता का ध्यान रखें। हमारे भोजन अवशेष से पर्यावरण को और पारिस्थितिकी तंत्र के जीवधारियों को नुकसान न पहुंचे इस बात का भी ध्यान रखें। स्थानीय उत्पादों का सेवन

0: पोषण दिवस के अवसर पर हम आपसे यही कहेंगे कि आप जो भी बनाएं या जो भी खाएं उसकी शुद्धता का ध्यान रखें। हमारे भोजन अवशेष से पर्यावरण को और पारिस्थितिकी तंत्र के जीवधारियों को नुकसान न पहुंचे, इस बात का भी ध्यान रखें। स्थानीय उत्पादों का सेवन करें जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हो। परंपरागत व्यंजनों के साथ साथ मौसमी फलों और सब्जियों का भी उपयोग करें, क्योंकि प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो मिलावटी और नकली खाद्य पदार्थों से सावधान रहिए। मिलावट से स्वयं भी जागरूक रहना है और अन्य लोगों को भी जागरूक करना है, यही सतत भोजन दिवस मनाने का लक्ष्य है। अब हम आपसे मिलते हैं एक अंतराल के बाद।
1: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
2: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: बहनों, अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है आपके महिला सभा कार्यक्रम में। बहनों, हमारे बुजुर्ग हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं होते। हमें उनकी देखभाल में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, प्रसन्न मन से उनकी सेवा और देखभाल करना चाहिए। जो बुजुर्ग हमारे अच्छे भविष्य के लिए अपना सर्वस्व सौंप देते हैं, हमें उम्र की अंतिम अवस्था में उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बुजुर्गों की देखभाल में हम बहनों की विशेष भूमिका होती है। तो आज इसी विषय पर आधारित ये वार्ता हम आपको सुनवा रहे हैं, बुजुर्गों की देखभाल में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार हैं श्वेता झा।
3: जीवन के दो छोर बचपन और बुढ़ापा दोनों ही सबसे अधिक देखभाल, संवेदनशील और प्रेम की मांग करते हैं। बचपन को संवारने का काम अगर माँ करती है तो जीवन के आखिरी पड़ाव पर पहुँचे बुजुर्गों को संभाल देने का काम भी मुख्य रूप से परिवार की महिलाएं, बहू, बेटी, पत्नी और बहन ही करती हैं। आज के आधुनिक और भागदौड़ भरे युग में जहां संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, बुजुर्गों की सेवा केवल एक शारीरिक कार्य नहीं, यह एक मानसिक, भावात्मक और सामाजिक जिम्मेदारी है जिसे महिला सदियों से अपनी सहज, संवेदनाशील और त्याग भावना से निभाती आ रही हैं। बुजुर्गों की सेवा को पुण्य और धर्म का कार्य माना गया है। महिलाओं को लक्ष्मी और संस्कारों की संवाहन के रूप में देखा जाता है। पारिवारिक मूल्यों का संरक्षण प्राचीन काल से ही यह माना जा रहा है कि पुरुष मुख्य रूप से घर के बाहर आर्थिक जिम्मेदारी संभालते हैं, जबकि घर के भीतर की व्यवस्था जिसमें बच्चों की परवरिश और बुजुर्गों की सेवा शामिल है, महिलाओं के जिम्मे होती है। सहनशीलता और करुणा का प्रतीक महिलाओं को प्रकृति से ही अधिक संवेदनशील, धैर्यवान और करुणामयी माना गया है। बुजुर्गों की देखभाल में शारीरिक श्रम से ज्यादा मानसिक धैर्य की आवश्यकता होती है, जो महिलाओं के स्वभाव से स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। बहुआयामी भूमिकाएं महिलाएं इस रूप में करती हैं। वही एक नर्स, एक दोस्त, एक रसोईया और एक मानसिक संबल प्रदान के रूप में कार्य करती है। बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है और व्यक्ति बीमारियों से घिर जाता है। ऐसे समय में महिलाएं उनकी रीढ़ की हड्डी बनती हैं। समय पर दवाई लाना, उनके मेडिकल शेड्यूल का पूरा ध्यान रखती हैं। स्वच्छता और दैनिक कार्य गंभीर रूप से बीमारी या बिस्तर पर पड़े बुजुर्ग को नहलाना, कपड़े बदलना और उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना ही एक बेहद कठिन कार्य है जिसे महिलाएं बिना किसी शिकायत के करती हैं। डॉक्टर के पास ले जाना और डॉक्टर के निर्देशों का पालन करना भी महिलाओं की दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। बुजुर्गों का पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है जिसके कारण उन्हें विशेष भोजन की आवश्यकता होती है। उनकी पसंद का ध्यान रखना, शारीरिक दिक्कतों के कारण बुजुर्ग अक्सर चिड़चिड़े हो जाते हैं या उनका मन कुछ विशेष खाने का करता है। महिलाएं उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए उनके स्वाद और स्वास्थ्य दोनों का संतुलन बनाती हैं। बुढ़ापे का सबसे बड़ा अभिशाप, अकेलापन।

0: मन और उपेक्षा का एहसास है। जब बच्चे अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं तब बुजुर्ग खुद को अकेला महसूस करते हैं। बातचीत और सुख दुख बांटना, महिलाएं घर में रहते हुए बुजुर्गों से बात करती हैं, पुराने जमाने के किस्से सुनती हैं, जिससे बुजुर्गों का अकेलापन दूर हो जाता है। अस्तित्व का एहसास कराना, घर के छोटे बड़े फैसलों में बुजुर्गों की राय लेना, उन्हें यह महसूस कराना कि वे आज भी परिवार के मार्गदर्शक हैं। कामकाजी महिलाएं और बुजुर्गों की देखभाल एक दोहरी चुनौती। 21वीं सदी में महिलाओं की भूमिका में बड़ा बदलाव आया है। आज की महिलाएं केवल चार दीवारी तक सीमित नहीं हैं, वह दफ्तर जाती हैं, व्यापार संभालती हैं, लेकिन इस बदलाव के साथ उनकी जिम्मेदारी कम नहीं हुई, दोगुनी हो गई है। महिलाएं खुद को एक ऐसे मोड पर पाती हैं, जहां उन्हें एक तरफ अपने बढ़ते बच्चों के भविष्य को संवारना है, दूसरी तरफ अपनी नौकरी बचानी है। एक कामकाजी महिला सुबह उठकर बुजुर्गों के लिए खाना और दवाइयां तैयार करती है, फिर दफ्तर जाती हैं और शाम को लौटकर दोबारा उनकी सेवा में लग जाती हैं। यह उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भारी दबाव डालता है, फिर भी वे इसे निभाती हैं। भारतीय समाज में शादी के बाद लड़की दूसरे घर जाती है, वहाँ जाकर पति के माता पिता यानी अपने सास ससुर की सेवा करना उनकी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी मान लिया जाता है। अपेक्षाओं का बोझ। समाज एक बहू से यह उम्मीद करता है कि वह अपने माता पिता की तरह ही सास ससुर की सेवा करे। कई मामले में बहुएं अपने करियर की आकांक्षाओं को छोड़कर या नौकरी से ब्रेक लेकर बीमार सास ससुर की सेवा में सालों समर्पित करती हैं। समय के साथ एक गहरा भावात्मक रिश्ता बना लेती हैं, जो परिवार की एकता को बनाए रखता है। बुजुर्गों के देखभाल करना एक अत्यंत सम्मानजनक कार्य है, लेकिन लगातार और लंबे समय तक देखभाल करने का महिलाओं के स्वयं के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसे समाज अनदेखा कर देता है। यदि महिलाएं बुजुर्गों की देखभाल निस्वार्थ भाव से कर रही हैं, तो परिवार के अन्य सदस्य महिलाओं के इस बोझ का साझा करें। बुजुर्गों की देखभाल केवल महिलाओं का काम नहीं, बुजुर्ग हमारे समाज की जड़ हैं और महिलाएं उस जड़ को सींचने वाला पानी हैं। यदि महिलाएं बुजुर्गों की देखभाल से अपने हाथ खींच लें, तो हमारा सामाजिक सांचा पत्तों की तरह बिखर जाएगा। महिलाओं की इस भूमिका को केवल एक कर्तव्य मानकर छोड़ देना उनके साथ अन्याय होगा। यह उनका त्याग है, उनका प्रेम है और समाज के प्रति उनका सर्वोच्च योगदान है। जब एक महिला को परिवार का प्यार मिले, तब वह हमारे बुजुर्गों को एक सम्मानजनक, सुरक्षित और खुशहाल बुढ़ापा दे पाएंगी।
1: बहनों, अभी आपने सुनी ये वार्ता। विषय था बुजुर्गों की देखभाल में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार थी श्वेता झा। अब चलते हैं गीत संगीत की ओर, क्योंकि बातों के साथ साथ गीत संगीत का आनंद अलग ही होता है। तो आइए सुनते हैं ये गीत SD बर्मन के संगीत निर्देशन में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, आवाज किशोर कुमार लता मंगेशकर की है और फिल्म है आराधना।

बहनों, भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगार केवल सुंदरता का साधन नहीं है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और सौभाग्य का प्रतीक है। सजने संवरने से मन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता है। महिलाएं स्वयं को तरोताजा और प्रसन्न महसूस करती हैं। हमारे देश में विवाहित स्त्रियों के 16 श्रृंगार को अखंड सौभाग्य और समृद्धि से जोड़ा जाता है। बहनों, हम जो 16 श्रृंगार करते हैं, उसका धार्मिक महत्व तो होता ही है, साथ में वैज्ञानिक महत्व भी होता है। किसी पर्व या मांगलिक अवसर पर महिलाएं अक्सर 16 श्रृंगार करती हैं। सिंदूर, मांग टीका, गजरा, बिंदी, झुमके, काजल, नथ, लिपस्टिक, मंगलसूत्र, हार, मेहंदी, चूड़ियां, अंगूठी, कमरबंद, पायल, बिछिया, महावर और लाल चूनर, ये सभी श्रृंगार सौभाग्य का प्रतीक होते हैं। और इन सभी श्रृंगारों का जो प्रथम चरण है, वो है उपटन और स्नान। उपटन और स्नान के बाद ही 16 श्रृंगार धारण किए जाते हैं, और श्रृंगार के बाद इत्र का भी विशेष महत्व होता है। लेकिन बहनों, बदलते परिवेश के साथ हमारे 16 श्रृंगारों का रूप भी बदल सा गया है। आज के समय में महिलाएं उपटन के स्थान पर नए नए फेस वॉश, शैम्पू, साबुन का प्रयोग करती हैं। स्नान के पश्चात क्रीम, पाउडर, बॉडी लोशन, फाउंडेशन, फेस पाउडर और परफ्यूम यूज करती हैं। ये बहुत अच्छी बात है।

लेकिन ये जो प्रोडक्ट हैं कभी कभी स्किन पर विपरीत प्रभाव भी डाल देते हैं, तो इसीलिए हमें हमारे प्राकृतिक सौंदर्य प्रसाधन प्रयोग करना चाहिए। यदि बाजार से सौंदर्य प्रोडक्ट लेने जा रही हैं तो अपनी स्किन के रंग के अनुसार क्वालिटीफुल प्रोडक्ट ही लेना चाहिए और कम मात्रा में लेना चाहिए। जब कोई फंक्शन हो तभी इनका प्रयोग करना चाहिए, रोज में इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोज रोज मेकअप प्रोडक्ट लगाने से इनमें उपस्थित केमिकल हमारी त्वचा को हानि पहुंचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ज्वेलरी की। तो बहनों, ज्वेलरी विशेष रूप से अपनी ड्रेस के अनुसार ही पहनना चाहिए, क्योंकि कई बहनें दिखावे के चक्कर में जरूरत से ज्यादा गोल्ड की ज्वेलरी पहन लेती हैं। जितनी भी ज्वेलरी उनके पास होती है सभी कुछ एक साथ धारण कर लेती हैं, तो ऐसी स्थिति में वो ओवरलुक दिखती हैं। तो श्रृंगार करते समय हमें इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखना है कि ना तो अधिक मेकअप करना है और ना ही अधिक ज्वेलरी पहनना है। यदि आप हल्का मेकअप करके मैचिंग की ज्वेलरी पहनेंगी तो निश्चित रूप से सुंदर और आकर्षक दिखेंगी, और असली श्रृंगार तो व्यक्तित्व होता है, इसीलिए हमारा व्यक्तित्व सुंदर होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि मन की सुंदरता तन की सुंदरता से अच्छी होती है। प्रकृति की शान है नारी, धैर्य का प्रमाण है नारी, सरस्वती का रूप है नारी, लक्ष्मी का स्वरूप है नारी, शक्ति का भंडार है नारी, जीवन का आधार है नारी, शक्ति का भंडार है नारी, जीवन का आधार है नारी। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है। तो अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, ढेर सारी बातें होंगी, साथ ही होगा मनोरंजन, क्योंकि बहनों आप हमारे कार्यक्रम को नियमित रूप से सुनती हैं तो हमारा कार्यक्रम और भी रोचक हो जाता है। आपके कार्यक्रम सुनने से और समीक्षा करने से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। तो हम आपसे चलते चलते यही कहेंगे कि हमारे कार्यक्रम को नियमित रूप से सुनिए। जो भी आप कार्यक्रम में सुधार चाहती हैं आप हमें पत्र व्यवहार से बता सकती हैं, और हमें व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर भी हमारे पेज पर मैसेज कर सकती हैं। तो बहनों, आप हमारे कार्यक्रम को नियमित रूप से सुनें और हमें अपने सुझाव जरूर भेजें, क्योंकि आपके सुझाव ही हमारे कार्यक्रम की रोचकता में चार चांद लगाते हैं। तो मन तो कर रहा है कि आपसे और भी बातें करें, लेकिन अब समय संकेत कर रहा है आपसे अनुमति लेने के लिए। तो अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, अभी अनुमति दीजिए नीलम तिवारी को। नमस्कार।

अभी महिलाओं के लिए महिला सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम अनुप्रसारित होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

प्रस्तुत है लोक संगीत के कार्यक्रम में शोभना कश्यप के गाए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की है। आरंभ में ये दादरा।

इस गारी गीत के साथ ही लोक संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे शोभना कश्यप के गाए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कोकिला दत्ता के गाए कुछ भजन।

0: कबीर की इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे कोकिला दत्ता के गाए कुछ भजन, प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

0: राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में सूरज का लिखा यह गीत था। लता मंगेशकर, उदित नारायण ने गाया था। फिल्म थी सातवां आसमां। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन इंदौर

0: हैं। पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, ये देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष का प्रत्येक अंग हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक अक्षत होना चाहिए, क्षति नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये भारत में रहने वाले जनता, कोई भी समाज पीछे ना रह जाए।
1: राष्ट्रपति आज ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगी और शाम की आरती में भी शामिल होंगी। इस दौरे में 21 जून को जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 22 जून को कूनो नेशनल पार्क का दौरा भी शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इंदौर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने के बाद कहा कि उनका प्रदेश आगमन प्रदेशवासियों के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति प्रदेश के सफल चीता प्रोजेक्ट का अवलोकन करेंगी और सिकल सेल एनीमिया से निपटने की राज्य सरकार की रणनीति से भी अवगत होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैतूल में ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में राष्ट्रपति की भागीदारी से आध्यात्मिक और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन

की स्थिति समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता होने के बहुत करीब है और यदि भारत पर कोई हमला हुआ तो अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में प्रमुख फ्रांसीसी व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि पिछले साल अगस्त से इस योजना के अंतर्गत 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। पहली सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। इस कार्यक्रम में 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को सीधे उनके खाते में राशि हस्तांतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम श्वास तक शत्रु के समक्ष शीश नहीं झुकाया और मातृभूमि के सम्मान के लिए उनका बलिदान भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। मुख्यमंत्री ने फ्लाइंग सिख और पद्मश्री प्राप्त मिल्खा सिंह को भी उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देशभर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान और विकसित भारत की पहचान है। इस अभियान के तहत जागरूकता रैलियां, युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। भारतीय महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड में जारी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत की ओर से दीपिका ने 2 और दीपिका सोरेंग ने 1 गोल दागा। इस जीत के साथ भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। प्रदेश का खेल एवं युवा कल्याण विभाग प्रदेश की उभरती खेल प्रतिभाओं को तलाशने के लिए टैलेंट सर्च महाअभियान चला रहा है, जिसके तहत 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग के युवा खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार किया जाएगा। इस अभियान में एथलेटिक्स, हॉकी, कुश्ती, बॉक्सिंग और तीरंदाजी समेत कुल 21 खेल विधाओं के ट्रायल होंगे। ऑनलाइन पंजीयन 17 जून से शुरू हो रहा है और चयन प्रक्रिया 27 जून से आरंभ होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया नगर पालिका परिषद में जनकल्याण शिविर का आयोजन किया गया। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पत्रकारिता के अध्येता एवं इतिहास लेखक विजय दत्त श्रीधर को डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। गुना कलेक्टर ने स्कूल चले हम अभियान के दूसरे चरण के तहत पुरानी छावनी के PM श्री शासकीय माध्यमिक विद्यालय के छात्रों से संवाद किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण

0: क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारे की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113

0: लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में यह बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ओआरएस, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमरीका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
2: अमरीका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमरीका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना आएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं।

0: पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय और भारत ने हॉकी एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपके पत्रों के माध्यम से भेजी पसंद हम पूरी करेंगे इस कार्यक्रम में। पहला पत्र शामिल कर रहे हैं हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी, मोहम्मद रफी इंदौर से हमें पत्र भेजते हैं। जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास बंडा बेलई जिला सागर से लक्ष्मण रैकवार, श्रीमती विनीता रैकवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी, अनर्थ रैकवार, हल्ले लल्लू, ऋषि रैकवार, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय की। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमारी संचित वायाल मैताला से प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख करडा रिसोर्ड से सानवी देशमुख और सर्वद्र देशमुख, डोंगर गांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनामिका, अनिष्का और तन्मय गजबिये।

छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशी लाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव ने। विश्वात्मा फिल्म का गीत साधना सरगम का गाया हुआ। आनंद बख्शी ने बोल लिखे हैं, विजू शाह ने संगीत बनाया।

कार्यक्रम में अगला अनुरोध शामिल कर रहे हैं कालीचरण यादव, दीपक यादव, चांदनी यादव और उर्मिला यादव की ग्राम संदलपुरा से। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार की। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर और डॉ अमनदीप की। कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल की। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुजतबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय की। सुनना पसंद किया है सौदागर फिल्म का गीत, कविता कृष्णमूर्ति, मनहर उदास और सुखविंदर ने इसे गाया है। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अगली पसंद शामिल कर रहे हैं आशा रेडियो श्रोता संघ के मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर राही, सरिता गवहाणकर सिद्धांत, प्रिंस और एकांश गवहाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश वैशाली, श्वेता सुमित ध्वनि गवहाणकर परी की, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले की, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा की, बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता हार्दिक प्राची और तनु करमरकर की, तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्यप्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई परु, मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर और तैमूर बारेकर की, मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरसद तड़वी, आरिश असलान, यूनुस तड़वी की, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खान तड़वी, जरीना मुबारक, परवेज बिटिया, रोजमीन तैमूर और तड़वी परिवार के सदस्य। एक लड़का एक लड़की फिल्म का गीत कुमार सानू और साधना सरगम ने गाया है, मजरू ने बोल लिखे हैं, आनंद मिलन की धुन है।

कार्यक्रम में अगली ख्वाहिश शामिल कर रहे हैं आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी और सौरभ शर्मा की। शाइना और निवान भी इनके साथ हैं। ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और सूरज कुमार ढाकसे की। रामचंद्र माखीजा काफिर, श्रीमती सविता, बेबी स्वाति माखीजा, छुटकी, शरद और पूरा माखीजा परिवार छत्तीसगढ़ बनियापारा धमतरी से ये पत्र हमें भेजता है। जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन, अरुण चौरसिया हमें ये पत्र भेजते हैं। और कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली की। प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल और प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा की। दिल है कि मानता नहीं फिल्म का गीत अनुराधा पोडवाल का गाया हुआ। समीर के बोल है, नदीम श्रवण ने धुन बनाई है।

0: अनुराधा पौडवाल के गाए फिल्म दिल है कि मानता नहीं के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन इंदौर पहुंचने पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इंदौर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने के बाद कहा कि राष्ट्रपति प्रदेश के सफल चीता प्रोजेक्ट का अवलोकन करेंगी और सिकल सेल एनीमिया से निपटने की राज्य सरकार की नीति से भी अवगत होंगी। राष्ट्रपति ने बैतूल में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी द्वारा आयोजित जनजाति सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए देश का कोई भी समुदाय विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार समझौते, रक्षा सहयोग और पश्चिम एशिया की स्थिति समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। प्रदेश में मानसून 22 से 24 जून के बीच प्रवेश कर सकता है। प्रदेश में मानसून से पहले गर्मी का असर भी बढ़ता दिख रहा है और अगले 3 दिनों तक हीटवेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं हॉकी में भारतीय महिला टीम ने न्यूजीलैंड में जारी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको सांध्यकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। श्रोताओं, शाम 6:30 पर आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बैतूल प्रवास पर आयोजित कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट।

युवाओं का कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की होगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। रात्रि 8:00 समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष के अंतर्गत आज सुनिएगा विरासत। आपकी फरमाइश कार्यक्रम रात्रि 10:00 आप सुनेंगे और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा एसएल कंडारा का वायलिन पर बजाया राग यामिनी। आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी का प्रसारण शाम 7:21 पर होगा। इसके अंतर्गत डॉक्टर अनामिका पंडे से ग्रामीण महिलाओं के विकास में अग्रसर शासकीय योजनाएं विषय पर की गई भेंटवार्ता प्रसारित करेंगे। ये थे मुख्य आकर्षण संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 3:01:33 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारा ये प्रसारण समाप्त होता है। शाम 5:00 हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः हाजिर होंगे। इस बीच हमारा प्रसारण डीटीएच पर जारी है।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। इस समय दोपहर के 3:02 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे शोभना कश्यप के गाए कुछ लोकगीत। आरंभ कर रहे हैं इस दादरा के साथ।

मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए उनका मनचाहा कार्यक्रम युववाणी।

0: साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे युवाणी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ पारुल पटेरिया और मेरे साथ हैं
1: शिल्पी अग्रवाल।
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: आज साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा है। विषय है सतत भोजन दिवस।
1: साथियों, ये दिवस हर साल 18 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल तरीके से भोजन पकाने की कला, स्थानीय उपज के अनुकूल उपयोग और सांस्कृतिक खाद्य परंपराओं को बढ़ावा देना है जो लंबे समय तक हमारी पृथ्वी और स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचाए।
0: साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर 2016 को संकल्प पारित करके हर साल 18 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी।
1: साथियों, इसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा किया जाता है।
0: सतत भोजन का अर्थ है ऐसा भोजन जो हमारे शरीर के लिए पौष्टिक हो, पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए और किसानों की आजीविका को भी मजबूत बनाए।
1: दूसरे शब्दों में, ऐसा भोजन जो आज की जरूरतें पूरी करे और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखे।
0: साथियों, सतत भोजन का एक महत्वपूर्ण पहलू स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों को अपनाना भी है। हमारे आसपास उगने वाले फल, सब्जियां, मोटे अनाज जैसे

0: से ज्वार बाजरा न केवल पोषण से भरपूर होते हैं बल्कि उन्हें उगाने में अपेक्षाकृत कम पानी और संसाधनों की आवश्यकता होती है।
1: साथियों, सतत भोजन दिवस 2026 की थीम खाद्य विरासत का जश्न मनाना है। हर साल 18 जून को मनाए जाने वाले इस दिवस का उद्देश्य पारंपरिक खानपान, स्थानीय सामग्री और पर्यावरण अनुकूलन पाक प्रथाओं के महत्व को उजागर करना है।
0: साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी सतत भोजन दिवस पर। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।
2: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
3: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
4: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
5: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
6: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
5: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
6: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: बदलो बदलो, आदत बदलो।
8: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
7: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: साथियों, अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम में, और कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं।
0: साथियों, आज हम स्मरण कर रहे हैं भारत की उस वीरांगना को जिनका नाम सुनते ही साहस, आत्मसम्मान और देशभक्ति की भावना जाग उठती है।
1: हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे झांसी की अमर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर सन 1828 को वाराणसी में हुआ था।
0: साथियों, इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था और घर में उन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ शस्त्र की शिक्षा भी ली। उन्होंने बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में विशेष रुचि दिखाई।
1: साथियों, सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया।
0: साथियों, अंग्रेजों ने अपनी हड़प नीति के तहत दत्तक पुत्र को उनका वारिस मानने से इनकार कर दिया और झांसी पर अधिकार करने का प्रयास किया, पर रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी की रक्षा करने का निश्चय किया।
1: सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। जब देश के अनेक हिस्सों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह हुआ, तब रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रक्षा का नेतृत्व लिया।
0: साथियों, 1858 के जनवरी माह में ब्रिटिश ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरे शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रिटिश सेना ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया,
1: परंतु रानी अपने पुत्र दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हुई और कालपी पहुंचकर तात्या टोपे से मिली।
0: साथियों, 18 जून यानी आज ही के दिन 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गयी।
1: साथियों, ये तो हमने आपको जानकारी दी रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर, और अब मिलते हैं इस अंतराल के बाद।
3: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
4: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
5: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
6: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
5: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क।

0: संपर्क डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
1: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: साथियों, अंतराल के बाद पुनः स्वागत है आपका हमारे युवाणी कार्यक्रम में। शिल्पी, आज है गुरुवार और गुरुवार के दिन हम लेकर आते हैं गुरुवार विशेष, हमारे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम।
4: हेलो

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो फ्रेंड से आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: हाँ कौन मैडम जी बोल रही हैं?
0: जी मैं पारुल पटेरिया बात कर रही हूँ।
1: मैं बता दूँ, कहते हैं कि फूल खिल के बागों को बहार देते हैं, और जिस कार्यक्रम को मैडम जी आप पेश करती हैं उसको संवार देते हैं। गजब का कार्यक्रम होता है आकाशवाणी छतरपुर का। मैं ग्राम कल्पा जिला सतना से चांद मोहम्मद खान बोल रहा हूँ मैडम जी।
0: जी चांद मोहम्मद जी, कैसे हैं आप?
1: अरे बस मैडम जी बहुत अच्छे हैं, और आपके कार्यक्रम को सुन करके तो समझ लो कि बहार आ जाती है। और कार्यक्रम छतरपुर जब आप पेश करते हैं वाणी कार्यक्रम, तो क्या कहना दीदी जान, हम तो बहुत आपके कार्यक्रम से जुड़े रहते हो, काफी दिनों से सुन रहे हैं आकाशवाणी छतरपुर। और मैंने ये देखा कि बहुत से आकाशवाणी मैंने देखे दीदी जी, पर छतरपुर जैसे मैंने नहीं देखा, और आप जैसे कार्यक्रम पेश करने वाले नहीं देखे। इतना लाजवाब पेश करती हैं और हम श्रोताओं को सम्मान देती हैं। है मैडम जी वो तेरी मेहरबानियाँ, और उस गीत के बोल हैं आग लगे तन मन में जब पानी बरसे हाय, ऐसे में आ जा बेदर्दी सावन के दिन आए।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।
1: जी दीदी जी आपका धन्यवाद।

0: हेलो फ्रेंड्स, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बताइए, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: जी हम ग्रामपुर जिला छतरपुर से संगीता पटेल।
0: जी संगीता जी, कैसी हैं आप?
1: जी हम ठीक हैं, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज आपकी फरमाइश क्या है, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
1: जी मैम, आप सुना दीजिए, सूरज से सुंदर सपनों से प्यारा है मेरा घर द्वार।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये गीत। नमस्कार।
1: थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत है। आप कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
1: मैं आपका शुभचिंतक बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ।
0: जी बाहुबली जी, कैसे हैं आप?
1: अरे मस्त हूँ, आनंद में हूँ।
0: जी बाहुबली जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं तो अभी रिटायर हूँ
0: जी। आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज मैं फिल्म दीदार का गीत है, पुरानी फिल्म है दीदार। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे और कल रुला न देना।
0: जी जी, बहुत ही प्यारा गीत है, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये प्यारा सा गीत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्ते बहन जी।
0: नमस्कार, आप कौन और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: जी मैं ग्राम पनवाड़ी, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से देवीदीन अहरवार बात कर रहा हूँ।
0: जी देवीदीन जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं बहन जी, आप ठीक हो?
0: जी मैं भी अच्छी हूँ।
1: आज एक गीत सुनना था हमको।
0: जी कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: ये फिल्म का नाम है मन की आंखें।
0: जी
1: और गीत के बोल हैं, दिल कहे रुक जाए यहीं पर कहे।
0: जी सुनते हैं आपकी पसंद पर ये प्यारा सा गीत।
1: जी नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते।

0: हेलो हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो जी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, बताइए कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी मैं जिला रायबरेली ग्राम पहाड़ीपुर से रामराज बोल रहा हूँ।
0: जी रामराज जी, कैसे हैं आप?
1: जी हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी, आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं। और क्या करते हैं आप?
1: जी हम तो घर ही रहते हैं, गाड़ियां चलाते हैं।
0: जी तो आप आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे, क्या फरमाइश होगी आपकी?
1: जी हमारी फरमाइश एक है जी, मेरा घर मेरे बच्चे फिल्म का गाना है, गाने के बोल है क्या होती है ऊंची जात लोग बड़े और छोटी बात।
0: जी तो चलिए फिर सुनते हैं आपकी पसंद पर ये प्यारा सा गीत।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत है। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं तहसील बहादुरपुर जिला अशोकनगर एमपी से सूर्य प्रताप यादव बात कर रहा हूँ।
0: जी सूर्य प्रताप जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया मैम, आप कैसे हैं?
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ। हमारे साथ आज शिल्पी जी भी हैं, तो आप उनसे भी बात करिए।
1: जी नमस्कार मैडम।
2: नमस्कार सूर्य प्रताप जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, आप कैसे हैं?
2: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सूर्य प्रताप जी, आज आपकी फरमाइश क्या है?
1: फिल्म का नाम है जनता की अदालत और गाने के बोले दिल धड़कने का बहाना ढूंढता है।
2: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये प्यारा सा गीत। नमस्कार।

0: हेलो फ्रेंड्स,
1: हेलो फ्रेंड,
0: हेलो फ्रेंड कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
1: जी बहना जी, मैं राजू यादव
0: जी,
1: राम उपरेखा श्रीरामपुर डेरा सरीला राठ मुस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
0: तो राजू जी कैसे हैं आप?
1: हम तो बहना जी बढ़िया हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, स्वस्थ हैं, बिंदास हैं और बगीचे में बैठे हुए रेडियो आकाशवाणी छतरपुर सुन रहे हैं।
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: एक गीत के बोल होंगे, बनो तेरी अखियां सुरमेदानी, क्योंकि अब शादी समारोह शुरू हो चुके हैं तो ये वाला गीत सुनना चाहेंगे। क्योंकि नाम ले लें बहन
0: जी? जी
1: हमारे मित्र हैं बलवान सिंह यादव हैं, अनुप कुमार राजपूत जी हैं, महेश राजपूत जी हैं, बालेंद्र यादव हैं, राम शरण विश्वकर्मा जी।
0: जी तो चलिए फिर सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये प्यारा सा गीत। नमस्कार।

0: हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र कुमार शुक्ला अपने गांव रतवा से बात कर रहे दीदी।
0: तो वीरेंद्र जी कैसे हैं आप?
1: अरे दीदी बहुत गर्मी पड़ रही इसलिए अपने अंदर वृक्ष के नीचे दुआएं बैठे हुए हैं।
0: जी वीरेंद्र जी क्या करते हैं आप?
1: मैं खेती करता हूँ।
0: जी वीरेंद्र जी, तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज तो दीदी सुनवा दीजिए, बादल कब बरसते, बादल यूं गरजते हैं, बादल कब बरसते हैं।
0: जी जी, तो चलिए फिर सुनते हैं आपकी पसंद पर ये प्यारा सा गीत। नमस्कार।

0: हेलो
1: नमस्कार
0: जी। नमस्कार, आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: जी शारदा जी, कैसे हैं आप?
1: मैं दीदी बहुत अच्छा हूँ, आपका आशीर्वाद बाकी जी हरी कृपा से घर परिवार में सब लोग आनंद से हैं। और दीदी आप बैठी हैं?
0: जी हम भी अच्छे हैं जी। आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है धर्मवीर, गीत के बोल हैं मैं गलियों का राजा महलों की रानी।
0: जी चलिए फिर सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत। नमस्कार।

0: हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार जी। बताइए कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं महाराष्ट्र रामकरण जिला सातारा से सुखाराम जादव बोल रहा हूँ।
0: तो सुखाराम जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है, हमारी तबीयत ठीक है, भगवान की दुआ है, सब चीज चल रहा है
0: जी। क्या करते हैं आप सुखाराम जी?
1: मेरा वर्कशॉप है, वेल्डिंग काम करते हैं, करके दरवाजे ग्रिल चिड़िया बनाते
0: हैं। अच्छा जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मेरे साथ
0: जी, इसके कौन सा गीत?
1: नफरत की दुनिया को छोड़ के कुछ रहना मेरे यार
0: जी। चलिए फिर सुनते हैं आपकी पसंद पर ये प्यारा सा गीत। नमस्कार।

0: करके और भी अच्छा लग रहा है। आप बताइए आप कैसे हो।
1: जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे।
0: जी फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त और गाने के बोले चलो सजना जहाँ तक घटा चले।
1: जी चलिए फिर सुनते हैं आपकी पसंद पर ये प्यारा सा गीत। नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो फ्रेंड्स, में आपका स्वागत है। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी प्रेम सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ। और आपसे बात

साथियों, अभी आप सुन रहे थे हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम। आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको हमें प्रत्येक गुरुवार की दोपहर 12 बजे से 12:30 के मध्य कॉल करना होगा। इसके लिए हमारा नंबर है 2980 29। बाहर के श्रोताओं के लिए हमारा एसटीडी कोड है 076 82। तो साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आपको दे देते हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी गुरु अर्जुन देव पुण्यतिथि पर। साथियों, आज के दिन सिख धर्म के पांचवें गुरु श्री अर्जुन देव जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उनका जीवन सत्य, सेवा, समर्पण, सहिष्णुता और मानवता के आदर्शों से ओतप्रेत था। तो साथियों, इसी के साथ हम आपको दे देते हैं हमारी आज की रोजगार सूचना। रोजगार सूचना में साथियों, यूपीएससी आबकारी कांस्टेबल योग्यवार उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है, जिसकी अंतिम तिथि है 24 जून 2026। आप इसकी अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.upssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। तो साथियों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको दे देते हैं हमारे कल के कार्यक्रम। कल के कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता सोशल मीडिया के प्रभाव विषय पर, जिसमें वार्ताकार होंगी राजकुमारी राजपूत। साथी होंगे कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं और रोजगार सूचना। तो साथियों, अब दीजिए अपनी मित्र पारुल पटेरिया को इजाजत। नमस्कार।

युवा साथियों के लिए अभी युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडिया वेव पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। आइए अब आपको बता देते हैं हमारी सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में शाम 6 बजे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी, 6:30 पर माननीय राष्ट्रपति

0: शक्ति द्रौपदी मुर्मू जी के बैतूल प्रवास पर आधारित रेडियो रिपोर्ट और रात 8 बजे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष विरासत हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। शाम 7:20 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। इसमें आज मुख्य आकर्षण होगा जनोपयोगी चर्चाओं और लोकगीतों पर आधारित कम्पेयर्ड कार्यक्रम सुनो गीत गुनो बतकाओ। प्रस्तुति रविन्द्र कुमार प्रजापति की होगी। साथ ही सुनेंगे एक भेंट वार्ता हरी खाद का मृदा स्वास्थ्य पर प्रभाव और लाभ विषय पर। भूपेंद्र सिंह बैस से रविन्द्र कुमार प्रजापति बातचीत करेंगे और आज की सीख में सुनेंगे बिजली की चोरी रोकें। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए रात 8:35 पर। रात 9:30 पर सुनेंगे आकाशवाणी @90 और आकाशवाणी छतरपुर के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी छतरपुर से सेवानिवृत्त उद्घोषक श्रीहर्ष पांडे से रविन्द्र कुमार प्रजापति की बातचीत। ये तो थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। कल प्रातः 7:20 पर हिंदी महक में सुनिए नीतिराज सिंह से कहानी निर्मम वासना। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए सुबह 7:30 पर और रात 8:35 पर। सुबह 8:30 पर सुनेंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित जसराज से राग भटियार और श्रुति शिडोलीकर से राग विभाष में गायन। सुबह 9 बजे लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में कल कलाकार होंगे सहोदरा राठौर। 9:30 पर सुनिए कुछ फिल्मी कव्वालियां। 9:45 पर सुनेंगे गांधी चर्चा का 7वां भाग। प्रवक्ता और प्रवचनकर्ता होंगे महेश शर्मा। जिले की चिट्ठी सुबह 10 बजे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित की जाएगी। 10:05 पर सुनेंगे कुछ गैर फिल्मी भजन। 10:15 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर ओंकारेश्वर जिला खंडवा में आयोजित कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के संबोधन का सीधा प्रसारण। आकाशवाणी मध्यप्रदेश के अंतर्गत आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कल हम प्रसारित करेंगे 11 बजे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनेंगे दोपहर 12 बजे और 2:30 पर। कार्यक्रम संग्रहालय से 12:30 पर। तीनों कार्यक्रमों की प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की होगी। दोपहर 1 बजे महिला सभा में कल सुनेंगे वार्ता संस्कार निर्माण में मां की भूमिका। वार्ताकार होंगी सुप्रिया अवस्थी। साथ ही होगी कुछ उपयोगी जानकारी। कार्यक्रम की प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की होगी। 1:30 पर लोक संगीत में सुनेंगे नशा निषेध पर कुछ लोकगीत। प्रस्तुति रविन्द्र कुमार प्रजापति की होगी और 1:45 पर होगा सुगम संगीत। इसमें कलाकार होंगे दामोदर विनीत। इन दोनों कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी आकाशवाणी छतरपुर की होगी। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए दोपहर 2 बजे। शाम 5 बजे आकाशवाणी मध्यप्रदेश से युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की होगी। 5:30 पर लोक संगीत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। कलाकार होंगे शंकरलाल प्रजापति। शाम 6 बजे सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। शाम 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में कल कलाकार होंगी संध्या खरे। शाम 7:20 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। इसमें कल सुनेंगे मानस प्रवचन। प्रवचनकर्ता होंगे सतीश कुमार पांडे। साथ ही सुनेंगे भेंटवार्ता मानव स्वास्थ्य में अलसी के लाभ। विषय विशेषज्ञ रीनू पटेल से बातचीत करेंगे रविन्द्र कुमार प्रजापति और सुनेंगे आज की सीख में जैसे जैसो बहे बाओ ऊंसई तरो धरो तिबाओ। कल रात 8 बजे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा। विषय होगा पर्यावरण। रात 9:30 पर आपके लिए लेकर आएंगे कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि होंगे गोपाल दास गुप्ता, प्रभा निगम और रीता गुप्ता। और रात 10 बजे लीजिए आनंद नाटक सरहद का बेटा का। और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनेंगे श्रुति शिडोलीकर से राग माहू बिहाग में और पंडित राजन साजन मिश्रा से राग जय जयवंती में गायन। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है।
1: बैतूल में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित जनजाति सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए देश का कोई भी समुदाय विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहना चाहिए। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा की तैयारियों

0: आकलन करने के लिए हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की। श्री प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और क्षमता के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देशभर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है और हॉकी में भारतीय महिला टीम ने न्यूजीलैंड में जारी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
0: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
1: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
0: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
0: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
0: ग्वालियर सुरेश खुराना पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
1: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
0: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोता, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओ, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र के रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है, यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून है, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओ, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का

0: हरा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, तो आपको बता देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओ, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओ, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओ, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्योहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्योहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओ, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओ हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओ आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है।

शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं।

आज कुछ कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम

0: कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। ना जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
1: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
0: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है।

0: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो?
1: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
0: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहां ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
2: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
1: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
0: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो हा? तुम मुझे नहीं जानती हो?
1: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो
0: हा?
1: मैं तुम्हें नहीं जानती।
0: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
1: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है। तब मुझे जाने दीजिए।
0: चिड़िया तो मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ।
1: तुम सेठ हो,

0: मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा मालामाल होना चाहिए?
1: अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना, उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तो उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
0: वो सोना क्या चीज होती है?
1: तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया? तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
0: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं। पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
1: ठहर ठहर ठहर। इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं। ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह।
0: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती। इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है, और मैं राह भूल जाऊंगी।
1: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।

0: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
1: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना।
0: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
1: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
2: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
1: हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
2: सेठ मुझे देर हो रही है।
1: देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
2: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
3: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
4: जी मालिक।
0: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
1: हाथ से निकल गई।
0: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।
2: माँ
0: ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा,
5: क्या है बच्ची? क्या हुआ बेटा, बता बेटा।
0: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही।
5: बड़ी
0: देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और लीजिए प्रस्तुत है माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बैतूल प्रवास पर आयोजित कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी बैतूल का योगदान है और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित किया जा रहा है।

0: श्रोताओं, आज बैतूल नगर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में जिला प्रशासन और ब्रह्मा कुमारी के संयुक्त प्रयासों से आध्यात्मिक जागृति से आदिवासी समाज का सशक्तिकरण इस विषय पर महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके, जिले के प्रभारी मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल तथा विधायक बैतूल श्री हेमंत खंडेलवाल प्रमुख रूप से उपस्थित थे। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की हेलीपैड पर अगवानी की। तत्पश्चात कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति का काफिला समारोह स्थल पर पहुंचा। आयोजन स्थल पर श्वेत भव्य वर्षारोधी मजबूत पंडाल लगाया गया था, जिसमें लगभग 4000 लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था की गई थी। सभी के प्रवेश हेतु अलग अलग प्रवेश द्वार निर्धारित किए गए थे। सुरक्षा कर्मी सघन जाँच और एंट्री पास देखकर ही लोगों का प्रवेश सुनिश्चित कर रहे थे। मंच पर विशेष अतिथियों के बैठने की सुरुचिपूर्ण व्यवस्था की गई थी। यहां पहुंचकर महामहिम द्वारा कार्यक्रम स्थल पर वृक्षारोपण एवं ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ सदस्यों के साथ फोटो सत्र भी पूरा किया गया। कार्यक्रम में आध्यात्मिक जागृति के साथ साथ स्थानीय संस्कृति और विकास की झलक भी देखने को मिली। यहां बैतूल की अनूठी स्थानीय कला, हस्तशिल्प और जनजातीय विरासत को प्रदर्शित करती हुई विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। साथ ही वन विभाग द्वारा भी पर्यावरण संरक्षण, वनोपज और जनजातीय समाज के आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़े कार्यों को जीवंत रूप से दिखाया गया था। कार्यक्रम का आरंभ राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान के गायन से हुआ। फिर मंच पर विधिवत दीप प्रज्वलन किया गया तथा मंच पर उपस्थित सदस्यों द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी का शॉल और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। इसके बाद पीके मंजू दीदी, संचालक बैतूल मध्य प्रदेश, द्वारा स्वागत उद्बोधन दिया गया।
1: आज हम सभी के लिए, विशेष बैतूल वासियों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, बहुत खुशियों का दिन है। मैं बताना चाहती हूँ, आज से 2 साल पहले मैंने एक छोटा सा सपना देखा था। सपना तो बहुत बड़ा था, दिल और दिमाग की जंग शुरू हो गई थी। दिमाग ने कहा था असंभव, लेकिन दिल ने कहा था संभव। और इतनी इन खुली आंखों से मैंने जो सपना देखा था, आज वो सपना हम सबके सामने साकार हो रहा है।
0: इसके बाद प्रस्तुत स्वागत नृत्य ने सभी का मन मोह लिया।

0: कहती है।
1: इस अवसर पर जोनल संचालक मध्य प्रदेश बी के शैलजा दीदी ने कहा,
2: आज हम सभी बहुत सुंदर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण। आदिवासी समाज सदैव से ही प्रकृति का रक्षक रहा है। आप में एकता और सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। आपकी जड़ी बूटियां जीवन दान देने वाली हैं। जड़ी में दवा और श्रद्धा में दुआ, ये कहावत भारतीय संस्कृति की आस्था और ईश्वर में विश्वास का परिचायक है। हमारे आदिवासी भाई बहनों की ये परंपरा कि हर शुभ अवसर पर नीम, महुआ, पीपल, बरगद जैसे

0: वृक्षों को रोपने की, इन्होंने ही जंगलों को जीवित रखा हुआ है। जलाशयों को प्रदूषण से मुक्त रखना और उनके गहरीकरण के प्रति जागरूक रहना, ये आपका दिव्य कर्तव्य रहा है। ऐसे आदिवासी समाज के जागृति क्या केवल भौतिक विकास द्वारा संभव है, या इसके लिए आध्यात्मिक जागृति आवश्यक है? आध्यात्मिकता हमें स्वयं के अर्थात इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा के मूल गुणों से परिचित कराती है। मूल गुणों में शक्ति है।
1: कार्यक्रम में उपस्थित माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार श्री दुर्गादास विके ने अपने उद्बोधन में जनजातीय समुदाय हेतु सरकार द्वारा लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की।
2: आज बैतूल की पुण्य धरा पर हम सभी एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण के साक्षी बन रहे हैं। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं भाइयों बहनों, बल्कि आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक जागरण और जनजातीय अस्मिता के सम्मान का एक विराट महोत्सव है। सबसे पहले मैं अपने संसदीय क्षेत्र बैतूल की ओर से भारत की प्रथम जनजातीय महिला महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ओडिशा के एक छोटे से जनजाति गांव में जन्मी एक साधारण बालिका का भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचना केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की शक्ति, संविधान की महानता और सामाजिक समरसता की अद्भुत मिसाल है। महामहिम राष्ट्रपति जी, आपका जीवन संघर्ष, समर्पण और सेवा की अद्वितीय मिसाल है। आपने अपनी कर्मठता, धैर्य और सामाजिक उत्थान के प्रति अटूट संकल्प के बल पर न केवल उच्चतम संवैधानिक पद को सुशोभित किया है, बल्कि देश की हर बेटी, हर वंचित वर्ग और समाज के हर नागरिक के लिए आप प्रेरणा स्रोत है, आदर्श है। आपका जीवन यह दर्शाता है कि सच्ची लगन, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। आज जब आप बैतूल की इस जनजाति बहुल भूमि पर पधारी है, तब यहाँ का प्रत्येक जनजाति परिवार स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। महोदया, आपकी अंतर्वेदना और देश की जनजातियों के प्रति अथाह संवेदनाओं के फलस्वरूप धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनमन आदि कर्मयोगी, संसदीय संकुल विकास परियोजना, सिकल सेल एनीमिया, टीबी जैसी अनुवांशिक बीमारियों के प्रति ठोस कार्य योजनाएं बन सकी हैं।
1: मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने अपने संबोधन में कहा,
3: राजयोग और मेडिटेशन से जो शांति मिलती है वो अब मैंने खुद ने अनुभव किया है। मैं समझता हूँ यहाँ नीचे में सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी बहनें देखी, यहाँ भी बहुत से आदिवासी समाज के भाई बहन बैठे हैं। मैं सभी को आग्रह करूंगा कि जीवन में हमको शांति चाहिए, पहले पैसा की बात करो, मगर मन को शांति मिलेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। मन को शांति मिलेगी, धार्मिक भावना होगी तो हम नीति से चलेंगे और भगवान को भी वो पसंद है। इसलिए मैं समझता हूँ आदिवासी सशक्तिकरण में आध्यात्मिक का भी ध्यान होना चाहिए और ऐसी संस्था से जुड़कर हमको जो हमारे जीवन में प्रगति करना है वो अच्छी तरह कर सकेंगे।
1: राष्ट्रपति जी द्वारा कलश एवं ध्वज स्थापना द्वारा महासम्मेलन के शुभारंभ की घोषणा की गई।

0: आध्यात्मिक जागृति आदिवासी समाज के सशक्तिकरण का मूल आधार है। अपनी समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक जीवन शैली इन्हें अपनी अलग पहचान बनाने का एक अवसर देती है। इस बात को रेखांकित करते हुए महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा,
1: उपभोग की संस्कृति और संस्कृति पर आधारित आज की तेज भागती दुनिया में समाज के हर वर्ग की आध्यात्मिक सुचिता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।

0: जाती है। इसी के बल पर दीर्घकालीन रूप से समतापरक आचरण पद्धति और प्राकृतिक संपदाओं के प्रति संवेदनशीलता जीवन शैली विकसित की जा रही है। आज के तनाव और युद्धों से त्रस्त विश्व में इसकी आवश्यकता अतीत के किसी भी कालखंड की तुलना में और अधिक हो गई है। इसीलिए इस सम्मेलन तथा ऐसे प्रयासों का महत्व और भी बढ़ जाती है।
1: आध्यात्मिकता आदिवासियों की जीवन शैली में नैसर्गिक रूप से बसी है, इस बात पर बल देते हुए राष्ट्रपति महोदया ने कहा,
0: जनजातीय समुदाय की जीवन शैली सहज रूप से ही अध्यात्म की मूलभूत प्रेरणाओं के निकट होती है। हम जनजाति को आदिवासी कहते हैं, कोई कोई उनको वनवासी कहते हैं। ये आदिवासी है, आदिम और आदिवासी जो सृष्टि के आरंभ से ही ये धरा पे रहते हैं और उनके जीवन शैली ये केवल कोई वो आध्यात्मिकता ही भरा हुआ है और सुख शांति आनंद प्रेम में जीना जानते हैं, हिंसा से दूर रहते हैं। हम जानते हैं ये आदिम काल में जैसे थे आज भी ऐसे ही है, जैसे कि गीली मिट्टी उसको जैसे बनाओ ऐसे बनते हैं और प्रकृति के पूजा करते हैं, लेकिन केवल प्रकृति नहीं पंचतत्व को पूजा करते हैं। ये धरती, ये आकाश, वायु, जल, सूर्य, चंद्र इसको पूजा करते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन बनाने के, कोई मंदिर, कोई पूजाशाला बनाते नहीं।
1: राष्ट्रपति जी आगे कहते हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन प्रकृति को कोई क्षति नहीं पहुंचाते, यह उनकी सकारात्मक सोच को दर्शाता है।
0: धरती को क्षति पहुंचाते नहीं, जल को भी दूषित नहीं करते, तालाबों में नहाते, नदियों में नहाते, नदी में कोई कूड़ा फेंकता नहीं, तालाबों को कोई अपरिष्कार नहीं करते। धरती को जरूरत के मुताबिक कभी चोट पहुंचाते तो उसके पहले उसको नमन करते हैं, पेड़ पौधा पूजा करते हैं, वो सही है। आज तो गैस आ गया है, लेकिन एक दिन था पेड़ से ही हम खाना बनाते थे, लेकिन सूखे पेड़ को चुनते हैं। किसी भी कारण कोई पेड़ को चोट पहुंचाते कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो उसके पहले उनको नमन करते हैं, सूर्य को पूजा करते हैं। आप सोचिए सूर्य नहीं होता तो क्या होता, पेड़ पौधा नहीं होता तो ये जितने हवा परमपिता परमात्मा ने धरती पे दिए हैं वो खत्म हो जाता। आज पेड़ पौधा है इसीलिए वो रोटेट होता है। आज समुन्द्र नदी है इसीलिए बारिश हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए इसी दृष्टि से ये आध्यात्मिकता से आदिवासी समाज भरपूर है, फुट फुट का उनके मन में आध्यात्मिकता भरे हुए है। पेड़ पौधा में वो रहते हैं क्योंकि कभी कभी किसी आदिवासी उनको उनके वंशज, पेड़ पौधों के वंशज कहते हैं।
1: अपने उद्बोधन के अंत में बैतूल जिले और उनके निवासियों के स्वभावगत विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा,
0: मध्य प्रदेश का ये बैतूल जिला अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक विरासत के लिए पूरे देश में जाना जाता है। मुझे बताया गया है कि यहाँ के जनजातीय समुदाय ने अपने विशिष्ट परंपराओं, लोक ज्ञान और सांस्कृतिक मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रखे हैं। बैतूल की जनजातीय संस्कृति में सामूहिकता, सहयोग, सरलता, ईमानदारी और आध्यात्मिकता जैसे उच्च जीवन मूल्य सहज रूप से विद्यमान है। जब आध्यात्मिक और सेवा का संगम होता है तब समाज में स्थायी परिवर्तन आता है। मुझे विश्वास है कि ये महासम्मेलन सेवा और आध्यात्म के इस संगम की ओर लोगों को आकृष्ट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आइए हम सब मिलकर 2047 तक एक ऐसे विकसित भारत का निर्माण करें और अधिक से अधिक प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें जहां आध्यात्म, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण हमारी समावेश की विकास की आधारशिला बने। मैं एक बार फिर इस आयोजन के लिए अपनी हार्दिक बधाई दे

0: देती हूँ तथा सभी प्रतिभागियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: आज के कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगायन के सामूहिक गायन से संपन्न हुआ। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को हेलीपैड पर गरिमामयी विदाई दी गई। अन्य अतिथिगण भी अपने अपने गंतव्य स्थलों की ओर चल पड़े। श्रोताओं, ये थी महामहिम राष्ट्रपति के एक दिवसीय बैतूल प्रवास की रेडियो रिपोर्ट। वाचक योगेश्वर, संकलन प्रवीण चौरे, तकनीकी सहयोग कांता प्रसाद टिकारे और अशोक सोनारे, और प्रस्तुतकर्ता सचिन भागवत।

अभी आप सुन रहे थे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बैतूल प्रवास पर आयोजित कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी बैतूल का योगदान था और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित किया गया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

मेरे मुंह पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं ए.आर. रहमान की आवाज में ये गीत फिल्म दिल से। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत ए.आर. रहमान का है।

अभी आपने सुना ये गीत फिल्म थी दिल से। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं दिल चाहता है फिल्म का गीत सोनू निगम की आवाज में। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत शंकर एहसान लॉय का है।

सोनू निगम की आवाज में अभी हमने सुना ये गीत, फिल्म थी दिल चाहता है। और कार्यक्रम के आखिर में आइए अब सुनते हैं ये गीत जॉली मुखर्जी की आवाज में। गीत लिखा है संतोष आनंद ने और संगीत आनंद मिलिंद का है। फिल्म का नाम है संगीत।

अभी हमने सुना ये गीत फिल्म संगीत से। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है।

0: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करते हैं।
1: सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
4: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
5: PLI है ना?
6: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैतूल में आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस दौरे में AI, रेलवे और निर्माण क्षेत्र की शीर्ष कंपनियों के CEO से की मुलाकात। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में शासकीय कन्या विद्यालय की खगोलीय प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। IT पार्क 3 का भी लिया जायजा। और 20 जून को PM किसान उत्सव दिवस। 9.5 करोड़ किसानों को मिलेगी सम्मान निधि की 23वीं किस्त। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन इंदौर पहुंचने पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने बैतूल में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी द्वारा आयोजित आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए देश का कोई भी समुदाय विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहना चाहिए।
8: 2047 विकसित भारत बनाने के लिए हम सोचे हैं। पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, ये देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष का प्रत्येक अंग हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक अक्षत होना चाहिए, क्षति नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये भारत में रहने वाले जनता, कोई भी समाज पीछे ना रह जाए।
7: राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए ओंकारेश्वर क्षेत्र को 19 जून तक नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है और विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस दौरे के दौरान आज कई शीर्ष वैश्विक कंपनियों के CEO से मुलाकात की। उन्होंने मिस्ट्रल AI के CEO आर्थर मेंट्स से भारत के बढ़ते AI इकोसिस्टम पर, एलस्टॉम के CEO मार्टिन सीएन से रेलवे आधुनिकीकरण पर और सेंट गोबेन के चेयरमैन बेनोइट बाजिन से निर्माण सामग्री क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। तीनों कंपनियों ने भारत में और अधिक निवेश तथा विस्तार की इच्छा जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत पाटिल के एक लेख को साझा करते हुए कहा कि सरकार ने पेयजल, स्वच्छता, नदी संरक्षण, सिंचाई, भूजल पुनर्भरण और अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग जैसी चुनौतियों का समाधान समग्र दृष्टिकोण से किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया के एक लेख को साझा करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की परिवर्तन गाथा देश के युवाओं की भी गाथा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर प्रवास के दौरान स्कूल चले हम अभियान के तहत बड़ा गणपति स्थित शासकीय शारदा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया। उन्होंने विद्यालय में स्थापित अत्याधुनिक खगोलीय प्रयोगशाला का निरीक्षण किया, जहां छात्राओं ने दूरबीन, रॉकेट मॉडल और नक्षत्र ट्रैकिंग प्रणाली के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इंदौर में निर्माणाधीन IT पार्क 3 का निरीक्षण करते हुए कहा कि प्रदेश को देश का अग्रणी IT और सेवा क्षेत्र का केंद्र बनाना उनकी सरकार का संकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में आयोजित एक प्रेसवार्ता में बताया कि 20 जून को देशभर में PM किसान उत्सव दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे।
9: 20 जून PM किसान उत्सव दिवस, इस दिन 3:45 पर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे।

0: तक 22 किस्तों के माध्यम से 4,28,000 करोड़ रुपए लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खाते में अंतरित किए गए हैं और अभी 20 तारीख को फिर 18,800 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ हमारे देश भर के किसानों के खाते में ये निधि अंतरित करके दिया जाएगा।
1: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश के सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले 3 दिनों में

0: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार।
1: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF पर 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से EPFO के 7 करोड़ से अधिक अंशधारकों को लाभ मिलेगा और इस महीने के अंत तक खातों में ब्याज राशि जमा होने की संभावना है। प्रदेश का खेल एवं युवा कल्याण विभाग प्रदेश की उभरती खेल प्रतिभाओं को तलाशने के लिए टैलेंट सर्च महाअभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत 8 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के युवा खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार किया जाएगा। ऑनलाइन पंजीयन 17 जून से शुरू हो चुका है और चयन प्रक्रिया 27 जून से आरंभ होगी। इस अभियान में एथलेटिक्स, हॉकी, कुश्ती, बॉक्सिंग और तीरंदाजी समेत कुल 21 खेल विधाओं के ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान है। सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान में जागरूकता रैलियां, युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। ICC महिला T20 विश्व कप में आज इंग्लैंड में वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला होगा, जो भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल ग्रुप ए के मैच में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रनों से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 209 रन बनाए, जिसके जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 114 रन ही बना पाई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी ITI में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी विभाग के DSD पोर्टल पर 30 जून तक ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। सीहोर के बिल्किसगंज सांदीपनी विद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत पर विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें वितरित की गई। अशोकनगर जनपद पंचायत ईसागढ़ में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। गुना में पॉली हाउस एवं गुलाब की उन्नत खेती पर विशेष प्रशिक्षण कल आयोजित किया जाएगा। शाजापुर जिले के राजीव गांधी महाविद्यालय काला पीपल के सभागृह में आज सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक की कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। जबलपुर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के द्वारा आज राज्य स्तरीय पूर्व सैनिक रैली का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को नूतन खेल परिसर स्टेडियम मंदसौर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। धार जिले के बदनावर में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर का समापन हुआ और नीमच डाक संभाग के द्वारा 20 जून को डाकघरों में आधार एनरोलमेंट और अपडेशन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैतूल में आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस दौरे में AI, रेलवे और निर्माण क्षेत्र की शीर्ष कंपनियों के CEO से की मुलाकात। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में शासकीय कन्या विद्यालय की खगोलीय प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। IT Park 3 का भी लिया जायजा और 20 जून को PM किसान उत्सव दिवस। 9.5 करोड़ किसानों को मिलेगी सम्मान निधि की 23वीं किस्त। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 444.4 मीटर पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। ग्रामीण मित्रों के लिए पेश है कार्यक्रम ग्राम सभा।

0: ग्राम सभा कार्यक्रम सुनने वाले सबई पंचन खां उर्मिलाबेन की राम राम। देखो पंचों, आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, इसे बचपो बहुत जरूरी है। भीषण गर्मी और लू से बचबे के लाने जहां तक संभव हो दोपहर के 12 बजे से शाम के 4-5 बजे तक घर से बाहर ना निकले। यदि बहुत ही जरूरी हो तो घर से पर्याप्त मात्रा में पानी पी के निकले, गमछा बांध लें, सूती और हर पूरी बांह के कपड़ा पहने, पास में एक प्याज भी रख लें। धूप से आके तुरंत पानी ना पिए, तनक रुक के पानी पिए, भूखे पेट ना रहें, ज्यादा चाय कॉफी मसालेदार और तलो भाव खाना खाबे से बचे। मौसमी फल फलन को रस, नारियल पानी, नींबू, छाछ, सत्तू, बिरचून इत्यादि जन पारंपरिक खाद्य और पेय पदार्थ हैं, इनको उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। प्यास ना भी लगी हो तो भी हर घंटा में एक ग्लास पानी जरूर पिए। कैसे इन दिनन पसीना के माध्यम से शरीर को पानी और अन्य तत्व अधिक मात्रा में बाहर निकल जाते हैं। यही से शरीर में पानी को संतुलन बनाए रखने के लाने पानी को उपयोग ज्यादा करो चाहिए, ताकि पानी की कमी से बचो जा सके। खुले धूप में दोपहरी में मेहनत को काम करबे से बचो चाहिए। कैसे मेहनत में के काम में पसीना बहुत ज्यादा निकलत है और शरीर में पानी की कमी हो सकत है। इस तरह से यदि हम छोटी छोटी बातन को ध्यान रखें और उनका अमल मिल जाए तो मौसम को पूरा पूरा आनंद ले सकत है। और अब मिलत है एक अंतराल के बाद।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
3: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
4: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
0: बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जोन कानूनी रूप से प्रतिबंधित होबे के बावजूद लाखन युवा लड़का बिटेन का प्रभावित करत है। ई प्रथा के गंभीर परिणाम होते हैं, जिनमें शिक्षा में बाधा, कम उम्र में गर्भधारण के कारण स्वास्थ्य संबंधी जोखिम और व्यक्तिगत और आर्थिक विकास के सीमित अवसर शामिल हैं। बाल विवाह के प्रमुख कारण शिक्षा की कमी, लैंगिक असमानता, गरीबी और आर्थिक तंगी, सामाजिक परंपराएं, रूढ़िवादी सोच और जागरूकता की कमी है। कानूनन 18 साल से कम उम्र की बिटिया और 21 बरस से कम उम्र के लड़का को ब्याह बाल विवाह कहाउत है। बाल विवाह के कारण बच्चन की शिक्षा यानी पढ़ाई लिखाई रुक जाते हैं, स्वास्थ्य पे भी बुरो असर पड़त है और उनके भविष्य, उनको जो भविष्य है वो अंधकारमय हो जाते हैं। बाल विवाह का रोकबे के लाने शिक्षा को प्रचार प्रसार, मानसिकता में बदलाव जरूरी है। बाल विवाह का रोकबे के लाने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बनाओ गयो है, जिसके तहत बाल विवाह गैर कानूनी है और सजा को भी प्रावधान है। बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाएं और ईखा जड़ से खत्म करबे के लाने सामूहिक प्रयास करबो देखो जरूरी है। ईके संगे संगे जो भी सुनिश्चित करबो जरूरी है कि प्रत्येक बच्चा खा शिक्षा और सुरक्षित बचपन मिले। ईके अलावा प्रत्येक मताई बाप संकल्प करें, विचार करें कि जब तक लड़का बिटिया शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व ना हो जाए उन्हें विवाह जैसे बंधन में ना बांधे। और अब मिलते हैं अंतराल के बाद।

0: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
2: पंचो, अब कार्यक्रम का आगे बढ़ाव है, सुनते हैं जब भेंटवार्ता। हरी खाद का मृदा स्वास्थ्य पर प्रभाव और लाभ, ये पे जानकारी दे रहे हैं भूपेंद्र सिंह बैस और इनसे बातचीत करी है रविन्द्र कुमार प्रजापति ने, तो सुने।
3: हमारे किसान भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। आज की भेंटवार्ता में लेकर हम महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं, हरी खाद का मृदा स्वास्थ्य पर प्रभाव या लाभ। इस विषय से संबंधित जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में कृषि विशेषज्ञ पधारे हुए हैं भूपेंद्र सिंह वैस जी, जो महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में पीएचडी स्कॉलर हैं सॉयल साइंस डिपार्टमेंट में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में।
4: नमस्कार सर
3: जी। जैसा कि आज का हमारा विषय है हरी खाद का मृदा स्वास्थ्य पर प्रभाव, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हरी खाद आखिर किसको कहेंगे?
4: जब हरी खाद की बात करते हैं तो हरी खाद में बेसिकली हम यूज करते हैं जैसे जो दलहनी फसलें होती है, जैसे हमारी मूंग हो गया, उड़द हो गई, सनई, ढेंचा, लूसर्न जिसको बोल देते हैं, तो इन फसलों का उपयोग करके हम हरी इन्हें हम खेत में लगाते हैं और इनसे हम उसी खेत में डिकम्पोज करें, मतलब पलट दें, जुताई कर दें। जुताई करने के बाद वो हमारे जो लगभग 6 से 7 सप्ताह में तैयार हो जाती है
3: जी।
4: तो जिसे उसके बाद हम आगामी फसल की बुवाई कर लिया जाता है।
3: तो ये हरी खाद हमारे किसान भाई खुद तैयार कर सकते हैं?
4: बिल्कुल सर, ये हरी खाद हर एक किसान को अपने अपने घर पर तैयार करना चाहिए अपने खेतों में, ताकि हम आज जो यूरिया या डीएपी की क्राइसिस झेल रहे हैं उसे निजात पाया जा सके।
3: तो हरी खाद से हम क्या मिट्टी का कटाव भी रोक सकते हैं?
4: जी हाँ बिल्कुल सर, क्या होता है कि जब हरी खाद हम लगाते हैं खेतों में तो जो दलहनी फसलें होती है उनकी जो जड़ें होती है वो अधिक गहराई तक जाती है
3: जी।
4: गहराई तक जाने के साथ साथ क्या वो जो जड़ें हैं हमारी मिट्टी को बांध के रखती है
3: जी जी।
4: और दूसरी बात यह है कि जैसे जब वर्षा होती है, वर्षा की जब तेज बूंदें हमारी पृथ्वी भूमि सतह पर पड़ती है तो वो डायरेक्ट मृदा सतह पर ना पड़के उसकी फसल की पत्तियों पर पड़ती है, उसकी कैनोपी पर
3: जी जी।
4: जिसकी वजह से हमारी जो इंटेंसिटी होती है वर्षा की बूंदों की तो वो कम हो जाती है, और डायरेक्ट सतह पर संपर्क न होने से जो एरोजन की जो पहली स्टेप है या पहला स्तर है जैसे रेन स्पेस एरोजन, रेन ड्रॉप स्पेस एरोजन, वो कंट्रोल हो जाता है
3: जी जी जी।
4: दूसरी बात करें कि जब वर्षा होती है, वर्षा के द्वारा जब पानी अधिक मात्रा में हो जाता है तो उसे रनाव बनता है
3: जी जी,
4: सतही बहाव बढ़ जाता है
3: जी जी।
4: सतही बहाव बढ़ने से जो मृदा में जो सतही बहाव जब बढ़ता है तो ढलान की ओर उसकी तीव्रता ज्यादा हो जाती है
3: जी जी जी।
4: तो तीव्रता ना हो, तीव्रता को उस जो हमारी फसलें हैं उस तीव्रता को कम करने के लिए अवरोध का काम करती है
3: जी जी।
4: तो ये अवरोध बन करके ये रन आपको जो बहने की तरह पानी के उसको कम कर देती है, जिससे मृदा कटाव नियंत्रित किया जा सकता है।
3: जैसे हमारे किसान भाई सोच रहे होंगे कि हम भी अपने घर पर या स्वयं से हरी खाद बनाएं, तो हरी खाद किस तरह से हमारे किसान भाई बनाएंगे और कौन कौन सी मुख्य फसलें इसमें शामिल होती हैं, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बता दीजिए।
4: जी बिल्कुल सर, जैसे हरी खाद करने बनाना है हमें किसान भाइयों को अपने खेत में, तो उसके लिए उसका कुछ समय, जैसे कि अब ये बरसात का समय स्टार्ट होने वाला हो तो उसकी कुछ फसलों के बाद जैसे हम अप्रैल मई में कर देते हैं
3: जी।
4: तो अप्रैल मई में कर दें तो अप्रैल मई में करने के दौरान वो लगभग 40 से 45 दिन में फसल एकदम तैयार हो जाती है जो पलटने लायक होती है
3: जी।
4: खेत में यानी कि कहें कि हमारी जो फ्लावरिंग अवस्था, फूल आने वाली अवस्था होती है उसके उसी समय हम पलट देते हैं खेतों में। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उस समय जो उसकी वनस्पतिक वृद्धि होती है पौधों की वो पूरी हो चुकी होती है, अब वो पुष्पन अवस्था में चली जाती है
3: जी।
4: तो उसमें पोषक तत्व अत्यधिक मात्रा में होते हैं, होने की वजह से किसान को उस समय यदि पलटा जाए तो पोषक तत्वों की आपूर्ति अधिक मात्रा में की जा सकती है
3: जी जी जी। तो जब आपने बताया कि कुछ फसलें हैं जिनको मिट्टी में मिलाया जाता है तो हमारी हरी खाद बनती है, तो हरी खाद वाली जो फसलें हैं वो मृदा में कम मिलाना चाहिए?
4: सर जैसे बात किया हमने, जैसे हमारे पास मूंग है, उड़द है, लूसर्न है या बरसीम है या सनहेम या दूसरी बात एक रिजका हो गई, इनको क्या करेंगे हम जब खाली हरी खाद के रूप में फसलों मिट्टी में मिलाएंगे तो इनका जो डिकम्पोज मतलब विघटन की दर होती है हर फसल की अलग अलग होती है, जो कुछ प्राकृतिक कंडीशंस पर निर्भर करती हैं, जैसे कि ताप कैसा है उस दौरान या नमी

0: की स्थिति क्या है उस दौरान, तो यदि मतलब यदि उपयुक्त दशा है तो उपयुक्त दशा में ये लगभग 6 से 9 सप्ताह के भीतर पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाती हैं, जो आगामी फसल को बोने के योग मतलब वो भूमि हमारी आगामी फसल बोने के योग हो जाती है।
1: उस समय पर
0: हम जो हम आगामी फसल लगाते हैं तो हमें जो खाद की आपूर्ति करनी है वो खाद की आपूर्ति इसके द्वारा कर दी जाती है, ताकि हमको अलग से कुछ जो उर्वरक देने की संस्तुत की जाती है वो कम कम हो जाती है। इस तरीके से किसान अपने अपनी जो आय है, आय को जो लागत लग रही है उसको कम करके अपनी आय को भी बढ़ा सकता है।
1: हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है खरपतवार का, तो क्या हरी खाद के उपयोग से खरपतवार को नियंत्रण किया जा सकता है?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें होता यह है, जैसे हरी खाद जब हम लगाते हैं फसलों में खेत में, तो हरी खाद जब जैसे पानी मिला उसमें, तो हमारे जो खरपतवार के बीज होते हैं
1: जी
0: उस दौरान, तो उनको वो भी अंकुरण करते हैं। लेकिन होता यह है, जब खरपतवार हम हरी खाद वाली फसल लगाते हैं तो उस दौरान ये खरपत जैसे लगाए, तो ये फसलें ऐसी होती है इनके जो अंकुरण बहुत शीघ्र कम समय में होता है।
1: जी जी जी।
0: तो कम समय के होने होने होने की वजह से जो हमारी फसलें हैं वो बड़ी हो जाती हैं और उसको पूरा सतह को कवर कर लेती है।
1: जी जी जी।
0: तो जिससे जो सूर्य का प्रकाश है, यानी कि एक तरीके से कहें जो सूर्य का प्रकाश मिट्टी पर आता है वो कैनोपी से होकर आता है, जिससे उसकी जो इंटेंसिटी होती है लाइट इंटेंसिटी वो कम हो जाती है।
1: जी।
0: कम होने की वजह से ये जो खरपतवार के बीज हैं उनका अंकुरण नहीं हो पाता।
1: जी जी जी।
0: तो इस प्रकार से हम खरपतवारों का भी नियंत्रण कर सकते हैं।
1: हम गोबर खाद की भी बात करते हैं और यहाँ हरी खाद की भी बात हो रही है, तो दोनों किस तरह से अपने आप में अलग हैं?
0: एक तरीके से कहें जो हरी खाद है, हरी खाद हम वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं।
1: जी जी।
0: और गोबर की खाद जो है, गोबर की खाद को प्राप्त करने के लिए हम इन जो फसलें हैं इनका उपयोग हम चारे के रूप में करें, तो जैसे मवेशियों को चारा भी मिल जाता है, और चारा को जब मवेशी खाएगा तो उसका जो अपशिष्ट पदार्थ या दग्ध पदार्थ होगा, जैसे मलमूत्र हो गया, गोबर हो गया, इसका बिछावन हो गया, इसको हम एक जगह कलेक्ट करके इकट्ठा करते जाते हैं और ढेर बना लेते हैं। तो वो जब लगभग चार से पाँच महीने में सड़कर पूरी तरह तैयार हो जाता है, तो वो उसमें नमी की जो परसेंटेज होता है वो लगभग 60 से 70%, और साथ ही साथ उसमें ताप भी पर्याप्त मात्रा में रहता है।
1: जी जी जी।
0: तो वो जब जैसे जैसे हम उसको निकालते जाते हैं, उसकी गहराई पे जाते हैं, तो उसका ताप जब जाता रहता है तो उस समय हम कुछ समय तक हम खेत में डालने से बचते हैं। जैसे
1: जी,
0: उसका
1: जी।
0: ताप कम हो जाता है तब तो खेत में डालने के हम रिकमेंड करते मतलब संस्तुत करते हैं।
1: जी जी। हमारे किसान भाई रासायनिक खादों का उपयोग कम करें और हरी खाद का उपयोग ज्यादा करें, तो इसके लिए आप क्या तर्क उन्हें देना चाहेंगे कि वो क्यों हरी खाद का ज्यादा उपयोग करें? क्योंकि हमारे किसान भाइयों का जो उद्देश्य है वो है उत्पादन, तो उत्पादन पे क्या फर्क पड़ता है?
0: जी, बिल्कुल। जैसे जो रासायनिक खाद है, रासायनिक खाद की जो बढ़ती मांग है, रासायनिक खाद में एक तरीके से कहे किसान की उसकी किसान उस तरफ ज्यादा माइग्रेटेड होने का रीजन यह है कि उसको सरलता से बाजार में उपलब्ध हो जाती है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता, बस पैसा दिया, बोरी लिया और लेके चलाया और किसान खेत में अपने डाल दिया। तो लेकिन दिन प्रतिदिन एक तो ये इसकी महंगाई बढ़ रही है खादों की, और उसके लिए जो अपनी भारत सरकार है ये कृषि उर्वरक मंत्रालय है, इसको अधिक अत्यधिक मात्रा में सब्सिडी देने की जरूरत पड़ती है, जो हमारे हमारे भारत सरकार के ऊपर एक आर्थिक बोझ लाता जा रहा है समय के साथ साथ। और हर समय पर देखा जाता है कि जैसे ही पीक पीरियड होता है फर्टिलाइजर मतलब यूरिया डीएपी डालने की, तो उस समय हमारे पास इनकी उपलब्धता भी कम हो जाती है और बाजार में अनुपने दामों में बेचा जाता है।
1: जी।
0: इसको डालने से ये तो होता है कि जैसे हमने डाला तो हमें हमारी फसल दिखने में तो बड़ी अच्छी हो जाती है, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है, जैसे कि हमने यूरिया डाला, तो यूरिया जब हमने खेत में डाला तो यूरिया एक हफ्ते में फसल को मिल जाती है, जितनी हमने यूरिया डाली उसका केवल 30% पौधा ले पाता है, बाकी पूरा का पूरा लीचिंग के द्वारा जैसे वो हमारे जल स्रोत तक पहुंच जाता है।
1: जी जी जी जी।
0: जो एक तरीके से हमारे सोयल को भी प्रदूषित कर रहा है, हमारे पानी को भी प्रदूषित कर रहा है और हमारी क्या कहते हैं वायु को भी प्रदूषित कर रहा है।
1: जी जी।
0: वहीं जब हम हरी खाद या गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं, तो हरी खाद मवेशी जब हम एक हरी खाद का जैसे प्रयोग करें, हरी खाद में हम लेते क्या, हम फसलों को लेते हैं, उसमें हमें फसलें हैं उस जो बीज हैं फसलों के वो किसान को अपने घर में उपलब्ध हो जाता है, उसको मार्केट से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे उसका वो पैसा बचता है, ट्रांसपोर्टेशन बचता है, साथ ही साथ किसान जब घर में उसके पास पानी की व्यवस्था घर में है, तो जब खेत में तैयार होने के बाद उसको वहीं पलट दे तो उससे खाद भी मिल गई, उसमें मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ भी मिल गया।

0: से एक तो हमारी मृदा अच्छी हो गई, मृदा स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ा, साथ ही साथ हमारे जो नमी की देखते हैं, जैसे तेज धूप हुई, तेज धूप में नमी जल्दी मृदा सतह से बाहर निकल जाती है वाष्प के
1: जी
0: रूप में,
1: जी
0: उससे भी बचाव हो जाता है, मृदा कटाव भी बचता है, जिससे हमारा जो उर्वर जो मृदाएं होती है उसके क्षरण बच जाता, क्षरण से बचाव हो जाता है, जिससे हमारी मृदा उर्वरता बनी बनी रहती है। तो हम किसान भाइयों को एक यही सलाह देंगे, सुझाव मतलब हमारा रहेगा कि किसान भाई जो हैं यूरिया डीएपी की बजाय अपने घरों में तैयार खादों का उपयोग करें, ताकि वो इकोनॉमिकली भी बेने उनको लाभ मिले और साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े।
1: हरी खाद के उपयोग से क्या जो मृदा की जल धारण क्षमता है क्या वो बढ़ती है?
0: जी बिल्कुल, हरी खाद जब हम खेत में डालते हैं तो हरी खाद जैसे खेत में गई तो उसमें हरी खाद में क्या है, अधिक अधिक मात्रा में पानी,
1: जी
0: पानी के
1: हाँ
0: साथ साथ उसमें कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं।
1: जी हाँ
0: जब कार्बन जब ये क्या कहते हैं हरी खाद की पत्तियां टहनियां उसकी जड़ें जब सड़ा तो उसमें उसको डिकम्पोज करने के लिए उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल
0: सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ी तो ये जब इनको इनका जब डिकम्पोजिशन हुआ, इनका सड़न हुआ, जब विघटन हुआ, तो ये टूट करके मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ा देते हैं,
1: जी
0: जिससे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जब बढ़ी तो मृदा का की संरचना, मृदा का कलर, मृदा में ताप एरेशन, मृदा का ताप सहन करने की जो क्षमता है वो सब इम्प्रूव हो जाती है।
1: जी हाँ जी हाँ
0: जैसे यदि हम बात करें सोयल मृदा कलर पर, तो जैसे कार्बनिक पदार्थ बढ़ता गया मिट्टी में तो वैसे वैसे मृदा की जो रंग है रंग बदलना शुरू हो जाता है। मिट्टी का रंग जैसे सामान्यतः हम बात करें कि कोई दोमट मिट्टी है जनरली, जैसे लेटराइट मिट्टी और सॉरी लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी जो है तो वो लाल लाल रेड कलर की होगी, तो ऐसे इस तरीके की जो काली मिट्टी है काले कलर की होगी, ऐसे मिट्टी है जैसे जिसमें हम कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती जाएगी उसमें उसका कलर अपने आप जैसे जैसे जैसे मतलब कालापन हो बढ़ता जाएगा उसमें। काली मिट्टी जैसे बढ़ा तो इसका मतलब हम ये कार्बनिक पदार्थ जैसे बढ़ा इसका मतलब ये हुआ कि उसमें हमारे जो मिट्टी का कलर है वो लगभग ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का हो जाता है।
1: जी। हरी खाद का उपयोग हमारे किसान भाई ज्यादा से ज्यादा करें, इसके लिए शासकीय प्रयास भी किए जा रहे हैं, तो कोई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं क्या?
0: जी हाँ सर, इसके लिए किसानों को समय समय पर कृषि विस्तार अधिकारी या जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उसके कृषि कृषि से संबंधित जुड़े कार्यों में लगे हुए हैं,
1: जी
0: उन्होंने समय समय पर कई स्कीम चला करके किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से वो समय समय पर किसानों को बीज मुहैया कराते हैं
1: जी
0: और उनको और साथ ही साथ ये जैसे जिसके पास पानी की व्यवस्था ना हो तो उसके नियर आस पास यदि कोई ट्यूबवेल वगैरह हो वहाँ से पानी की व्यवस्था का जो खर्च है वो उनके द्वारा वहन किया जाता है।
1: जी जी अंत में हमारे किसान भाइयों के लिए आज के विषय को लेकर हरी खाद का मृदा स्वास्थ्य पर प्रभाव और लाभ क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: जी बिल्कुल सर, जैसे हरी हरी खाद का जब लाभ की हम बात करें तो लाभ में यही है कि हमें जो आर्थिक लाभ पहुंच रहा है, आज आज के परिवेश आज की जो दुनिया है वो केवल पैसे के लिए भाग रही है, तो जब हम रासायनिक खाद लेने जा रहे हैं तो वहाँ हमको अधिक मात्रा में पैसा देने की जरूरत पड़ती है,
1: जी हाँ
0: और जब मार्केट में शॉर्टेज रहता है, कमी रहती है उसकी, तो व्यापारियों के द्वारा उसके अने पौने दाम वसूले जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो जिससे किसानों को एक तो सही समय पर उर्वरक की आपूर्ति नहीं कर पाता और साथ ही साथ उसमें लागत भी ज्यादा लगती है। तो हरी खाद या गोबर की खाद जब किसान अपने घर पे तैयार हो जाता है जो उसको आसानी से मिल जा रहा है, क्योंकि यदि खेती करना है तो खेती खेती में पशुपालन एक पशुपालन निहित है,
1: जी हाँ
0: तो यदि एक किसान आप खेती कर रहा है तो उसमें यदि उसके साथ पशुपालन कर रहा है तो पशुपालन से उसको एक तो दूध मिल रहा है, साथ ही साथ उसके क्या कहते हैं गोबर या आपके पास जो उसका मलमूत्र है उसको जो अपने खेत में डालेंगे तो खेत में डालने से हमारी जो मृदा है मृदा स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव, जैसे कि हमारी मृदा संरचना में सुधार हो जाता है,
1: जी हाँ
0: हमारी क्या ताप जो जैसे गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो उसमें ताप ज्यादा होने की वजह से हमारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी जो क्रियाशीलता होती है वो कम हो जाती है, फिर उसके साथ यदि क्रियाशीलता कम हो गई तो यानी उसमें माइक्रोब्स की संख्या भी कम हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि
1: जी
0: जब उनका रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा ताप ज्यादा होने की वजह से तो उनकी जब संख्या कम आबादी कम हो जाएगी या पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो उनकी जो दूसरे पदार्थ जैसे हमने डाला उसको विघटन करने की क्षमता धीरे धीरे अपने आप कम होने लगती है,
1: बिल्कुल।
0: जो जो हमारे मृदा को पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
1: हमारे बीच में थे महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सोयल साइंस डिपार्टमेंट से पधारे हुए पीएचडी स्कॉलर भूपेंद्र सिंह बैस जी, जो हमें जानकारी दे रहे थे हरी खाद का मृदा स्वास्थ्य पर प्रभाव और लाभ। आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हरी खाद से संबंधित। हमारे किसान भाई आपकी बताई हुई बातों को जरूर ध्यान देंगे, जरूर हरी खाद को बनाएंगे, उपयोग करेंगे। आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।

पंचम, अबे अपुन ने सुनी जो भेंटवार्ता, आशा है अपुन इसे लाभ जरूर ले हो। और अब शुरू करते हैं कार्यक्रम सुनो गीत गुनो बत का। पंचम, पर्यावरण का हरो भरो रखबे, प्रदूषण का कम करबे और परिस्थिति की तंत्र में संतुलन बनाए रखबे के लाने वृक्षारोपण यानी पौधा लगाबो बहुत जरूरी है। कैसे पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस का सोख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावन का कम करत है। पेड़ मिट्टी के कटाव का रोकत है। भूमि की उर्वरता और जल स्तर का बढ़ाउत है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पक्षियों का प्राकृतिक आवास यानी रहबे की जगह देते है। वृक्षारोपण के लाने मानसून को मौसम यानी जुलाई से सितम्बर तक को महीना सबसे अच्छे माने जाते हैं। कैसे ई मौसम में प्राकृतिक नमी पौधन का मिलत है। पेड़न से हमें जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी, फल फूल और औषधियां भी मिलती हैं। देखो शकुंतला शुक्ला और लक्ष्मी त्रिपाठी लोकगीत के माध्यम से बता रही हैं कि वन लगाओ और अपना भविष्य सुरक्षित करो।

पंचो, मनुष्य, पशु पक्षी और पौधा सहित सभी जीवित जन प्राणी हैं, उन्हें जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी को उपयोग पीबे, खाना बनाबे, नहाबे, सफाई करबे और खेती के लाने करो जाते हैं। इके अलावा कारखानन में विभिन्न उत्पाद बनाबे के लाने पानी की जरूरत होते हैं। कहबे को मतलब है कि पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकत। साफ और स्वच्छ पानी वो है जो पीबे, भोजन तैयार करबे के लाने सुरक्षित है। जीखा हम पीबे को पानी या मीठो पानी के रूप में भी जानत है। साफ और स्वच्छ पानी को सेवन करबे से कोनो नुकसान नहीं होते। साफ और स्वच्छ पेयजल की कमी से मनुष्य में कई बीमारियां जैसे हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। इन सभी बीमारियों को मुख्य कारण दूषित जल है। साफ और स्वच्छ पानी शरीर का संतुलित, केंद्रित और स्वस्थ रखने में मदद करत है। पोषक तत्व का और ऑक्सीजन का हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाबे में सहायक होते। विषाक्त पदार्थन का बाहर निकारत है। जोड़न का चिकनाई प्रदान करत है। शरीर के सभी अंगन का सुचारू रूप से संचालन में मदद करत है। पृथ्वी के सभी जीवन के लाने पानी एक महत्वपूर्ण देखो संपदा है। पृथ्वी की सतह को अधिकांश भाग जल से ढको भाव है। अकेले इनमें से केवल 2% ही मीठो जल है। औद्योगिकरण और जागरूकता की कमी के कारण जल की भारी बर्बादी और प्रदूषण भाव है। यही से हमारे अस्तित्व और आबे वाली पीढ़ी के लाने जल संरक्षण देखो बहुत ही जरूरी है। जल संरक्षण को अर्थ है पानी की बर्बादी रोकबो। वर्षा जल को संचय करबे के लाने रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक और पुनः उपयोग की तकनीक अपनावो बहुत जरूरी है ताकि जल संकट से बचो जा सके। रहीमदास जी ने भी कही है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। और देखो आनंदी

पंचम, देखो ब्याह बरातन को मौसम फिर से आ गयो है। ब्याह की तैयारी में देखो मौसम के अनुसार सावधानी रखबो बहुत ही जरूरी है। जैसे आरामदायक और सुरक्षित माहौल मौसम के अनुसार बहुत चाहिए। गर्मियों में और मानसून के दिनन में विशेष रूप से व्यवस्था करो चाहिए ताकि फिजूल खर्ची और खाना की बर्बादी से बचो जा सके। गर्मियों में शादी ब्याह में खाना जल्दी खराब होते हैं, तो ध्यान रखें खाना मेहमान की संख्या के अनुसार बने ताकि ज्यादा ना बचे। खास करके मिठाइयाँ ऐसी बनाएं जो ज्यादा दिनों तक खराब ना हुए। यदि ब्याह समारोह खुले में है तो पंडाल या टेंट की व्यवस्था रखें ताकि तेज धूप बरसात की स्थिति में अफरा तफरी से बच सके। ज्यादा गर्मी से बचबे के लाने पंखा कूलर इत्यादि की व्यवस्था करें। धूप से बचबे के लाने समारोह या तो सवेरे जल्दी रखें या देर शाम का आयोजित करें। गर्मी में ठंडे पानी की व्यवस्था, नींबू पानी, मौसमी फल इत्यादि की व्यवस्था जरूर करें। तभी देखो विवाह को मजा आउत है, क्योंकि मेहमान तो देखो विवाह में मस्ती और मजा करबे के लाने आउत है। तो सुनते हैं जब विवाह को एक गीत रामकुमार प्रजापति और साथियों से।

पंचो, आज है 18 जून, रानी लक्ष्मीबाई को बलिदान दिवस हर बरस 18 जून का मनाया जाता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की ई वीरांगना ने 18 जून 1858 का ग्वालियर के पास अंग्रेजन से लड़त लड़त अपने प्राणन की आहुति दी और वीरगति का प्राप्त भई। भारतीय इतिहास के प्रेरणादायक और गौरवशाली अध्ययन में से एक है महारानी लक्ष्मीबाई को बलिदान दिवस। युद्ध के मैदान में लड़त भय रानी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। ब्रिटिश सैनिकन के हाथन में अपनो शरीर न सौंपने की इच्छा के कारण एक स्थानीय संत और कछु सहायकन ने फूलबाग ग्वालियर में उनको अंतिम संस्कार करो, जहां आज भी उनकी समाधि है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, उनको जो ऐतिहासिक कथन आज भी भारतीयन के दिलन में देशभक्ति की ज्वाला जगाउत है और भारतीय नारी शक्ति और स्वाभिमान को प्रतीक मानो जाते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस, शौर्य और उनके संघर्ष की प्रेरणादायक गाथा का याद रखबे के लाने 18 जून का महारानी लक्ष्मीबाई को बलिदान दिवस मनाओ जाते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता की कछु पंक्तियां इस प्रकार से हैं। बुंदे ले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।

और पंचो, अब बारी है आज की सीख की। आज की सीख में बिजली की चोरी रोके। पंचो, बिजली की चोरी रोक वो बिजली कंपनी और आम नागरिकन को कर्तव्य है। अकेले बिजली चोरी रोकबे में आम नागरिकन की भूमिका ज्यादा है। कैसे गावन में अक्सर देखो गो है कि कटिया डार के बिजली चोरी करी जाते है, जो गलत है और सुरक्षा की दृष्टि से भी हानिकारक है, विशेष रूप से बरसात के मौसम में। बिजली चोरी रोकबे के लाने सामूहिक प्रयास करे जा सकते हैं, जैसे स्मार्ट मीटर लगाएं, तारन की ऊंचाई ज्यादा रखें ताकि कटिया न डार पाए। आवरण वाली केबल को उपयोग करवे से कटिया डार के करी जावे वाली बिजली चोरी रोकी जा सकत है। आम नागरिकन को जो कर्तव्य है कि अपने आसपास या जानकारी में यदि कोनो बिजली चोरी कर रहो है तो उकी गुप्त सूचना ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से दर्ज करा सकत है। सामुदायिक जागरूकता अभियान चला के लोगन का बिजली चोरी से होबे वाले नुकसान और सुरक्षा खतरा और कानूनी परिणाम के बारे में जानकारी दे के भी बिजली चोरी रोकी जा सकत है। सघन जांच अभियान और औचक निरीक्षण के माध्यम से भी बिजली की चोरी पकड़ी जा सकत है और बिजली की चोरी करबे वालन के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करी जा सकत है। बिजली की चोरी रोकबे के लाने आधुनिक तकनीकन को उपयोग, जैसे ड्रोन कैमरा को उपयोग करके कटिया डार के बिजली की चोरी करबे वालन का पकड़ो जा सकत है। बिजली की चोरी करबे पे कानूनी रूप से भारी जुर्माने और जेल को प्रावधान है। इसे पंच ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, और बिजली चोरी हानिकारक है और विशेष रूप से बरसात के मौसम में, और बिजली चोरी करबो गलत है और कानूनन अपराध भी है। और अब चलत चलत बता दे कल के कार्यक्रम। कल पंच भैया सुने मानस प्रवचन, प्रवचन करता हुए सतीश कुमार पांडे, भेंटवार्ता हुई है मानव स्वास्थ्य में अलसी के लाभ, जानकारी दे हैं रीनू पटेल, इनसे भेंट करी है रविंद्र कुमार प्रजापति ने। सीख में जैसो बहे बाब उसई धरो तिबाब। और अब हो रही है कार्यक्रम को समय पूरा हो रहा है, तो अपनी बहन उर्मिला खां अनुमति दो। पंचो राम राम।

0: ग्रामीण साथियों के लिए अभी ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष विरासत, कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ये हो पाया है?
2: तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़, एसएआरडीपी नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहां तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं। उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
1: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में, पीएम डिवाइन। तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
2: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पस से पीएम डिवाइन को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद हम यहां पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली

0: मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकें।
1: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत में पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था। थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर जमीन पर उतरकर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
0: कई राज्यों में इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। बालेडुंगा में जो ये स्काई वॉक की आप जो बात कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहां मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो न केवल जो स्काईवॉक वहां पे तैयार हो रहा है पर जो ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहां पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काईवॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहां पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। 2 प्रोजेक्ट्स मेघालय में सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है, जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5-स्टार हो या 3-स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहां जो उसका इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहां पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पे सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
1: आपने जैसा कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा। कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं?
0: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, ना केवल भारत के लिए, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब जो यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वैरायटीज हैं, चाहे वो लेकाडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइनएप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो है इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
1: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बने, इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में और सरकार इसे कैसे देख रही है?
0: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी एमएसएमईज भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें. बहुत पोटेंशियल है ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री

0: इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, एमओयूज और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएं और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
1: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?
0: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है। और उस शांति का जो बेसिस है वो एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खासतौर पे लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुंचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं। और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहां पर शांति को बरकरार रखने के लिए और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की इन एग्रीमेंट्स के का एक मेजर आउटकम के तौर पर निकलेगा।
1: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का, वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिए से देख रही है?
0: तो इस सिग्नल का जो अर्थ है वो ये है कि इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम पैसिव डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन टू अ प्रोएक्टिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द ईस्ट, एंड हियर नॉर्थ ईस्ट इज लाइंग एट द हार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। And it means that by strengthening the physical connectivity, promoting cross-border trade, people-to-people links, and integrating the region into a regional value chain with the Southeast Asia. And I think all the state-specific initiatives actually take us to that particular paradigm. And it's also essential that this approach recognizes Northeast as both a national asset as well as a gateway to external markets. And it also helps us balance the strategic and development priorities.
1: So, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं?
0: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलोंग में। माननीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में हमें शामिल हुए थे। और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था। पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आई है। साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2047 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है। अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्सेज जो बनी है इनका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर, स्टीयरिंग ग्रुप्स के द्वारा होगा और जिससे हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है वो बहुत तेज है। हर स्टेट डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हासिल कर रहा है, हर स्टेट 5-5, 6-6 साल में अपने आप को डबल कर रहा है इकोनॉमिक साइज में। तो ये सब और आने वाले समय में आगे बढ़ सके और नॉर्थ ईस्ट का जो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल नेशनल जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में और आगे जा सके, इस सब का इसमें प्रयत्न पूरा शामिल है। तो आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा फोकस जो है इट विल रिमेन ऑन कॉन्वर्जेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ग्रीन डेवलपमेंट सो दैट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर इंटीग्रेटेड इन टू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी एंड वेन दे डू दैट they also retain their unique identity.
1: Thank you so much, sir.
0: Bahut bahut dhanyawad.
2: 12 साल विश्वास

0: समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष विरासत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं ये देशगान समूह स्वर में।

अभी हमने सुना समूह स्वर में ये देशगान। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। समाचार संध्या यानी हिंदी में समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक

0: में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
1: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
0: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology, and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंच ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान क्यूएस

0: विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉ आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉ मुरुगन ने कहा कि डॉ श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉ श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। मुंबई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at Viva Tech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparations for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. 4 Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow. Prime Minister Narendra Modi today projected India as a global hub of innovation.

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉकर टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन

मीडियम वेव 444.4 मीटर पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी एट 90 और आकाशवाणी छतरपुर के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी छतरपुर से सेवानिवृत्त उद्घोषक श्री हर्ष पांडे से रविन्द्र कुमार प्रजापति की बातचीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। हम बीच में लेकर आते हैं उन महान हस्तियों को, बड़ी हस्तियों को, जिन्होंने अपने क्षेत्र में बड़े बड़े काम किए हैं। और ऐसा ही हमारा आकाशवाणी का जो 90 वर्ष चल रहा है और आकाशवाणी छतरपुर का 50वां वर्ष चल रहा है, तो इस उपलक्ष्य में देखिए हम जो हमारे आगंतुक हैं उनको हम बुलाते हैं। और ऐसे ही देखिए कुछ दिनों पहले अपने पूर्व उद्घोषक राकेश खरे जी को देखिए

0: सुनाई था। ऐसे ही हमारे बीच में वरिष्ठ पूर्व उद्घोषक श्रीहर्ष पांडे जी हैं। तो देखिए, हम कहेंगे कि रेडियो केवल सूचना और मनोरंजन का देखिए माध्यम नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रोताओं की भावनाओं और यादों से जुड़ा एक सशक्त माध्यम है और ये सेतु रहा है हमेशा, क्योंकि संचार का माध्यम है। कहते हैं कि कुछ आवाजें समय के साथ पुरानी नहीं होती हैं, और ऐसे ही हमारे बीच में श्रीहर्ष पांडे जी हैं, जिनकी आवाज आज भी उतनी ही मधुर है जितना आप रेडियो के शुरुआती दिनों में सुना करते थे। तो हम उनका स्वागत करना चाहेंगे चंद्र लाइनों के साथ कि आवाजों का यह कारवां बरसों से चल रहा है, आवाजों का यह कारवां बरसों से चल रहा है, जन जन के मन तक संदेशों का दीप जल रहा है। सुर, संगीत, समाचार और संस्कृति की पहचान, आकाशवाणी रही सदा भारत की अमिट शान। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे आकाशवाणी छतरपुर के स्टूडियो में एक बार पुनः।
1: रविन्द्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अपनी इस कर्म भूमि जिसने हमें जीवन के सारे आनंद, सारे सुख, यश, सम्मान, पैसा सब कुछ दिया, उस कर्म भूमि को लाखों प्रणाम है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आकाशवाणी छतरपुर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज सालों बाद फिर वही स्टूडियो, वही आबो हवा, वही महक, वही खुशबू, वही ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है। वही माइक है, वही कंप्यूटर, वही सब कुछ।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और आप सब भी वही के वही, कोई बदलाव नहीं। और जीवन तब स्थिर माना जाता है जब हमारा बहाव समय के साथ चलता रहता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो रविंद्र जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आकाशवाणी छतरपुर और आप सबको, हम सबको भी, कि आकाशवाणी छतरपुर ने एक लंबा समय तय किया, 50 साल अपने पूरे करने जा रही है, और इस सब में हम सबकी भागीदारी रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो एक लंबे समय बाद, रिटायरमेंट के बाद आप आ रहे हैं आकाशवाणी और श्रोताओं से हमारे रूबरू हो रहे हैं, कैसा लग रहा है आज?
1: एक कहावत है, गूंगे का गुड़ ठीक है, वो उसकी मिठास नहीं बता सकता।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और वही मिठास मैं महसूस कर रहा हूँ, और उस खुशी का कोई पारावार नहीं है जो हम फिर से यहाँ स्टूडियो में माइक के सामने बैठे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। हमारे श्रोता आपको आवाज से देखे पहचानते ही हैं, कई बार उनके मन में जिज्ञासा होती होगी कि सर की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी जाने, कहाँ जन्म हुआ, कैसे क्या रुझान हुआ आकाशवाणी तरफ, तो इसके बारे में बताइए।
1: थोड़ी सी बात लंबी होगी
0: जी।
1: जन्म तो मेरा सागर में हुआ था।
0: हाँ।
1: और बचपन की पढ़ाई लगभग लगभग टीकमगढ़ में हुई, और कहानी वहां से शुरू होती है। हमारी जो माँ थी
0: जी,
1: उनको रेडियो का बड़ा शौक था।
0: अच्छा जी।
1: मेरी उम्र रही होगी 5 या 6 साल, टीकमगढ़ में हम लोग रहते थे। उस समय रेडियो बहुत बड़ी विलासिता की चीज थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और टीकमगढ़ में कोई दुकान भी नहीं थी जहां से आप खरीद सके।
0: हाँ।
1: तो हमारे पापा कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनके साथ में एक प्रोफेसर थे, वो मद्रास के रहने वाले थे, माने आज के चेन्नई के
0: जी।
1: तो मम्मी ने उनसे वहां मद्रास से एक रेडियो मंगवाया
0: जी,
1: बड़ा सा रेडियो वाल्पाला
0: जी, जी।
1: 5-6 साल के रहे होंगे हम।
0: हाँ।
1: तब से वो रेडियो हमने सुनना शुरू किया। और पहले तो छोटे थे तो ये लगता था कि रेडियो के अंदर बैठा कोई व्यक्ति बोल रहा है। धीरे धीरे फिर बेना का गीतमाला, उर्दू सर्विस
0: जी,
1: और सीलोन
0: जी,
1: श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के प्रोग्राम
0: जी, जी
1: वो सब सुनते सुनते मन में रेडियो के प्रति इतना लगाव पैदा हुआ कि पढ़ाई हो तो रेडियो बजना चाहिए
0: जी, जी।
1: और हमसे छोटे जो ब्रदर हैं उनको पढ़ाई में सन्नाटा चाहिए होता था।
0: हाँ।
1: तो हम लोगों की बचपन में खूब लड़ाई होती थी लेकिन वो पढ़ गए तो पढ़ाई के कारण IAS बन गए
0: जी।
1: हम रेडियो से जुड़े तो हम रेडियो में पहुंच गए
0: जी।
1: ये ईश्वर की बड़ी एक कृपा है
0: जी।
1: और फिर टीकमगढ़ में हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय जब 76 में आकाशवाणी छतरपुर का शुभारंभ होने से पहले यह ट्रायल प्रसारण होता था।
0: अच्छा जी।
1: वो 675 किलोहर्ट्ज पर नहीं था, वो किसी और फ्रिक्वेंसी पर होता था। तो हम लोग टीकमगढ़ में सुनते थे तो उसमें ये कहा जाता था आपको कैसा सुनाई दे रहा है इस सब के बारे में। फिर बाद में 7 अगस्त 1976 को आकाशवाणी छतरपुर का उद्घाटन हुआ
0: जी।
1: तब उस समय तो हम लोग यहाँ नहीं थे
0: नहीं।
1: लेकिन उसके बाद जब आए तब फिर यहाँ से कहानी हमारी आगा

0: मणि से जुड़ने की शुरू होती है।
1: जी जी जी जी
0: 79 की बात है।
1: हाँ।
0: जब हम लोग यहाँ आए उस समय रविन्द्र जी आप लोग बहुत छोटे हो गए।
1: बिल्कुल।
0: हर माह पहले सोमवार को युववाणी कार्यक्रम के कम्पेयर्स का स्वर परीक्षण हुआ करता था।
1: हर माह होता था।
0: हर माह के पहले सोमवार को।
1: अच्छा।
0: उसमें लोग आते थे, बच्चे आते थे और उनमें से किसी एक दो का सिलेक्शन हुआ
1: कर लेते
0: थे। हमारे एक मित्र थे तो उन्होंने कहा कि चले अपन भी दें।
1: अच्छा।
0: आए। उस समय यहाँ जो पदस्थ उद्घोषक थे
1: जी,
0: उनकी बहन उस ऑडिशन में आई हुई थी।
1: अच्छा।
0: तो हमने अपने मित्र से कहा कि ये आई हुई हैं, एक व्यक्ति का होता है इनका हो जाएगा और 6 माह तक आप दोबारा स्वर परीक्षण नहीं दे सकते,
1: अप्लाई नहीं करते। हाँ।
0: तो 6 माह अपन को बेकार हो जाएंगे। तो वो बोले नहीं, अब आ गए हैं तो देखे जाएंगे।
1: अच्छा।
0: रवि जी स्वर परीक्षण हुआ। और उस पूरे ग्रुप में अकेला मेरा सिलेक्शन हुआ।
1: क्या बात।
0: उस समय मेरे युवा मन में जो आकाशवाणी की पहली छवि बनी।
1: हाँ।
0: वो ये बनी कि यहाँ कोई भाई भतीजा बात
1: नहीं
0: चलता
1: है।
0: ठीक है। ये मेरे मन में सबसे पहली जो छवि बनी
1: जी।
0: उसके बाद यहाँ उस समय जो लोग थे, जो अधिकारी थे, उनको मैं पूरे जीवन भर नहीं भूलूंगा। वो वास्तव में रेडियो के लिए पैदा हुए और रेडियो के लिए उन्होंने काम किया। उनका जीवन यानी रेडियो। बहल साहब थे
1: जी। जी।
0: उनसे हमने सीखा। आप यकीन करेंगे रविंद्र जी कि वो ड्यूटी रूम में आते थे उस समय घड़ी में पूरे 10 बजते थे और शाम के जब वो जाते थे ये ड्यूटी रूम आते जाते समय फिर मिलते थे उस समय 5:01 होता था।
1: अच्छा।
0: और 5 बजे वो गेट के बाहर होते थे।
1: जी।
0: समय की पाबंदी हमने उनसे सीखी।
1: जी जी जी।
0: ठीक। तो फिर उसको हमने हमारे जीवन में उतर गई कि आज अगर आप हमें बुलाएं घर में या हम आपको बुलाएं कि 8 बजे आना है तो मैं कोशिश करूंगा कि 8 बजे आपके पास पहुंचूं। राजेंद्र प्रसाद जी स्टेशन डायरेक्टर थे
1: जी।
0: और उनका तो रेडियो के प्रति ऐसा था कि अगर उद्घोषक ने कोई गलती माइक पे कर दी तो
1: हाँ।
0: उनका फोन आता था कि उठा के बाहर फेंक दो। ये शब्द उनके हुआ करते थे।
1: जी।
0: धीरे धीरे युववाणी में सीखा ना उर्दू के शब्द आते थे ना यहाँ की कार्य पद्धति के बारे में मालूम था। लेकिन लोग जितने प्रसारण के लिए हम शब्द इस्तेमाल करेंगे क्रूर थे
1: जी।
0: उतने ही दयालु भी थे मन के।
1: जी हाँ, जी हाँ।
0: तो उन्होंने खूब हम लोगों को सिखाया और एक अच्छे माहौल में हम लोग एक अच्छे कंपेयर बने।
1: जी जी जी जी।
0: और अभी भी आकाशवाणी में ग्रेडिंग की प्रथा है।
1: ग्रेडिंग सिस्टम है।
0: ठीक है। प्रसारण का बी ग्रेड, बी प्लस इस तरीके का चलता है। उस समय भी था।
1: जी।
0: उस समय बी प्लस मिलना यानी ये समझे आप कि बहुत बड़ा पुरस्कार मिलने के बराबर था।
1: अच्छा।
0: हाँ। एक बार हम लोगों को वो रजिस्टर मिल गया तो देखा तो उसमें हमें एक साल में 12 बार बी प्लस मिले थे।
1: अच्छा।
0: हमसे कम मिले थे 4 बार जिस कंपेयर को और मिले थे
1: जी,
0: बाकी को किसी को नहीं मिले
1: थे।
0: तो फिर लगा कि नहीं, हम रेडियो में हमने कुछ सीखा है। रेडियो के लिए हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। बहल साहब युववाणी देखा करते थे
1: जी।
0: और स्क्रिप्ट हम लोगों को पूरी उनके सामने बैठ के दोहराना पड़ती थी, पढ़ना पड़ती थी। फरमाइश के जो नाम थे वो पढ़ते थे तो उन्हें याद हो जाता था कि इसमें इतने नाम शामिल हैं
1: जी।
0: अगर आपने एक भी नाम एक्स्ट्रा पढ़ दिया दूसरे दिन वो उनकी डांट सहना पड़ती थी। एक अच्छे माहौल में हम लोगों ने युववाणी में आए। बहुत विद्वान लोग थे
1: जी।
0: संगीत में इलाशंकर गुहा थे, आनंद वर्मा जी थे, किंजल के जी थे। तो इन लोगों से हम लोगों ने बहुत सीखा। एक बार किंजल के जी ने कहा कि हर्ष तुम जब बोलते हो तो बीच में सांस की आवाज आती है
1: जी।
0: रविंद्र भाई उसके बाद फिर मैंने कंट्रोल करना सीखा तो फिर हमने सांस पे बहुत काबू किया कि माइक में बीच में बोलने के बीच में सांस की आवाज ना आए। धीरे धीरे सीखते रहे
1: जी।
0: उस समय प्रसारण में फिर 82 में 82 में
1: जी
0: स्टेशन डायरेक्टर को पावर रहती थी कि किसी को भी कैजो अनाउंसर बना दें।
1: अच्छा।
0: योग्यता के आधार
1: जी।
0: एक बार उन्होंने हमसे कहा कि दोपहर के कोई आया नहीं कि तुम ड्यूटी कर लोगे। हमने कहा कर लेंगे।
1: उस समय आप कंपेयर थे।
0: हाँ, उस समय हम युववाणी कंपेयर
1: जी।
0: दोपहर की सभा हमने
1: चला दी।
0: बहल साहब बहुत नाराज हुए कि युववाणी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, लिखने पढ़ने की बड़ी इसमें योग्यता बढ़ेगी और क्या जो अनाउंसर बनने पे कुछ नहीं है। लेकिन खैर क्या जो अनाउंसर बन गए। मंडलोई साहब थे उस समय, उसी समय आए थे
1: जी।

0: बाद में मंडलोई साहब आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल बनकर रिटायर्ड हुए, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखा।
1: जी, तो ये आपका शुरुआती सफर रहा। फिर आप देखिए परमानेंट उद्घोषक भी बने हैं, तो ये सफर कैसे आपने तय किया और किस तरह से सिलेक्शन हुआ, वो यादगार जो बातें आपके जहन में आज
0: जब
1: भी हैं।
0: रेडियो से जुड़े तो लगा कि यहां सबसे अच्छा काम अगर कोई है वो है अनाउंसर का, क्योंकि उसी को लोग जानते हैं,
1: हाँ
0: वही पॉपुलर है।
1: बिल्कुल
0: तो बहुत कम नौकरी निकला करती थी।
1: जी,
0: आकाशवाणी आगरा में एक नौकरी निकली
1: अच्छा
0: अनाउंसर की, पर
1: हाँ
0: वहां दिया, लेकिन
1: हाँ
0: परीक्षा दी, पास हो गए, वॉइस टेस्ट हुआ, उसके बाद उसका रिजल्ट नहीं आया।
1: अच्छा
0: हमें उम्मीद थी कि वॉइस टेस्ट में तो पास होंगे ही। पता किया, पता चला कि हमारे साथ एक और कैंडिडेट का के नंबर बराबर थे,
1: अच्छा
0: तो शैक्षिक योग्यता देखी गई। हम उस समय ग्रेजुएट थे, वो पीजी था, उसको इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया।
1: अच्छा
0: बड़ा सदमा लगा। फिर मैंने प्राइवेट एमए किया,
1: अच्छा अच्छा
0: उसके कुछ साल बाद फिर आकाशवाणी में यहां पर नौकरी निकली,
1: जी
0: फिर भरा,
1: जी
0: लिखित परीक्षा हुई, वॉइस टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ। ईश्वर की कृपा से, सब लोगों की शुभकामनाओं से, फिर यहां मैंने 24 जनवरी 1989
1: नवासी में ज्वाइन किया है,
0: में ज्वाइन किया था।
1: काफी लंबी सर्विस रही आपकी।
0: जी
1: अच्छा उस समय देखिए जब आपने ज्वाइन किया 89 में, उस समय नौकरी की भी कोई कमी नहीं थी, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट जो जाना चाहे थोड़ा सा प्रयास करें तो चले जाते थे। तो इस नौकरी करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद, कभी ऐसी टीस लगी मन में कि हमें आकाशवाणी में नौकरी नहीं करनी चाहिए थी, कोई और डिपार्ट लेना चाहिए था?
0: बहुत अच्छी बात रविंद्र भाई आपने पूछी है। मैं आज भी ईश्वर को करोड़ों बार धन्यवाद देता हूं कि उन्हें उन्होंने मुझे मेरी पसंद की नौकरी दी,
1: जी
0: और ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है
1: जी
0: कि उन्हें उनकी पसंद की नौकरी मिल जाए।
1: जी जी
0: तो चूंकि पसंद का जॉब था, तो फिर धीरे धीरे ये नौकरी नहीं की मैंने,
1: जी
0: ये अपना शौक पूरा किया।
1: शौक पूरा किया।
0: तो इसलिए फिर इसमें हमने कभी समय नहीं देखा कि 7 घंटे 20 मिनट की ड्यूटी है तो अब हम घर चले आए,
1: हाँ
0: कभी 10 घंटे, कभी 12 घंटे, कभी 14 घंटे। तो हमारा शौक पूरा हुआ, और जीवन में मतलब हमें ये लगता है कि आकाशवाणी से हम आकाशवाणी ने मेरा पूरा जीवन संपूर्ण बना दिया।
1: अच्छा, क्योंकि अनाउंसर की ड्यूटी शिफ्ट ड्यूटी रहती है, तो कई बार हमें सुबह, दोपहर या शाम को भी करनी पड़ती है, तो ऐसे में जो अपनी जो दिनचर्या है उसमें किस तरह से सामंजस्य बिठाते थे?
0: होता यह है कि जैसे आपको मालूम है कि हमारी, चूंकि एक हफ्ते का चार्ट बनता
1: जी
0: है, तो
1: हाँ
0: आपको एक हफ्ते पहले से मालूम होता है कि
1: हाँ
0: हमारी मॉर्निंग कब है, दोपहर की कब है, या ऑफिस ड्यूटी कब है, तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। कई बार इसमें थोड़ी समस्याएं भी हो जाती हैं। जैसे एक घटना मैं आपको बताऊं
1: जी
0: कि रात के मैं कहीं शादी में गया था बाहर,
1: हाँ
0: छतरपुर से बाहर, और 8 बजे के आसपास किसी का जो अनाउंसर का फोन आया कि मैं कल सवेरे की ड्यूटी नहीं कर
1: नहीं
0: पाऊंगा,
1: करेंगे।
0: तो आप कोई व्यवस्था कर दो।
1: हाँ
0: मेरे दिमाग से उतर गई।
1: हाँ
0: रात के 2:30 बजे जब मैं वहां से लौटा
1: चले
0: शादी
1: आता
0: से,
1: है
0: तब कपड़े चेंज करते हुए मुझे एकदम से ध्यान आया कि सुबह तो अनाउंसर है नहीं है। अब 2:30 बजे तो किसी को फोन नहीं किया जा सकता था,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: मोबाइल थे नहीं उस समय।
1: बिल्कुल
0: तो फिर अलार्म लगाया, उठे 5 बजे, आकाशवाणी आए, ड्यूटी की। तो ऐसी कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको अपनी दिनचर्या थोड़ी बदलना पड़ती है, क्योंकि
1: जी
0: आकाशवाणी में तो सेकंड्स का खेल है, यहां
1: बिल्कुल
0: एक्सक्यूज वाला काम नहीं है कि क्षमा मांग लें आप।
1: तो इस नौकरी के दौरान आपने मतलब क्या क्या विशेष रूप से प्राप्त किया जो आप श्रेय देना चाहेंगे बार बार कि हमें आकाशवाणी में काम करने से ये चीज हमारे जीवन में आई है?
0: आकाशवाणी ने सब कुछ दिया,
1: जी
0: ठीक है, ज्ञान बढ़ा। जैसे अब इस समय तो कंप्यूटर है, मोबाइल है, गूगल है, नेट है, आपको कोई जानकारी हासिल करनी है तो आप तुरंत सेकंड्स में जानकारी हासिल कर सकते हैं।
1: जी
0: लेकिन आज से 30 साल पहले अगर आपको मोहम्मद रफी के बारे में जानना है तो आपको किताबों के अलावा कोई जरिया नहीं है।
1: जी हाँ जी हाँ
0: तो किताबें हमने बहुत खरीदी,
1: जी
0: बहुत पढ़ा, और वो पढ़ाई रेडियो में तो काम आई ही, आज भी काम आती है। कहीं बात चल रही हो किसी विषय पर, पर्यावरण पर, या फिल्मी दुनिया पर, या साहित्यिक या शायरों के बारे में, तो आपके पास ज्ञान है, वो कहीं ना कहीं मेमोरी में बना रहता है।

0: जी
1: वो काम आता है। तो आकाशवाणी से बहुत कुछ सीखा।
0: जी चूंकि आपने कंपेयर के रूप में भी काम किया, युवाणी अनाउंसर भी रहे, और आपने उस दौर में काम किया है जिस समय इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था या कम हुआ करता था या मोबाइल भी सीमित थे, तो ऐसे में जब आपको चर्चाएं दी जाती थी बोलने के लिए तो किस तरह से तैयारी करते थे उस समय?
1: रवि जी, होता यह था कि अखबार एक सहज माध्यम
0: हाँ,
1: था,
0: अखबार
1: ठीक
0: मिलता
1: है।
0: था।
1: उसमें लेख आते थे
0: जी
1: बड़े बड़े
0: हाँ
1: विचारकों के, उन लेखों की कतरने हम रखते थे अपने पास, ठीक है। पर्यावरण दिवस है 5 जून, तो 5 जून के अखबार में आपको वो कतरन मिल जाएंगी, तो आप अगर कई साल के जोड़ लेंगे तो आपके पास एक बहुत अच्छी जानकारी इकट्ठी हो जाएगी।
0: जी
1: उसको अपने शब्दों में पिरोकर फिर हम वो कंपेयरिंग कर लेते थे।
0: जी
1: तो आप अगर लिख रहे हो, पढ़ रहे हो और लिख रहे हो, तो आपकी मेमोरी में चला जाता
0: जी जी
1: है ना, तो
0: बिल्कुल
1: वो बहुत सारी चीजें याद बनी रहती हैं और आपका ज्ञान भी बढ़ता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने काम को पूरी तरह एंजॉय किया है, और अदर डिपार्ट से आप किस तरह से मतलब बेहतर मानते हैं कि आकाशवाणी में काम करने से ये चीजें हमने बहुत एंजॉय की हैं, क्या क्या मतलब ऐसा अलग आपने फील किया है?
1: हम तो इस नौकरी को या आकाशवाणी की नौकरी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं।
0: हाँ
1: अगर किसी व्यक्ति में आकाशवाणी से जुड़ने के गुण हैं
0: जी हाँ
1: तो वो सिर्फ आकाशवाणी ज्वाइन करे, इसके लिए ही तैयारी करे, क्योंकि यहां आपको जीवन की हर खुशी
0: जी
1: यहां हासिल होगी।
0: जी हाँ
1: अच्छे लोग, अच्छा माहौल, खूब नाम,
0: जी
1: खूब पैसा और आपके ज्ञान का पूरा सदुपयोग,
0: जी जी जी जी
1: इससे ज्यादा आदमी को चाहिए क्या है?
0: बिल्कुल। जिसकी देखिए साहित्य में नृत्य गीत और ये सब रुचि है, उसके लिए आकाशवाणी से अच्छी संस्था क्या हो सकती है?
1: रवि जी, आकाशवाणी के माध्यम से बड़े बड़े साहित्यकारों, शायरों से खूब मुलाकात हुई, गायक, लोक संगीत के गायक,
0: जी हाँ
1: सुगम संगीत के गायक, शास्त्रीय संगीत के गायक, कितने नाम हैं जिनके साथ बोलने का मौका मिला, उनके साथ मंच संचालन करने का मौका मिला। मोहम्मद हुसैन, अहमद हुसैन, उनके साथ झांसी महोत्सव में हमने मंच संचालन किया,
0: जी
1: और छन्नू लाल मिश्र बनारस के उपशास्त्रीय संगीत के का एक बहुत बड़ा नाम,
0: जी जी
1: तो उनका उनके साथ भी मौका मिला। घनश्याम वासवानी, नीलम
0: जी
1: साहनी, शायर डॉक्टर बशीर बद्र से तो ऐसी बात हम की हमने जैसे आप और हम बैठे हैं।
0: क्या बात है।
1: तो डॉक्टर बशीर बद्र का निधन हो गया, उनके कुछ शेर मतलब शायर या जो भी कवि है वो अगर इस स्तर तक पहुंचता है जहां आदमी उसको प्यार करता है, तो कहीं ना कहीं उनमें ऐसी ऐसी भावनाएं होती हैं उनकी कलम में कि वो आदमी को अंदर तक प्रेरित करती है, प्रभावित
0: जी
1: करती
0: हाँ
1: है। कृष्ण बिहारी नूर, डॉक्टर बशीर बद्र का वो गजल तो आपने सुनी होगी, जब से
0: जी
1: चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने
0: जी
1: कभी मील का पत्थर नहीं दिखा,
0: जी
1: पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मौम हूं, उसने मुझे छू कर नहीं देखा, ये फूल तो मुझे विरासत में मिले हैं मगर तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा।
0: जी
1: तो ऐसे लोग, नीरज, कभी नीरज और
0: मुलाकात
1: तमाम,
0: होगी उनसे।
1: हाँ, अब जितने बड़े नाम थे आकाशवाणी के माध्यम से उनसे जुड़ने का मौका मिला और उनके साथ बैठे, तो एक अपना भी सम्मान बढ़ता है, अपना भी स्टेटस बढ़ता है। और इसके अलावा जब भी आकाशवाणी का एक नियम है कि जब भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का कोई कार्यक्रम
0: दौरा
1: होता
0: होता है।
1: है तो ओबी के लिए जाते हैं,
0: जी हाँ
1: रिकॉर्डिंग के लिए,
0: जी
1: तो बहुत सारे अपने देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनकी रिकॉर्डिंग, तो अब आकाशवाणी की टीम तो बिल्कुल पास बैठती
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल
1: ना। तो ये सारे जो सुख हैं, जो सारा सम्मान है, वो और कहीं नहीं मिल सकता
0: अच्छा,
1: आपको।
0: पीआर बनाने का मौका अच्छा मिलता है आकाशवाणी की जॉब में,
1: हाँ,
0: तो आपने आपको जैसा हम मानते हैं और देखते हैं, डॉक्टर से काफी संपर्क रहे आपके?
1: रविंद्र भाई, बहुत अच्छी बात आपने कही है
0: जी
1: कि आकाशवाणी में अगर आप अपनी व्यवहार से
0: जी हाँ
1: अगर संबंध बनाना चाहें, तो जैसे आकाशवाणी छतरपुर का प्रसारण क्षेत्र में 2 करोड़ आदमी हैं।

0: ठीक है, उनमें से अगर 2000 आदमियों से ही अगर आपने संबंध बना लिए
1: बना
0: तो आपका
1: लिया,
0: जीवन सफल हो गया।
1: सफल हो, सही बात है।
0: तो बहुत सारे लोग आज मैं बड़े फक्र के साथ, बड़े विश्वास के साथ ये कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोगों से मेरे संबंध आकाशवाणी के द्वारा बने कि वो मेरे परिवार के सदस्य जैसे हैं,
1: जी
0: और परिवार के सदस्यों जैसा विश्वास हम उन पे करते हैं। चंद्रपुर के जितने डॉक्टर्स हैं वो सब पारिवारिक मित्र हैं, बाहर के लोग हैं, सागर है, झांसी है, ललितपुर है, वहां के बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, साहित्यकार हैं, वो कि कभी आपको जीवन में जरूरत पड़ती है तो आप उन्हें एक फोन कर दें तो वो आपके लिए आपके छोटे भाई बड़े भाई के तौर पे खड़े हुए हैं।
1: जी जी जी देखिए, आपको आकाशवाणी के लगभग लगभग हर काम में आपने निपुणता प्राप्त की और लगभग लगभग हर काम किया हुआ है। जब आप रेडियो सुना करते थे, एज ए कंपेयर, या फिर घर पर गाने सुना करते थे, फिर आपको मौका ये भी लगा कि हम आपने ही स्वयं गाने शेड्यूल किए, तब कैसा फील होता था कि भाई जो गाने हम सुना करते थे आज वही गाने हम क्यों कर रहे हैं या बजा रहे
0: अब वो तो एक परम आनंद की अनुभूति जिसको कहते हैं
1: हैं।
0: ना, वो है कि
1: जी
0: जिन गानों को हम कभी सुना करते थे या मन में लगता था कि रेडियो से काश ये गाना प्रसारित हो जाए
1: बिल्कुल
0: उसी गाने को, लेकिन जब रेडियो में एक संस्था में आप काम करते हैं
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: फिर आपकी व्यक्तिगत चॉइस अलग हो जाती है, क्योंकि
1: हाँ
0: आपको बाकी सारे लोगों की चॉइस भी
1: बिल्कुल
0: देखना
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: फिर
1: बिल्कुल
0: बहुत सारे गाने आपको पसंद नहीं है लेकिन रवीन जी को पसंद है वो गाना तो हमें बजाना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा, बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे थे जैसे गीत गुंजन वगैरह था
1: हाँ
0: कि इनमें आप अपनी पसंद के गाने आप शामिल कर सकते हैं। तो बहुत सारे गाने थे जो हमें बहुत अच्छे लगे, और उनमें सबसे अच्छी बात थी कि वो जीवन को संदेश देने वाले गाने थे। जैसे सफर फिल्म का वो गाना है, नदियां चले चले रे धारा, तो वो गाना हमें लगता है कि जीवन को एक रवानगी देता हुआ
1: जी जी जी
0: गाना है। ऐसे ही किशोर दा का बहुत अच्छे गाने हैं,
1: जी
0: रफी साहब के बहुत सारे गाने हैं, कुछ दुखी गाने हमें ज्यादा कुछ पसंद हैं।
1: जी जी आपके समय के जो गाने शेड्यूल किए हुए हैं वो हमको तो विशेष रूप से दिखे बहुत पसंद आते थे। सुबह
0: बहुत
1: साढ़े
0: बहुत
1: सात
0: धन्यवाद,
1: बजे
0: बहुत बहुत
1: सुबह साढ़े
0: धन्यवाद।
1: सात बजे जो आप शेड्यूल करते थे तो उसको सुनते जरूर थे उन गानों को। वो बहुत अच्छी एक्सीलेंट चॉइस जिसको कहेंगे।
0: कोशिश ये रहना चाहिए या रहती थी
1: जी
0: कि अगर एक मूड के गाने हैं तो उसी मूड के गाने प्रसारित हों। फिर सुबह का मूड अलग है,
1: जी जी
0: दोपहर का मूड अलग है व्यक्ति के सुनने का, शाम के अलग मूड है, और देर रात के सुनने का मूड उसका बिल्कुल अलग है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: रात के अगर आप डिस्को सॉन्ग बजाएंगे तो वो आदमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा।
1: हाँ
0: हाँ, रात के आप हेमंत कुमार के गाने हैं, मन्ना डे के गाने हैं, इन सब गानों को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कितना सुकून दिल को मिल रहा है।
1: जी जी जी शास्त्रीय संगीत भी आप शेड्यूल करते थे, इसकी भी देखिए आपको जानकारी है। तो ये सब मतलब कैसे क्या सीखते गए हर फील्ड का।
0: यहाँ आकाशवाणी में जब हम लोग जुड़े उस समय यहाँ वादक कलाकार बहुत सारे थे,
1: अच्छा।
0: सारंगी वादक थे, वायलिन वादक थे, हारमोनियम वादक थे, तानपुरा प्लेयर थे, बहुत सारे बड़ा स्टाफ था। तो अकेला संगीत नहीं, कभी प्रसारण के दरमियान उर्दू का कोई शब्द अटक जाए तो यहाँ सुलेमान खान साहब थे,
1: अच्छा।
0: अब तो वो नहीं है दुनिया में, तो सारंगी वादक थे।
1: जी हाँ
0: तो हम दौड़ते हुए उनके पास जाते थे कि इसका मतलब क्या है, उसका अर्थ उनसे पूछ लेते थे
1: जी
0: प्रसारण के दरमियान। ऐसे लोगों को गाते हुए, तबला बजाते हुए, ढोलक बजाते हुए ये समझ में आया, सीख तो नहीं पाए, ये जरूर मुझे आज इस बात का अफसोस है
1: जी
0: कि हम यहाँ संगीत नहीं सीख पाए
1: जी जी जी
0: संगीत, लेकिन इतनी समझ आ गई
1: समझ आ
0: थी
1: गई थी।
0: कि अगर आपने कहा है कि तबला इस गाने में मिल गया कि नहीं मिल गया तो हम बता देंगे कि अभी मिला नहीं है।
1: हाँ मिला नहीं बिल्कुल
0: तो उपशास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, तो बड़े बड़े दिग्गज कलाकार यहाँ आते रहे,
1: जी।
0: और कंसर्ट जो आकाशवाणी की होती थी, अब तो शायद बहुत कम होती है,
1: हाँ
0: उस समय लगातार होती थी,
1: जी
0: उसमें देश के माने जाने माने कलाकार आते थे परफॉर्मेंस करने के लिए,
1: जी
0: तो उनके साथ में बहुत कुछ सीखा।
1: जी जी जी एक कार्यक्रम आपका बहुत प्रसिद्ध रहा, हम

0: क्योंकि जब बचपन में थे, पढ़ाई लिखाई करते थे स्कूल के समय में, वो तब से लेकर और आपके रिटायरमेंट तक हमने सुना है आसपास कार्यक्रम।
1: जी
0: तो ये कार्यक्रम देखिए, एक तो करंट अफेयर पे था, उसको ऐसा भी नहीं था कि हम एक सप्ताह पहले बना के रख दें। वो करंट का रहता था, एक दिन पहले बनाते थे, और इतनी मेहनत कैसे क्या कर लेते थे अब, वो किस तरह से तैयार करते थे, क्योंकि उस 5 मिनट के दरमियान में बहुत सारी बातें आ जाती थी।
1: रवि जी, जैसे हमने कहा ना कि ये नौकरी कम शौक ज्यादा था,
0: हाँ
1: तो जब आसपास कार्यक्रम की जिम्मेदारी हमारे पास आई तो अचानक दिमाग में आया कि इसका रूप इस तरीके से रखा जाए
0: जी
1: तो ज्यादा बेहतर होगा। तो हमने उसमें एक कहानी छोटी सी, एक ऐसी खबर जो पॉजिटिव हो,
0: जी
1: जो लोगों को प्रेरणा दे कि ये काम हम भी कर सकते हैं, एक नीतिवाक, एक क्या आप जानते हैं, और एक दोहा और उसका अर्थ,
0: जी
1: ये 4.5 मिनट में
0: मैं
1: पढ़ाते
0: समझ
1: थे।
0: आता जी।
1: तो हम घर में अपने 7 अखबार मंगाते थे,
0: अच्छा
1: शनिवार इतवार उन 7ों अखबारों को हम अपने कमरे में फैलाकर बैठते थे
0: जी
1: और उसमें से खबर काटा करते थे। कहानी अगर कोई मिल गई तो कहानी ढूंढा करते थे, पूरे देश में कहीं भी जाएं तो हम कहानियों की किताबें ढूंढा करते थे। कुल मिलाकर 4500 एपिसोड हमने उसके बनाए
0: 4500,
1: जी, आसपास कार्यक्रम
0: क्या
1: के,
0: बात है।
1: और उन कहानियों को इकट्ठा करने में, उनको पढ़ने के बाद श्रोताओं के जीवन में और खासतौर पर मेरे जीवन में जो बदलाव आया वो आकाशवाणी की मैं सबसे बड़ी देन समझता हूँ।
0: जी,
1: और इस बात का हमें बड़ा अफसोस है कि आसपास कार्यक्रम इतना 12-13 साल चलने के बाद फिर बंद हो गया।
0: जी,
1: बाकी उसको बच्चों से लेके और बुजुर्ग तक
0: सबके लिए
1: सारे
0: उपयोगी
1: लोग
0: है।
1: सुनते थे उसको, और उसमें हमें लोगों ने बहुत बहुत प्रशंसा की, बहुत प्रेरणा दी, और प्रेरणा का फल यही था कि हम इतनी मेहनत कर पाए।
0: जी हाँ जी
1: और
0: हाँ
1: अगर कभी छुट्टी पे जाते थे तो 5 दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं तो 8 दिन के बना के जाते थे,
0: जी।
1: और लगभग लगभग रोज, जैसा आपने कहा, रोज नया
0: नया
1: बनाते थे, उसमें रिपीट वाला कोई सिस्टम नहीं था।
0: जी हाँ, देखिए गीत संगीत में भी आपकी विशेष रुचि रहती थी, और हम देखते थे कि कोई भी विशेष कार्यक्रम बनाना हो, पर्व विशेष या अतिथि विशेष या किसी अभिनेता अभिनेत्री पर, या आपका गीत यात्रा एक कार्यक्रम आता था, तो देखिए आपका जो रुचि है उसी के अनुसार आप विशेष रूप से उसको सजाते संवारते थे, कैसे क्या कर लेते थे का।
1: 30 साल मेहनत की रवीन जी, कहीं किसी अखबार में कतरन आई रफी साहब के बारे में, किशोरदा के बारे में, लता जी के बारे में, या हेमंत कुमार के बारे में, किसी के भी बारे में, तो उस कतरन को हमने काट के अपने पास रख लिया, क्योंकि उस समय तो सिर्फ पत्रिका या छपी हुई प्रिंटिंग वाली सामग्री ही थी हमारे
0: जी हाँ
1: पास।
0: जी हाँ जी
1: और किसी व्यक्ति के बारे में अगर आपको जानकारी रेडियो के माध्यम से देनी है तो ऑथेंटिक होना उसका बहुत जरूरी है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: क्योंकि रेडियो जो आकाशवाणी है वो आज भी, तब से लेकर इन 90 सालों में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो है इसकी विश्वसनीयता।
0: जी हाँ
1: और तो इन लोगों की जो आत्मकथाएं निकली,
0: जी
1: ऑटोबायोग्राफी लोगों ने जो लिखी,
0: जी जी
1: उनको हमने सबको मंगाया। बड़ी
0: अच्छा
1: महंगी महंगी किताबें थी, 4-4 हजार रुपए की ऑटोबायोग्राफी थी, लेकिन हमने खरीदी।
0: जी
1: और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी, उनको भी हमने मंगाया।
0: जी
1: इन कतरनों को जोड़ जोड़ के 25 साल की जो मेहनत थी और जो किताबें थी, उन सबको फिर पिरोया, फिर उनको देखा कि इसमें कौन से गाने इनके हम शामिल कर सकते हैं।
0: जी
1: रफी साहब की जो पुत्रवधू है
0: हाँ
1: वो इंग्लैंड में है,
0: अच्छा
1: उन्होंने एक किताब लिखी, मेरे अब्बा रफी। एक पेपर में हमने छोटा सा विज्ञापन देखा, उस पर कोई फोन नंबर पता नहीं था,
0: जी
1: तो हमने उसको, प्रकाशक को, एक लेटर लिखा कि कृपया बताएं कि ये किताब कैसे मिलेगी।
0: जी
1: तो उनका आ गया, जवाब आया, तो बताया उन्होंने कि आप पोस्टल पेमेंट कर दें और किताब हम भेज देंगे। तो वो किताब पेपर बैक संस्करण था, आ गया।
0: जी
1: जब हम घर पहुंचे आकाशवाणी से तो वो किताब हमें मिली, तो पहले मैंने उस पूरी किताब को पढ़ा, जब किताब पूरी खत्म हो गई उसके बाद फिर कोई दूसरा काम किया। तो एक पुत्र वधु अगर अपने ससुर के बारे में लिख रही है तो उससे ज्यादा एथेटिक और कुछ नहीं हो
0: हाँ,
1: सकता।
0: और क्या?
1: तो लता जी के बारे में है, सुरैया, शमशाद बेगम या जो भी

0: संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एस डी बर्मन, मदन मोहन, आर डी बर्मन, तो इन सब के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की और हमने उनको रेडियो में ऐसी गीत यात्रा जो कार्यक्रम आपने कहा गीत यात्रा में एक बार हमारे दिमाग में आया कि ये गीत इतनी मेहनत से संगीतकारों ने बनाए हैं, गीतकार ने लिखा है, आज 70 साल बाद 60 साल बाद हम इन गानों को उतनी ही पसंदगी के साथ सुनते हैं
1: जी।
0: तो इसमें इतनी आत्मा जो डाली गई वो कैसे आई?
1: बिल्कुल, क्या उद्देश्य था इस गाने के लिखने की?
0: तो फिर हमने ढूंढा, फिर हमें उसके बारे में मिला, तो वो 92 एपिसोड हमने गीत यात्रा के बनाए थे
1: जी,
0: और उनमें हर एपिसोड आधे घंटे का था, उसमें 3 या 4 गाने थे
1: जी।
0: तो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी मेरे लिए भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फोन इन कार्यक्रम आपके कार्यकाल के दौरान लगातार रहे हैं, कुछ समय के लिए लाइव फोन इन भी हुआ है और हेलो फरमाइश तो देखिए रहा ही है, तो इस कार्यक्रम के दौरान कुछ जुड़ी हुई यादें आप साझा करना चाहें, खासकर जब सजीव फोन इन कार्यक्रम होता था रात्रि में।
0: हाँ, बहुत आपने बहुत पीछे हमें पहुंचा दिया। जो कार्यक्रम था रात 10 बजे से 11 बजे तक प्रसारित होता था वो सजीव फोन
1: जी।
0: उस समय रविंद्र जी न कंप्यूटर था न मोबाइल था,
1: बिल्कुल
0: ठीक, रजिस्टर थे जिन पे फिल्म के रिकॉर्ड किस नंबर का है ये सब लिखा होता था
1: जी।
0: तो हम 4 उद्घोषक थे
1: जी,
0: मैं, अरविंद सोनी
1: जी,
0: राकेश खरे और पुरुषोत्तम श्रीवास
1: जी।
0: हम चारों लोगों ने डिसाइड किया कि इस कार्यक्रम को करेंगे और 2 लोग बैठेंगे माइक पर, 2 लोग रिकॉर्ड ढूंढेंगे, रिकॉर्ड लगाएंगे और प्ले करेंगे
1: जी।
0: ऑफिस में सब लोगों ने उस पर बड़ी वो की कि कैसे कर पाओगे, नहीं हो पाएगा, बहुत दिक्कत होगी, सजीव फोन इन है, किसी ने कुछ कह दिया, तो तब भी हम लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग करेंगे
1: जी।
0: खैर ऑफिस भी तैयार हो गया, हम लोगों ने वो उस कार्यक्रम को किया। तो रात के 10 बजे आप सोचो कि पूरा दौड़ भाग हो रही हम लोगों की 2 लोग एक रजिस्टर लेके सबसे पहले उसमें फिल्म का नाम पूछ लेते थे कि कौन सा गाना आपको पसंद है, तो काजल फिल्म का गाना उन्होंने काजल ढूंढा रजिस्टर में, काजल का रिकॉर्ड निकाला लगाया, फिर वहां से कांच के उस पार से उन्होंने इशारा किया कि हाँ गाना ओके है, तो फिर हम लोगों ने कहा लीजिए सुनिए आपकी पसंद का गाना। तो उसमें एक बार एक श्रोता बड़ा दुखी था,
1: अच्छा
0: बहुत ज्यादा दुखी था, तो फिर उसको समझाया कि नहीं जीवन बड़ा कीमती है और जीवन में अगर समस्याएं ना हो तो आप जीवन गुजार भी नहीं सकते
1: जी।
0: आपको एक 5-स्टार होटल के कमरे में 4 दिन के लिए अगर बैठा दिया जाए सारी सुख सुविधाओं के बाद, तो आप 5वें दिन आधे बीमार निकलेंगे
1: जी। हाँ जी हाँ,
0: तो जीवन का नाम ही है परेशानियां समस्याएं उनका हल, सुख दुख मिलन बिछो, यही जीवन है।
1: बिल्कुल,
0: जीवन एक पटरी पर चलने वाला की चीज नहीं,
1: हाँ, हो जाए,
0: हाँ,
1: ये नहीं है।
0: नहीं नहीं, आप जी भी नहीं सकते,
1: नहीं जी सकते, सही बात है।
0: तो उससे उसको बड़ी प्रेरणा मिली और फिर वो व्यक्ति फिर हमें कई बार फिर उनके फोन आए,
1: तो
0: फिर वो ठीक हो गए, उन्हें लगा कि नहीं सही में जीवन जो है उतार चढ़ाव का नाम
1: जी।
0: हेलो फरमाइश में तो श्रोता खूब सालों जुड़े रहे, अभी भी हेलो फरमाइश आता है, तो उसमें सभी श्रोता बड़े स्नेहिल बड़े प्यारे और हम लोगों को उन्होंने बहुत सम्मान दिया और हम लोगों ने भी उन्हें परिवार के सदस्य के रूप में हमेशा देखा। और कई बार जरूर होता था किसी श्रोता की कोई फरमाइश ऐसी है गाने की
1: जी।
0: कि जो गाना हमें लगता है कि वो हमारे कानों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए
1: अच्छा
0: ठीक
1: नहीं,
0: नहीं।
1: हाँ।
0: तो फिर उनको बता दें, तो उनको भी समझ में आता था, तो फिर वो गाना
1: बदल
0: देते थे। लोकमंजरी कार्यक्रम था, लोकगीत
1: कार्यक्रम
0: था, हेलो लोकरंजन था, लोकमंजरी पत्रों पर आधारित था, तो पत्रों का भी अपना एक बहुत विशाल भंडार हुआ करता था आकाशवाणी छतरपुर में। हर हफ्ते लोकमंजरी कार्यक्रम में 250 से ज्यादा पत्र आते थे
1: जी, और सभी शामिल होते थे।
0: अब उनको शामिल कैसे किया जाए, आधे घंटे के लोकमंजरी कार्यक्रम में संभव नहीं था
1: बिल्कुल
0: कि इतने बड़े पैमाने पर पत्र शामिल करें। तो रविंद्र जी हमने घर में स्पीड बढ़ाई अपनी,
1: अच्छा पढ़ने की
0: कि उच्चारण भी साफ रहे और स्पीड भी बहुत ज्यादा। तो फिर लोकमंजरी कार्यक्रम के आखिरी में हम बताने लगे थे कि आज 240 पत्र हमने शामिल किए। श्रोताओं को अच्छा लगा
1: जी,
0: और उनको अच्छा इसलिए भी लगता था कि उनके नाम शामिल हो जाते थे।
1: अच्छा, फोन इन कार्यक्रमों को करने के पहले चूंकि रिकॉर्डेड होते हैं, क्या स्ट्रेटजी रहती थी कि आज हम श्रोताओं से किस विषय पे बात करेंगे, क्या क्या बात करेंगे, तो किस तरह से प्लानिंग करती थी?
0: कई बार 30 त्योहार

0: हमारा आसपास है,
1: हाँ
0: या कोई ऐसा दिवस है जो लगता है कि हमें इसके बारे में श्रोताओं को जागरूक करना चाहिए?
1: जी
0: कभी साफ सफाई का मुद्दा उठा लिया, कभी पानी का, पानी की बचत का, बारिश का कभी मौसम है, कभी ठंड का मौसम है, कभी गर्मी का मौसम है।
1: जी
0: तीज त्योहार तो चूंकि अपनी संस्कृति में तो तीज त्योहार तो लगातार बने रहते
1: जी
0: हैं, तो उसी से जुड़े हुए प्रश्न अपने श्रोताओं को करते थे और वो बड़े उल्लास के साथ उन सवालों का जवाब
1: जवाब
0: भी
1: देते हैं
0: दिया करते थे।
1: जी। कार्यक्रम हेलो फरमाइश की बात हो रही है, गीत संगीत की बात हो रही है, तो आज एक बार फिर आप रूबरू हैं हमारे श्रोताओं से और आपने बहुत सारे गाने उनको सुनवाए, उनका मनोरंजन किया। आज कौन सा गीत इस भेंटवार्ता के बीच में सुनवाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: सफर फिल्म का वही गाना हम सुनना चाहेंगे,
1: जी
0: नदिया चले चले रे धारा,
1: जी
0: तुझको चलना
1: चलना ही
0: होगा।
1: होगा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सुनते हैं इस गीत को।

0: AIR @90।
1: हमारे श्रोताओं ने देखिए आनंद लिया होगा इस प्यारे से गाने का, नदिया चले चले रे धारा। हमारे श्रोता या जो रेडियो में आने के शौकीन हैं, सबसे पहले देखिए जो उच्चारण है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, आवाज बहुत अच्छी होनी चाहिए, बात करने की शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इन सब में कैसे क्या आपने सुधार किया और किस तरह से आपने इम्प्रूव किया, और हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें कहाँ मतलब प्रयास करने चाहिए, काम करना चाहिए अपने ऊपर?
2: जब तक जीवन है तब तक सीखना आदमी का जारी रहता है।
1: बिल्कुल।
2: जहां उसने सीखना बंद किया और उसका जीवन थम गया, उसका ज्ञान थम गया। हम छोटे बच्चे से भी कई बार बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं। कई बार बच्चा टोक देता ना, आप झूठ बोल रहे हैं।
1: हाँ, हाँ।
2: तो इसका मतलब है कि आप वो सिखा रहा है कि आपको झूठ नहीं बोलना है। ऐसी जो जब आकाशवाणी में आए, धीरे धीरे किसी ने किसी शब्द के लिए टोका, तो वो शब्द फिर दोबारा हमने कभी बोला नहीं
1: जी,
2: उसको सुधार लिया।
1: जी जी जी।
2: उर्दू के बहुत सारे शब्द थे जिनके उच्चारण थे, तो वो जहां कोई उर्दू का जानकार हमें मिलता था तो वो उनसे जरूर पूछते थे कि इसका मतलब क्या है। शेरो शायरी पढ़ी, उनके मतलब देखे, कई बार किताबों में नीचे उनके अर्थ भी लिखे रहते हैं, तो वो थोड़े जेहन में कई बार आ जाते हैं। तो मैं एक बार फिर आ गया, तो अब जैसे समझाने वाले भी बहुत अच्छे समझाने वाले जो मिल जाते हैं, तो आप जीवन में वो शब्द कभी दोबारा भूलोगे नहीं। जैसे एक बार हमने पूछा कि बार बार एक शब्द आता है ना खुदा
1: जी,
2: इसका सही अर्थ क्या है? तो फिर एक हमारे मित्र के फादर थे, उन्होंने उर्दू और फारसी का बड़ा अध्ययन किया था
1: जी,
2: उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति
1: जी
2: जो काम तो खुदा के करता है
1: जी,
2: लेकिन खुदा नहीं है
1: जी,
2: अच्छे काम कर रहा है, भगवान के काम कर रहा है लेकिन भगवान नहीं है।
1: बिल्कुल।
2: जैसे एक नाविक अपने नाव में सवारियों को बिठाल कर एक छोर से, एक किनारे से दूसरे किनारे तक छोड़ के आता है, वो भगवान के काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, भलाई के काम कर रहा है, लेकिन अगर बीच में नाव डूबने लगे तो वो आपको बचा नहीं सकता क्योंकि वो खुदा नहीं है।
1: जी जी जी।
2: तो ना खुदा का मतलब है कि जो व्यक्ति भगवान जैसे अच्छे कार्य कर रहा है लेकिन भगवान नहीं
1: है।
2: अब वो उन्होंने आज से हमें 35-40 साल पहले ये अर्थ बताया था
1: जी।
2: आज भी हमें ज्यों का त्यों याद है।
1: बिल्कुल।
2: तो बहुत सारे शब्द थे, बहुत सारे उच्चारण ऐसे थे जिन्हें कई बार हमें लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, लेकिन बाद में जब कोई टोकता है तब लगता है कि नहीं, हम गलत बोल रहे थे। तो धीरे धीरे वो, और जो लोग उच्चारण सीखना चाहते हैं उन्हें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जब भी बोलें, घर में बोलें, माइक पर बोलें, कहीं भी दोस्तों के बीच में बात करें, शब्द को गलत ना बोलें, क्योंकि वो आपकी जबान पे चढ़ जाता है। जबान पे जो चढ़ जाएगा वही निकलेगा।
1: सही बात।
2: दूसरी बात, अगर आप पढ़ते में शब्दों के उच्चारण पर ध्यान देंगे तो आपका फ्लो खराब होगा। हिंदी में हर शब्द जिंदा है, हर शब्द बोलता है, ठीक, उसकी अपनी प्रतिध्वनि है और वो अपने आप जिंदा है। अगर आप उसको वैसा नहीं पढ़ेंगे तो वो वैसा

0: दे सकेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो रेडियो में हमने एक चीज और सीखी थी कि आप लाइव माइक में आप कोई स्क्रिप्ट हमें दे दें तो हम बगैर उसको कभी पढ़े सीधा पढ़ देंगे और अटकेंगे नहीं, पूछिए मतलब ये कैसे हमने डेवलप किया।
1: हाँ।
0: पहली लाइन हमने अपनी मेमोरी में डाली ठीक, और दूसरी लाइन पर हमारी आंखें चलने लगी तो अब हमें मालूम है कहाँ कॉमा लगा है, कहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है, कहाँ हमें रुकना है, कहाँ हमें मुलायम स्वर अपनाना है। तो आप ये ट्रिक अगर अपने आप पैदा कर लें तो आप कभी भी माइक पे आपको अचानक कोई पत्र दे दे आप तुरंत पढ़ देंगे।
1: क्या बात है, देखिए आज ये सीक्रेट है इन्होंने बताया कि किस तरह से अपने माइक पर फ्लो में पढ़ते थे। चूंकि आप जितनी कमांड आपकी हिंदी में है, उच्चारण में है, आवाज में है, उतना ही देखिए आपकी कमांड बुंदेली में भी रही है, आप बुंदेली कंपियर में भी रहे हैं, तो किस तरह से आपने बुंदेली में काम किया?
0: रविंद्र भाई ये भी हम तो ये सोचते हैं कि शायद ईश्वर की बड़ी कृपा रही
1: जी,
0: क्योंकि ना तो हमारे घर में सामान्य रूप से बुंदेली कोई बोलता है ठीक, ना हमारे दोस्तों के बीच में बुंदेली कोई बोलता है, ना बचपन में कोई बोलता था, वो तो इस माहौल में रह के बुंदेली आती थी
1: जी।
0: तो आपने देखा होगा कई बार हम ग्राम सभा में बैठते थे और उसके बाद सीधे अनाउंसमेंट हिंदी में करते थे तो, और बुंदेली में जब बोलते थे तो कभी शानी बोला हमने, शाही बोला,
1: सही बोला
0: कि हमारे शहर में ऐसा हो रहा है ठीक है, लेकिन अगर हम एक 10 सेकंड बाद अनाउंसर के रूप में हैं तो अपने आप शाह निकलेगा।
1: बिल्कुल।
0: तो ये थोड़ा मतलब अपने आप, चाहे इतना रूटीन वर्क हो गया था कि वो अपने आप होने लगा था। बाकी बुंदेली यहाँ वार्ताकार आते रहे, कहानीकार आते रहे, उनसे बहुत सीखी। हालांकि वो बुंदेली जिसमें बुंदेली जो मिठास है वो बुंदेली आज भी लोगों को अब नहीं आती
1: जी।
0: एक गंगागिरी गोस्वामी जी थे,
1: अच्छा,
0: वो कहानीकार थे, रविंद्र जी इतनी मिठास थी उनके बुंदेली में कि जब वो कहानी पढ़ते थे तो ऐसा लगता था बस सुनते रहे।
1: अच्छा।
0: तो बुंदेली जो बोली है वो इतनी ज्यादा मीठी है, लेकिन अब वो धीरे धीरे चल लोगों ने बोलना बंद कर दिया तो वो उसके जो बहुत अच्छे शब्द थे वो गायब हो गए।
1: वो गायब हो गए, सही बात है।
0: तो हमें अपनी बुंदेली बोली को बढ़ाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। हम अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे बुंदेली, जबकि हम यहाँ रहते हैं और बुंदेली नहीं सिखा रहे, क्यों? इंग्लिश स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ठीक है, वहां जो है वो बुंदेली बोलना मना है, वहां हिंदी बोलना मना है, तो ये अच्छी बात बोली और भाषा के लिए नहीं है।
1: बिल्कुल। आपके एक और टैलेंट की तरफ रुख करते हैं, आपने बहुत सारे नाटक किए हैं, रूपक बनाए हैं, बुंदेली हो या हिंदी हो, कौन कौन से बहुत प्रचलन में रहे, क्या यादें रही इनसे और किस तरह से काम रहा है इसमें?
0: बहुत से नाटक थे, बहुत से रूपक थे
1: जी।
0: एक रूपक तो पूरे देश से प्रसारित हुआ था
1: जी,
0: रानी लक्ष्मीबाई पर केंद्रित, उसको बनाने में दिल्ली से ही वहां से निर्देश प्राप्त होते थे कि किस तरीके से बनाना है, तो उसमें बहुत मेहनत हुई थी, लेकिन वो पूरे देश से प्रसारित हुआ था और उसके बाद फिर 2-3 बार और प्रसारित हुआ
1: जी।
0: बहुत सारे नाटक यहाँ पे बनाए तो उनमें नाटक की कथा वस्तु कैसी है इसके ऊपर निर्भर करता है सारा इम्पैक्ट, उसका प्रभाव।
1: बिल्कुल।
0: उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी पर नाटक बनाया था
1: जी।
0: उसमें राकेश भाई ने काम किया था और वो बहुत यादगार नाटक बना था
1: जी।
0: कभी आपको मिले उसकी सीडी तो जरूर उसको अपने श्रोताओं को सुनवाएं
1: जी।
0: और दूसरे एक धारावाहिक मुंशी प्रेमचंद की कहानी उपन्यास पर निर्मला का बुंदेली धारावाहिक बनाया था 13 कड़ियों का, उसमें रविंद्र जी आखिरी में जब निर्मला मरती है उस समय जो स्टूडियो में जो कलाकार थे, जो अभिनय था, जो माहौल था, उसमें सारे कलाकार रो दिए थे स्टूडियो में
1: जी,
0: यानी हमें रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ी थी, इतना रो दिए थे, इतना मार्मिक सीन वो बना था
1: जी।
0: तो वो जब कलाकार डूब जाता है उस भाव में तो फिर वो भाव निकलकर सामने आते हैं, तो बहुत सारे थे कि मतलब हम लोगों को लगता था कि हाँ ये जब कोई काम अपन अच्छा कर लेते हैं

0: और मन से करते हैं पूरा हो जाए, तो फिर जो प्रसन्नता होती है तो वो प्रसन्नता का अनुभव कई बार किया।
1: जी, देखिए कई बार घर में अचानक काम आ जाते हैं, अगर हमारी प्री प्लानिंग हो तो हम लोग छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन जब ड्यूटी में आ गए, ऑन एयर हो गए, और इस दौरान कोई अचानक काम आ जाए या कोई ऐसी बात अपने को सुनने को मिल जाए कि अपनों के बीच में कोई ऐसी घटना घटित घटी हो, और फिर उस समय आपको देखिए श्रोताओं का मनोरंजन भी करना है, गाने भी सुनवाने हैं, अनाउंसमेंट भी करना है, तो कैसे क्या सामंजस्य बिठाते थे? कोई याद अगर इससे जुड़ी हुई हो तो वो भी साझा करें।
0: बहुत मार्मिक बात आपने
1: जी
0: पूछी है, कही है। एक बार यहाँ हम नाइट ड्यूटी में थे
1: जी
0: और शायद सोमवार का दिन था, और मन भावन कार्यक्रम आता था रात 10 से 11 तक, एक
1: जी जी
0: घंटे का।
1: जी जी
0: तो उसी समय आकाशवाणी छतरपुर में पदस्थ एक कार्यक्रम अधिकारी के अचानक एक्सीडेंट की, देहांत की खबर सुनी
1: जी जी
0: लगभग 8 साढ़े 8 बजे।
1: जी हाँ जी हाँ
0: तो वो जो अब ना तो मन लग रहा, बेचैनी अलग हो रही,
1: जी हाँ जी हाँ
0: कर्तव्य अपनी जगह पर है,
1: बिल्कुल
0: माइक अपनी जगह पर है, श्रोताओं को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप के अंदर क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल हो रही है, आप किस दुख में हैं, आपको वो जाहिर भी नहीं होना देना है, लोगों को उजागर भी नहीं होने देना। तो ऐसे में बड़ी कठोर स्थिति हो जाती है, लेकिन कंट्रोल करके अपने, और फिर मन को धीरज रखते हुए कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा सा सैड गाने
1: जी
0: आपने शेड्यूल कर लिए और बजा दिए।
1: जी जी जी
0: ऐसे एक बार हमारी माँ नहीं रही,
1: अच्छा, ड्यूटी के दौरान
0: नहीं मतलब पहले से हो
1: जी
0: गया था, तो फरवरी की बात है, और मई में आता है मदर्स डे, ठीक। तो उसमें भी हम नाइट ड्यूटी में थे, और तो गीत गुंजन का समय था,
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: गीत मंगलवार का समय था, तो हम गीत गुंजन बना रहे थे, तो माँ पर ही बना रहे थे क्योंकि वो उस दिन मदर्स डे था।
1: जी हाँ जी हाँ
0: तो उस दिन मतलब चूंकि वो खुद का कार्यक्रम था और माँ पर था, तो
1: जी हाँ जी
0: वो
1: हाँ
0: भावनाएं मतलब हमने रो दिया
1: जी
0: उस
1: हाँ
0: कार्यक्रम को बनाते हुए, लेकिन फिर चूंकि वो उसी से भाव से जुड़ा हुआ था तो ज्यादा बेहतर तरीके से वो कार्यक्रम बना।
1: जी हाँ जी हाँ
0: जैसे हम आपको बताएं कि मुकेश जी के ऊपर जब हमने कार्यक्रम बनाया, तो मुकेश जी के स्क्रिप्ट को पढ़ने से पहले हम मुकेश जी के दर्दीले 2-3 गाने स्टूडियो में अकेले बैठ के सुना करते थे,
1: अच्छा
0: फिर जब हमारे दिलो दिमाग में वो आवाज भर जाती थी तब फिर हम पढ़ना शुरू करते थे।
1: जी जी जी
0: तब
1: जी
0: आपको
1: वो भाव
0: वो भाव, वो दर्द आपको समझ में
1: झलकेगा।
0: आएगा कि नहीं ये मुकेश का कार्यक्रम है।
1: बिल्कुल
0: बहुत सारे ऐसे समय आया जब अपने मन को काबू में रखना पड़ा, अपनी भावनाओं को काबू में रखना पड़ा और अपनी ड्यूटी निभाना पड़ी।
1: आज के समय जो हमारे पैनल में कंपियर्स हैं, अनाउंसर्स हैं, जहाँ भाव की बात हो रही है, कई बार लोग घर परिवार से परेशान होते हैं और फिर वही इमोशन ऑन या रेडियो पे सुनाई देते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए माइक आपका तो है
1: जी
0: लेकिन आपके लिए नहीं है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: वो लाखों श्रोताओं के लिए है,
1: बिल्कुल
0: ठीक है। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि रवीन जी के अंदर क्या उथल पुथल है,
1: हाँ
0: क्या दुख है, क्या समस्या है, क्या परेशानी है, उन्हें आकाशवाणी छतरपुर से मतलब है।
1: बिल्कुल
0: आप जब रेडियो पे बोल रहे हैं तो आप व्यक्ति नहीं है, आप आकाशवाणी छतरपुर है।
1: जी हाँ
0: तो जब आप इस बात को ध्यान में रखोगे कि हम आकाशवाणी छतरपुर की ओर से बोल रहे
1: बोल रहे
0: हैं
1: हैं
0: तो आप अपने आप को
1: भूल
0: भूल
1: जाओगे।
0: जाएंगे। तो अपना भूलना बहुत जरूरी है, और जब आप भूल जाएंगे तो आप थोड़ी देर में अपने आप अपने, और खासतौर पे युववाणी कार्यक्रम तो युवाओं का कार्यक्रम है, ऊर्जा का कार्यक्रम है, उल्लास का कार्यक्रम है, उत्साह का कार्यक्रम है,
1: जी
0: तो उसमें क्रोध या और दूसरे भाव नहीं आने चाहिए।
1: जी जी जी आपने आकाशवाणी की नींव से मतलब आपने देखा हुआ है आकाशवाणी छतरपुर को, और आज 50 वर्ष पूर्ण कर रहा है, तो कैसा आप देखते हैं इसको, कैसा अनुभव करते हैं, और आपके लिए भी सुखद होगा कि हम देखें गोल्डन जुबली इसकी अपने सामने देख रहे हैं।
0: ईश्वर का आशीर्वाद है कि हम सब लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि आकाशवाणी छतरपुर, हमारा आकाशवाणी छतरपुर 50 साल पूरे करने जा रहा है,
1: जी
0: और 50 साल के सफर में लगभग 40 साल तो हम रहे
1: जी
0: आकाशवाणी छतरपुर।

0: के साथ में शुरू से लेके यानी 79 से जब से हम आकाशवाणी से जुड़े, तो आकाशवाणी ने हमको दिया दिया है।
1: जी
0: आकाशवाणी को हम कुछ नहीं दे पाए, हमने कार्यक्रम अच्छे बनाए, हो सकता है उससे अच्छे कार्यक्रम हम बना सकते होंगे,
1: जी जी
0: लेकिन
1: जी
0: हम नहीं बना पाए। तो ये जो अधूरापन है, थोड़ा सा लगता है कि अब अभी भी कभी आता है कि अरे उस कार्यक्रम में ये बात हमें और जोड़ना चाहिए थी, तो अभी भी लगता है।
1: जी
0: तो वो कमी जो है वो, तो इसका मतलब है कि आकाशवाणी छतरपुर को हमने अपने अपना जो योगदान दिया वो बहुत कम था। आकाशवाणी छतरपुर ने हमें अपना सब कुछ दिया और हमारे जीवन को रोशनी दी, नाम दिया, सम्मान दिया, यश दिया, पैसा दिया और श्रोताओं का अगाध स्नेह दिया।
1: जी जी जी जी
0: तो आकाशवाणी छतरपुर तो एक ऐसी संस्था है जिसका ऋण तो हम कई जन्मों तक नहीं चुका पाएंगे।
1: श्रोताओं का देखिए अगाध प्रेम रहा, और आप भी देखिए कई बार ओ भी करने जाते होंगे, इस तरह रिकॉर्डिंग करने जाते होंगे, तो जो श्रोताओं का प्यार मिलता होगा या ओ भी के दौरान जो अनुभव रहते होंगे, तो वो कुछ साझा करना चाहें इस दौरान के।
0: उस समय तो स्वर्णिम काल था
1: जी हाँ।
0: रविंद्र जी रेडियो का, कई कारण थे। एक तो क्या मनोरंजन के लिए कोई और साधन था नहीं,
1: था नहीं।
0: टीवी भी इतना प्रचार प्रसार टीवी का नहीं हुआ था,
1: जी जी
0: इतने रिले सेंटर भी नहीं थे, गांव में बिजली भी नहीं थी, तो आदमी के पास एक ही मनोरंजन के लिए था छोटा सा डिब्बा
1: जी
0: रेडियो।
1: जी जी
0: तो हर घर में, हर गांव में, हर जगह आपको रेडियो सुनने को मिलता
1: मिलता
0: था,
1: रहा।
0: लोग नाम से जानते थे। और जब आकाशवाणी की टीम किसी गांव में पहुंचती थी, किसी तहसील में पहुंचती थी, तो लोगों को उत्सुकता होती थी कि हम देखें, हम मिलें। तो बहुत इतना स्नेह, इतना प्यार उन्हें, मतलब वो लगता है ना कि हम क्या कर दें,
1: जी
0: क्या क्या हम अवभगत कर दें,
1: हाँ
0: वो भाव जो निश्चल भाव उनके अंदर थे, वो जीवन की हम लोगों की बहुत बड़ी पूंजी। और श्रोताओं ने जो कुछ भी दिया वो रेडियो से जुड़े रहने पर तो दिया ही, उसको हमने देखा जब हम रिटायर्ड हुए।
1: जी
0: तो मेरी रिटायरमेंट की पार्टी में 50 के लगभग श्रोता
1: आए
0: बाहर से
1: थे।
0: आए,
1: जी हाँ
0: 200 किलोमीटर से आए, उन सबको रेडियो के माध्यम से पता चल गया था कि हम रिटायर्ड हो रहे हैं। हमने उन लोगों को मना भी किया था
1: जी
0: कि आप लोग कृपया परेशान होके बिल्कुल ना आए, मोबाइल है
1: जी
0: आपसे संपर्क बना रहेगा,
1: जी
0: लेकिन वो नहीं माने। और फिर बहुत सारे श्रोता उनको रात के यहां से जब वो लौटे तो पूरी रात बस स्टैंड पे या स्टेशन पे पड़े रहे, क्योंकि
1: जी
0: उनको साधन नहीं थे।
1: जी जी
0: तो ये जो ऋण है श्रोताओं का, क्योंकि सबसे बड़ी पूंजी आकाशवाणी ने हमें दी हमारे श्रोता।
1: बिल्कुल
0: और इतना रिटायरमेंट के बाद एक दिन, अगले एक दो दिन बाद यहां से फोन आया कि आपके एक श्रोता आपका इंतजार कर रहे हैं,
1: जी
0: बुजुर्ग सज्जन थे आए। हम ओ वो कभी रेडियो से नहीं जुड़े, ना फोन इन से, ना पत्रों के माध्यम से, कैसे भी नहीं,
1: जी
0: वो घर बैठे रेडियो सुनते थे। तो वो सोनी जी थे, छोटे सालिग्राम भगवान वो लेके आए, उन्होंने हमारे सामने उनको कपड़े पहनाए और हमें वो भेंट
1: भेंट किया।
0: किए। इतना मतलब अब आप सोचे कि व्यक्ति के अंदर कितना स्नेह भाव है कि उन्होंने उतनी दूर से आके, शायद देवेंद्र नगर या कहीं आसपास के थे,
1: जी
0: ऐसी एक लड़की, एक श्रोता, उसने कभी फोन नहीं किया, पत्र नहीं डाले। हमारे रिटायरमेंट के बाद उसने कहीं से, यहां से कोई विज्ञापन बजा होगा, उस विज्ञापन वाले को फोन किया, उससे
1: नंबर
0: यहां का
1: लिया।
0: नंबर लिया, फिर मेरा नंबर लिया, हमें फोन किया।
1: जी
0: तो उसकी माँ ने बात की, बोली कि ये जिस दिन से आप रिटायर्ड हुए हो उस दिन से ये रो रही है, कह रही है कि अब पांडे जी की आवाज हमें सुनने को नहीं मिलेगी।
1: जी
0: तो बोले हमने कहा कि उनका नंबर ले लो, तो कहीं ना कहीं बात हो जाएगी कभी कभी। तो हमने उससे बात की, फिर कभी कभार बात होने लगी। एक बार उसने कहा कि आप हमें अपना पता भेज दीजिए।
1: जी हाँ
0: तो हमने कहा क्या करना है, तो बोले कुछ भेजना है।
1: हाँ
0: पता भेज दिया, उसने एक स्वेटर बना के हाथ से भेजी
1: भेजा।
0: रवीन जी, बिल्कुल नाप की स्वेटर।

0: मार्च का महीना था, ठंड करीब करीब खत्म हो गई थी।
1: जी
0: तो हमारी पत्नी ने कहा कि अब आप ये स्वेटर पहनो, फोटो खींचो और उसको भेजो। तो हमने उससे कहा कि तुमने कैसे अनुभव किया कि हमारी ये साइज होगी?
1: हाँ
0: तो बोली कि मन की आंखों से हमने अनुभव किया
1: जी
0: कि आप ऐसे हो गए।
1: हाँ
0: तो अब ये इतनी कीमती चीजें हैं कि आप अरबों रुपए दे के भी खरीद नहीं
1: खरीद
0: सकते।
1: नहीं
0: ये
1: सकते,
0: जो
1: सही।
0: मन का आनंद है, मन का जो लगाव है, ये लगाव आपको बहुत प्रेरणा देते हैं। और रेडियो ने यही सब कुछ मुझे दिया है, इसीलिए मैंने कहा कि कई जन्म लेके भी आकाशवाणी छतरपुर का हम कर्ज नहीं चुका सकते,
1: जी
0: अपने
1: जी
0: श्रोताओं का भी कर्ज और उपकार नहीं चुका सकते। आज भी छतरपुर में कोई श्रोता कहीं से भी आता है किसी काम से, तो वो बगैर मिले हमसे नहीं जाता।
1: जी अरे देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और यही आपने देखिए प्रेम और श्रोताओं के प्रति जो लगाव है आपका, वो आज भी बरकरार है। हर आकाशवाणी को स्थापित करने का देखिए कुछ न कुछ उद्देश्य रहा है। ऐसे ही आकाशवाणी छतरपुर का जो उद्देश्य था, यहाँ की बुंदेली बोली संस्कृति परंपराओं को संवारना, सहेजना और उसको बढ़ावा देना। तो आप क्या मानते हैं कि रेडियो ने बुंदेली बोली बुंदेली भाषा को बढ़ाने में कितना योगदान दिया है?
0: रविंद्र जी, बुंदेली बोली जो आज या जो लोक संगीत गांव गांव फैला है, या कैसेट सीडी मीडिया में जो आपको आज सुनाई दे रहा है, वो सिर्फ आकाशवाणी छतरपुर के कारण है।
1: बिल्कुल
0: आकाशवाणी छतरपुर ने दूर दराज तक बुंदेली को पहुंचाया, बुंदेली की वार्ताओं को, ईसुरी को, लोक संगीत को, और उन दूर दराज के गांव में रहने वाले बहुत अच्छे गायक कलाकारों को, जिनके पास कोई साधन ही नहीं था, उनको जन जन तक पहुंचाया। और जो कंसर्ट हुआ करती थी
1: जी
0: उसमें अलग अलग पूरे देश के अलग अलग हिस्सों के गायक कलाकार, लोक गायक कलाकार, लोक नर्तक सब बुलाए जाते थे, उनमें बुंदेली भी रहते थे। तो एक मंच मिला और उस मंच के कारण हमने राजस्थान वाले को बुलाया,
1: जी
0: तो राजस्थान वाले ने बुंदेलखंड वाले को भी बुलाया।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: पूरे देश में कंसर्ट करने का आकाशवाणी का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि एक जगह की लोक संस्कृति, लोक संस्कार देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: तो आकाशवाणी छतरपुर ने अपनी संपूर्ण भूमिका बुंदेली के प्रचार प्रसार में, इसको लोगों तक पहुंचाने में पूरी तरीके से निभाई है।
1: देखिए, आपने एक लंबा समय इस आकाशवाणी को दिया है, और इस दौरान बहुत सारे कर्मचारी अधिकारियों के साथ आपने काम किया है, अलग-अलग अनुभव रहे होंगे। कोई ऐसा अनुभव जो आज आप साझा करना चाहें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से?
0: रविंद्र जी, साथ में जो हमारे कलीग थे,
1: जी
0: इंजीनियर बंधु थे
1: जी
0: और कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग थे, बहुत कैजुअल थे, तो उन सब से इतना दोस्त वाला नाता रहा कि जब हम आपस में काम करते हैं तो थोड़ी बहुत अनबन होती
1: हो
0: है,
1: ही जाती है।
0: लेकिन वो अनबन दुश्मनी में कभी नहीं
1: जी
0: बदलती
1: जी
0: है
1: जी
0: और न बदलना चाहिए।
1: हाँ
0: तो सबसे बड़ा स्नेह रहा, हम लोग अगर शाम के टाइम पे नाइट ड्यूटी में सब लोग खाना खा रहे हैं तो सब लोगों ने बैठ के खाना खाया, आपकी सब्जी हमने ले ली, हमारी सब्जी आपके लिए
1: जी
0: आपने ले ली। तो इस तरीके से यहाँ बहुत पहले सुरेंद्र तिवारी जी जो उद्घोषक रहे, उनका एक बड़ा सा टिफिन आया करते था, उस समय हम लोग कैजुअल थे,
1: जी
0: तो भूख लगाए तो उनका टिफिन खोल के हम लोग उसमें से एक रोटी खा लेते थे। तो बहुत, और जो अधिकारी थे बहुत मतलब सीनियर लोग थे, लेकिन उन्होंने हम लोगों को छोटे भाई जैसा, बच्चों जैसा ध्यान रखा और बड़े स्नेह से रखा। हमारे जो इंजीनियर बंधु थे उन्होंने भी हमेशा, जब भी उनको कोई समस्या के बारे में अवगत कराया गया, उन्होंने हमेशा तुरंत अटेंड किया और समस्या को दूर किया। और आपने भी हमारे सामने
1: जी
0: ही ज्वाइन किया, आप लोग आए और बहुत अच्छा लगा हमें कि चलो हम अपनी जो प्रसारण से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जो सामग्री है, वो युवा हाथों में छोड़ के
1: जी
0: जा रहे हैं, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आकाशवाणी दिन रात उन्नति कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जब हमने ज्वाइन किया था तब देखिए कभी बचपन में आपके हेलो फरमाइश में फ़ोन ट्राई किया करते थे, और हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि आपके साथ और राकेश जी उनके साथ देखिए काम करने का मौका मिला।

0: जब हमने ज्वाइन किया था तब हम आप दोनों को बड़े मजबूत पिलर के रूप में देखते थे कि कोई भी समस्या आएगी तो आप दोनों तो हैं। तो आप दोनों के जो आपसी रिश्ते हैं वो किस तरह से रहे, क्योंकि लंबा समय काम किया आपने।
1: राकेश भाई से जो हमारा नाता है वो आकाशवाणी से पहले का है।
0: हाँ
1: ठीक है, तो आकाशवाणी तो बीच में आई,
0: जी
1: दोस्ती पहले से थी,
0: जी
1: तो
0: जी
1: वो चूंकि दोस्ती थी तो उसमें एक संस्था से हम दोनों लोग जुड़े। आज भी राकेश भाई से हमारी मुलाकात होती है, बात होती है, और अभी उनके जब कार्यक्रम का प्रसारण हुआ तो
0: जी
1: मैंने सुना, फिर उन्हें फोन किया,
0: हाँ
1: उन्हें बधाई दी। तो
0: जी
1: सब लोगों से बड़ा प्यार स्नेह है। हाँ, और जो पहले यहाँ कार्यक्रम अधिकारी थे रविंद्र, जो यहाँ रहे 2 साल 3 साल, फिर ट्रांसफर हो गए, फिर अब रिटायर्ड हो गए, हमसे उम्र में बहुत बड़े भी हैं,
0: जी
1: उनसे भी हमारा नाता जुड़ा हुआ है।
0: जी जी जी
1: उनसे भी हमारी हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन में फोन पर बात हो जाती है, और उन्हें भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है कि चलिए पुराने जो लोग हैं उनसे हमारा नाता आकाशवाणी के कारण बना और आज भी चल रहा है।
0: जी जी जी जी हर समय में कोई ना कोई कार्यक्रम लोकप्रिय रहता ही है, तो आपके समय में कौन कौन से कार्यक्रम, हर अनुभाग की बात करनी चाहिए, वाणी की, ग्राम सभा की या अन्य अनुभागों की, तो कौन से कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय रहे श्रोताओं के बीच में?
1: देखिए, फिल्मी गीतों को छोड़ दें क्योंकि वो
0: जी
1: तो सदाबहार है,
0: हाँ
1: हमेशा फेमस रहते हैं।
0: जी
1: लोकगीतों में लोकमंजरी कार्यक्रम बहुत फेमस था,
0: जी
1: और उस समय फोन इन कार्यक्रम तो नहीं चलते थे, और युववाणी कार्यक्रम में कॉफी हाउस
0: जी
1: वो बड़ा था, और इसके अलावा नारी जगत है,
0: जी
1: बाल मेला कार्यक्रम भी बहुत सुना जाता था,
0: अच्छा
1: और
0: जी
1: रविवार को सुबह 8:30 बजे उसका प्रसारण हुआ करता था। बहुत लंबे समय तक वो यही समय रहा।
0: जी जी
1: उस समय सभा समय का परिवर्तन बहुत रेयर केस में किया जाता था।
0: जी हाँ
1: दिल्ली से भी ऐसे बहुत ज्यादा प्रोग्राम नहीं आते थे कि हमें अपने कार्यक्रम शिफ्ट
0: शिफ्ट
1: करना
0: करना
1: पड़े।
0: पड़े।
1: अब तो ये पिछले 8-10 सालों में ऐसा होने लगा
0: जी
1: कि
0: हाँ
1: हमें अपने बहुत सारे कार्यक्रम शिफ्ट करना
0: करने
1: पड़े
0: पड़ते
1: हैं,
0: हैं।
1: तो शिफ्ट करने से भी फर्क पड़ता है। कोई श्रोता सुबह खाली है, फिर दिन में अपने काम पे निकल गया, या रात के खाली है, तो वो जो कार्यक्रम सुन रहा है, अगर वो टाइम उसका बदल गया तो वो कार्यक्रम सुनना उसका बंद हो गया।
0: जी जी
1: ये सारी चीजें जरूर हुई, लेकिन आकाशवाणी का के लगभग 80% कार्यक्रम पॉपुलर थे।
0: जैसे ग्राम सभा में
1: ग्राम
0: कुछ
1: सभा, युववाणी,
0: धारावाहिक आते
1: हाँ,
0: थे,
1: ग्राम सभा में
0: बैरू
1: धारावाहिक
0: भोजी,
1: थे, और बैरू भोजी तो, और चील गाड़ी नाटक, एक ऐसा, मतलब उन्होंने तो एक इतिहास लिखा।
0: लत्तू फत्तू की
1: हाँ,
0: लुटिया,
1: ये और बात के हैं,
0: जी
1: बाकी बैरू भोजी और वो चील गाड़ी
0: जी
1: नाटक,
0: जी
1: चील
0: जी
1: गाड़ी नाटक तो उसने तो तहलका मचा दिया था।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आज के जो हमारी युवा पीढ़ी है उनसे क्या कहना चाहेंगे आप?
1: उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि जीवन में जो भी ध्येय आप बनाएं,
0: जी
1: चाहे आकाशवाणी से जुड़ने का हो या अपनी कोई भी मंजिल पाने का हो,
0: बिल्कुल
1: आप अपनी योग्यता को बढ़ाएं,
0: बिल्कुल
1: अखबार रोज पढ़ें, रेडियो की न्यूज सुनें, क्योंकि ये रेडियो की न्यूज ऑथेंटिक है
0: बिल्कुल
1: और आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी। आपका जनरल नॉलेज बगैर किताबों को पढ़े रोज का रोज अपडेट होता रहेगा,
0: जी
1: और जो भी पढ़ें वो पढ़ने के बाद थोड़ा सा लिख लें
0: जी
1: अपने हाथ से कॉपी में, तो आपको हमेशा याद रहेगा।
0: बिल्कुल
1: और थोड़ा मोबाइल से दूरी बनाएं, क्योंकि मोबाइल हमारे भले के लिए है, हमारी सहायता के लिए है,
0: जी
1: मोबाइल के लिए हम नहीं है। तो अब अभी ये हो गया है कि हम मोबाइल के लिए हैं,
0: जी जी
1: वाहन में चल रहे हैं तो गर्दन में टिका हुआ है मोबाइल। भाई बिल्कुल, आप अगर ये सब आते हैं तो बिल्कुल छोड़ दें। मोबाइल का इस्तेमाल सड़क पर चलते हुए, वाहन चलाते समय बिल्कुल ना करें। घर परिवार की रिंगटोन अलग डाल लें,
0: जी
1: अगर आपको राह चलते अगर वो घर वाली रिंगटोन सुनाई दे, देन सड़क के किनारे खड़े होकर बात कर लें।
0: जी
1: बाकी और कोई भी रिंग अगर आती है तो आप घर पहुंचकर या उस जगह पहुंचकर जहां आप जा रहे हैं वहां से आप बात कर सकते हैं, क्योंकि जीवन से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं है,
0: बिल्कुल
1: और व्यक्ति कीमती नहीं है, व्यक्ति उस परिवार के लिए कीमती
0: कीमती
1: है,
0: है
1: व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता-पिता के लिए कीमती है, व्यक्ति एक्सीडेंट में चला जाता है।

0: पीछे छोड़ जाता है अपना रोता हुआ परिवार।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो हम अपने परिवार की सेफ्टी के लिए अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें।
1: बिल्कुल, बातचीत जारी रहेगी। हमारे श्रोताओं को एक बार फिर मनोरंजन करवा देते हैं, जो गीत आपको इस समय याद आ रहा हो और हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहें।
0: किशोर दा का एक गाना है, कहां तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे।
1: जी,
0: ये बड़ा ऊर्जावान गाना है और एक नई ऊर्जा, नई शक्ति देता है कि आप अगर जीवन में थोड़ा सा अंधेरा आया है तो फिर रोशनी होगी, तो उस रोशनी का हम इंतजार करें।

0: आकाशवाणी एट 90.90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: अच्छा सर्विस के दौरान बहुत सारे आपने अनुभाग देखे हैं बहुत सारे कार्यक्रम देखे हैं तो इसमें भी उतार चढ़ाव आता है कई बार कार्यक्रम कोई हमें मिल जाता है तो कई बार हमसे कार्यक्रम छिन जाता है तो इस दौरान जो अनुभव रहे और कैसा क्या मतलब अनुभव रहता था
2: असल में जो कॉम्पिटिशन था
1: हाँ।
2: वो बिल्कुल फेयर कॉम्पिटिशन था
1: जी
2: ठीक है आपने अगर कोई कार्यक्रम बनाया है और वही कार्यक्रम अगर हमें मिल गया तो हम उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे
1: जी
2: ठीक है और आपको आप भी उसमें सलाह दोगे हम आपसे ही सलाह लेंगे कि यार रविंद्र भाई आप ये कार्यक्रम बनाते थे इसमें अगर हम ऐसा और कर लें तो कैसा रहे
1: जी
2: तो एक स्वच्छ प्रतियोगिता थी हम

0: सारे लोगों के बीच में, और एक कार्यक्रम छूटता था दूसरा मिल जाता था।
1: जी
0: लेकिन समय की बात है, भवदीय एक कार्यक्रम एक जमाने में बड़ा, मतलब उसका एक बहुत महत्व था, और भवदीय एक कार्यक्रम को एक अनाउंसर पढ़ता था पत्र,
1: जी
0: और स्टेशन डायरेक्टर उसके जवाब देते थे,
1: जी
0: और किसी को अनुमति नहीं
1: नहीं
0: थी
1: होती थी
0: जवाब देने की,
1: जी
0: और वो पूरे के पूरे पत्र एक रजिस्टर में उतारे जाते थे। वो रजिस्टर रिकॉर्ड में रखा जाता था
1: जी
0: कि 6 महीने बाद अगर किसी श्रोता ने कोई शिकायत की तो आपके पास उसका प्रमाण रहे।
1: जी जी जी जी
0: तो बाकी भवदीय कार्यक्रम एक अच्छा कार्यक्रम था, जो जिसको हम लोग सोचते थे कि हम लोगों को वो कार्यक्रम करने को मिल जाए।
1: जी जी देखिए, बहुत ही कार्यक्रम आपने लंबे समय किया है और हम भी इसके श्रोता रहे हैं। समय बदला और डिजिटल युग आया, लोगों के हाथों में मोबाइल आया और बहुत सारे मनोरंजन के संसाधन उपलब्ध हो गए, तो ऐसे समय में रेडियो की जो प्रासंगिकता है उसको कैसे देखते हैं आप?
0: रवीन जी, रेडियो और आकाशवाणी, अब आप इन्हें दो अलग अलग चीजें कर लें।
1: जी
0: आकाशवाणी यानी जो प्रसार भारती के स्टेशन हैं,
1: जी
0: और रेडियो वो जो अब प्राइवेट भी है,
1: बिल्कुल
0: ठीक। इन दोनों के बीच में कोई कंपटीशन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आकाशवाणी अपने नियमों के तहत अपना प्रसारण करता है।
1: जी
0: जैसा हमने पहले कहा कि आकाशवाणी की जो इमेज है वो है अपनी विश्वसनीयता के कारण।
1: बिल्कुल
0: आप अगर कोई न्यूज कंफर्म करना चाहते हैं तो आप आकाशवाणी की के समाचार को ही सुनेंगे।
1: जी जी जी
0: जो प्राइवेट चैनल हैं वो सिर्फ अपने श्रोताओं को आकर्षित कर रहे हैं।
1: जी हाँ जी हाँ
0: रेडियो का उद्देश्य आकर्षित करना नहीं है,
1: जी
0: रेडियो का उद्देश्य आप तक अच्छा मनोरंजन, अच्छा ज्ञान पहुंचाना है।
1: जी हाँ जी हाँ
0: आजकल जो FM है वो और आकाशवाणी, इन दोनों में बहुत फर्क है। आकाशवाणी सबको लेके चलती है, और रेडियो जो प्राइवेट चैनल्स हैं वो समय के हिसाब से अपने आप को ढाल रहे
1: जी
0: हैं। जो गाने चल रहे हैं बस वही गाने बचेंगे उनके, और उनकी थोड़ी फास्ट प्रेजेंटेशन
1: जी
0: है।
1: हाँ जी
0: आज भी आप अगर कार में आप चलते हैं, महानगरों की छोड़ दें अपने छोटे शहरों में,
1: जी
0: तो लोग रेडियो ही बजाते हैं अपनी कार में अगर यात्रा कर रहे हैं, और वेद भारती सुनते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल आपके देखिए इतने सारे शौक रहे हैं, इतने बहुत अच्छे अनाउंसर रहे हैं, कंपेयर रहे हैं, और ये केवल आपका जॉब नहीं था, ये आपका हॉबी भी था। तो रिटायरमेंट के बाद अपने नए जीवन में सामंजस्य बिठाना, नए रूटीन में सामंजस्य बिठाना बहुत कठिन रहा होगा, तो किस तरह से आपने आकाशवाणी से अलग किया और नया जो आपका रूटीन है वो कैसे क्या बनाया, और कभी मिस किया आकाशवाणी को कि नहीं?
0: रवि जी,
1: जी
0: अभी आसपास कार्यक्रम की कहानियों की बात चल रही थी,
1: जी हाँ
0: तो हमने उसमें आपसे कहा था कि हमने उन कहानियों ने हमारा जीवन बदल दिया।
1: जी
0: जीवन ऐसा बदला कि ये समझ में आया कि मोह अगर आप छोड़ दो
1: जी हाँ
0: आपके सारे दुख खत्म हो जाए। दुख का कारण है
1: मोह
0: मोह। ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, ये मेरी संपत्ति है, तो आप जब छोड़ोगे तो दुख होगा।
1: जी हाँ
0: आप मोह मत पालो, जब तक आपका है तब तक है।
1: बिल्कुल
0: तो उसके आकाशवाणी से जिस दिन हम सेवानिवृत्त हुए उसके अगले दिन हमारे अंदर से पूरा आकाशवाणी का मोह खत्म था। आकाशवाणी फिर दोबारा हमें कभी याद नहीं आई कि हमें ये लगा हो कि आकाशवाणी छूट गई तो हमें इसका दुख हो,
1: जी
0: क्योंकि हमने आपसे कहा कि हमें आकाशवाणी ने मुझे संपूर्ण दिया। तो जब संपूर्ण मिल गया तो उसके बाद फिर और किस बात की तमन्ना है।
1: जी
0: तो मुझे संपूर्ण मिल गया, ईश्वर ने एक काम सौंपा था, एक जिम्मेदारी सौंपी थी कि आपको इतने समय तक आकाशवाणी में काम करना है, अब 60 साल के बाद अब दूसरे काम करना है।
1: जी
0: तो इसलिए आकाशवाणी हमारे जीवन का एक हिस्सा है, पहले भी थी आज भी है, तो जब हमने छोड़ा नहीं है तो दुख भी नहीं है।
1: तो आज भी सुनते हैं रेडियो की नहीं है और
0: रेडियो हमारा सुबह 6 बजे स्टार्ट होता है, मैं सुबह 6 बजे उठता हूं,
1: जी
0: एक बड़ा सा रेडियो सेट लगा हुआ है, उसका स्विच ऑन होता है, 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक कंटिन्यू हमारे घर में रेडियो बजता है। हम लोग

0: पूरा घर 4-5 घंटे के लिए अगर कहीं चले जाएं, शादी ब्याह में किसी के घर बैठने, तो भी हमारे घर में रेडियो बजता रहता है।
1: जी,
0: क्योंकि अब हम लोग तो रेडियो सुनते हैं, हमारे घर की दीवारें भी रेडियो के बिना उन्हें लगता है सूनापन है।
1: देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो यहाँ हम और पूछना चाहेंगे कि देखिए, आप तो इतना इंटरेस्ट रखते ही हैं सुनने में, रुचि रखते ही हैं, क्या घर परिवार के सदस्य भी सुनते हैं?
0: बिल्कुल सुनते हैं। और रवीन जी, हम आपको अपने अनुभव की बात बताएं
1: जी
0: कि हम सब लोगों से कहेंगे कि आप रेडियो घर में सुनना शुरू करें। उससे क्या होगा कि आप अगर अकेले बैठे हैं तो
1: जी
0: आप निगेटिव कभी नहीं होंगे। आपका दिमाग फिर उस बजते हुए रेडियो पर जाएगा,
1: बिल्कुल
0: उसमें कोई गाना बज रहा है, आपकी पसंद का गाना है, तो आपका ध्यान, आपका दिमाग पूरा उस पर चला जाएगा।
1: जी
0: अब वो जो निगेटिव बातें आपके दिमाग में आने वाली थी वो नहीं आई।
1: जी
0: दूसरा, घर की महिलाएं रोटी बना रही हैं, उनकी पसंद का गाना आ गया, आप देखना वो रोटी पूरी गोल बनेगी।
1: जी
0: ये बहुत प्रैक्टिकल बात है,
1: जी
0: क्योंकि और वैसे आप रेडियो बज रहा है, आपका दिमाग बिल्कुल नहीं जा रहा है। जब आपका दिमाग खाली होगा तब आपका दिमाग रेडियो की तरफ जाएगा, तब आप उससे पिकअप करोगे,
1: जी
0: तब आपकी फ्रिक्वेंसी उसकी फ्रिक्वेंसी से मैच होगी, और आप फिर आपको गाना अच्छा लगेगा, वार्ता अच्छा लगेगी या कोई जानकारी अच्छी लगेगी। तो सब लोगों से हम ये कहेंगे कि आपको घर में खालीपन नहीं लगेगा, सबके घर अब खाली से हो गए हैं,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि बच्चे सब बाहर
1: बाहर
0: चले
1: होते
0: गए
1: हैं।
0: पढ़ने के लिए, अकेले पति पत्नी हैं, तो वो रेडियो सुने, उनको खालीपन का एहसास नहीं होगा, उनको लगेगा कि नहीं, हमारे साथ हमारे घर में हमारा कोई अपना है
1: जी जी जी
0: जो हमें सिर्फ दे रहा है,
1: जी
0: तो जरूर सुने।
1: आज भी जब आपके प्रोडक्शन यहाँ पर हमारे संग्रह में उपलब्ध हैं, चाहे वो विशेष कार्यक्रम हो, नाटक रूपक हो, जब हम यहाँ से प्ले करवाते हैं और आप रेडियो पर सुनते होंगे घर पर, तो कैसा अनुभव होता है, कैसा फील होता है कि आपकी आवाज़ रेडियो से आ रही है?
0: बहुत अच्छा लगता है। और रविंद्र भाई, कभी अगर हम चूक जाए ना, मान लीजिए नहीं पता चले कि
1: हाँ
0: हमारा कोई, तो श्रोता हमें फोन करके मैसेज करके बता देते हैं कि आज आपका ये कार्यक्रम बजना है, या
1: जी
0: आज सुबह ये कार्यक्रम बजा था, आज
1: जी
0: सुबह खेती किसानी बजी थी, तो वो हमें बताते रहते हैं।
1: जी जी जी जी अंत में हमारे सुनने वाले श्रोताओं के लिए, पुराने साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: आप सब लोगों ने, जितने भी हमारे श्रोता हैं, जितने भी हमारे सहयोगी रहे हैं, जितने भी लोग रेडियो से जुड़े रहे, उन्होंने बहुत प्यार, बहुत स्नेह, बहुत सम्मान हमें दिया, हमारे जीवन को बहुत सफल बनाया,
1: बिल्कुल
0: जीवन को आनंदमय तरीके से जीने के लिए प्रेरित किया, और आज भी उनका स्नेह, उनका प्यार हमें मिल रहा है, इसके लिए उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, और उनका ये स्नेह मैं पूरे जीवन भर याद रखूंगा। आप सबका, रवीन जी आपका भी बहुत
1: जी,
0: बहुत धन्यवाद।
1: देखिए अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे लिए, कुछ क्षण हमारे आकाशवाणी के लिए निकाल कर लाए, और इस गौरवमयी जो यात्रा है 90 वर्ष की, 50 वर्ष की, इसमें आपने जो अपने संस्मरण, अपने विचार साझा किए, बिल्कुल हम आपके हृदय से आभारी हैं। और हमारे सुनने वाले श्रोताओं ने इस यात्रा का पूरा मनोरंजन लिया होगा और उनको बिल्कुल पसंद आई होगी आपकी बातचीत, आपके अनुभव। अंत में यूं ही कहना चाहेंगे कि स्वरों का यह पावन सफर यूं ही चलता जाए, आकाशवाणी का गौरव जग में बढ़ता जाए, आपकी स्मृतियों की सुगंध मन को महकाती रहे, जीवन की हर राह पर सफलता मुस्कुराती रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पुनः हमारे बीच में थे आकाशवाणी छतरपुर के वरिष्ठ उद्घोषक, सन 2019 अगस्त में सेवानिवृत्त हुए हैं, आकाशवाणी में उद्घोषक के पद पर रहे हैं, साथ ही बुंदेली कंपेयर के पद पर भी रहे हैं, और उनके अनुभव आप इस भेंटवार्ता के माध्यम से सुन रहे थे। हमारे बीच में थे श्रीहर्ष पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद रवीन जी।

अभी आप सुन रहे थे AIRF 90 और छतरपुर आकाशवाणी के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में छतरपुर आकाशवाणी से सेवानिवृत्त उद्घोषक श्री हर्ष पांडे से रविन्द्र कुमार प्रजापति की बातचीत। मेरी व्यू पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। हिंदी में समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केन्द्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम

की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे, वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।